374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 18वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 8 जून सन 2026। इस समय

संगठन की वर्चुअल बैठक में ये निर्णय लिया गया। ओपेक प्लस के 7 सदस्य देशों सऊदी अरब, रूस, अल्जीरिया, इराक, कजाकिस्तान, कुवैत और ओमान ने अगले महीने प्रतिदिन लगभग 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबोली को हरा कर ये खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। ये यादें, हाय यादें, यादें।

0: हमारे साथ हैं पद्मश्री डॉक्टर अवध किशोर जड़िया, जो कवि हैं हिंदी और बुंदेली के।
1: बहुत बहुत धन्यवाद अमिता जी, आकाशवाणी के ये शक्ति सामर्थ्य के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मैं अपनी ओर से समूची टीम को, श्रोताओं को, देशवासियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आकाशवाणी के संदर्भ में ये कहना बहुत जरूरी है कि ये बहुत लोक मंगलकारी साधन है, जन जन को आकृष्ट अभिभूत करने वाला, यूं कहना चाहिए अपने आरंभ काल से 70-75 वर्ष तक का आकाशवाणी का एक छत्र राज्य रहा, एकाधिकार रहा, इसकी उपस्थिति बहुत बहुत आकर्षक रही। राष्ट्रीय उत्कर्ष के संबंध में, खोज खबर के संबंध में, सारे तथ्य परक खोज खबरों का प्रदान करना, मनोरंजन करना, देश को

0: बहुत गर्वित करने वाला माध्यम हुआ। इसका जो स्वर्ण काल था तो हम आपको सबको मालूम है कि पूरा देश रेडियो को अहर्निश लगा रहता था
1: जी।
0: अगर कमेंट्री आ रही है तो लोग अपने बिस्तर पर रेडियो लिए सुनते थे, गीत आ रहे हैं तो लोग खेत खलिहानों में उसको सुन रहे हैं, लोकगीत आ रहे हैं तो गांव का, देहात का, नहर शहर का, सारे लोग उसको सुना करते थे। वैसे भी वेदों के पहले श्रुतियां थी, सारा कुछ सुनने ही उससे हुआ करता था।
1: बिल्कुल।
0: और जब सभ्य संसार हुआ तो ये लोग के यहाँ ये भी बात थी अपनी संस्कृति में के व्यक्ति को बहुश्रुत होना चाहिए और बहुपठ होने चाहिए, वही योग्य माना जाता था जो बहुश्रुत हो
1: जी।
0: तो सभ्य संसार का एक बड़ा विलक्षण साधन है और हम देखते हैं कि इसमें पूरा देश, इसका जब स्वर्ण काल हुआ तो सारी बातें आकाशवाणी ने कवर की, संगोष्ठियां हुई, रूपक हुए, नाटक हुए, काव्य गोष्ठियां हुई
1: जी,
0: शास्त्रीय संगीत हुआ तो सुगम संगीत भी हुआ, सुगम संगीत हुआ तो बच्चों के लिए भी संगीत में ताल कथाएं बनाई गई, रूपक हुए, नाटक हुए, फिल्मी गाने तो इतने हुए, कुछ न पूछिए। और एक बात और भी है, 70 का जो दशक था उस समय के फिल्मी गाने बहुत ही साहित्यिक थे
1: जी।
0: बहुत लोगों को उनकी जुबान पर बैठ गए थे, आलेख हुए, विशिष्ट विभूतियों के पर केंद्रित तो बहुत संगोष्ठियां हुई, पर्व विशेष पर रूपक विशेष हुए, लोकगीतों के, संस्कार गीतों के, सारे कुछ आकाशवाणी ने कवर किए। कहना तो ये चाहिए कि आकाशवाणी शास्त्र की वाणी है
1: जी।
0: क्योंकि शास्त्र में जो लिखा वो आकाशवाणी में आया, जो लोक में हुआ वो आकाशवाणी में आया। स्वर की और संगीत की वाणी है, कला और संस्कृति की वाणी है, राजनय और नीति की वाणी है। और एक बात और है, सारी भाषाएं देव भाषा से प्रसूत हैं और उसमें अपनी जो राजभाषा है ये राजभाषा की वाणी है। और राजभाषा ही नहीं, तमाम विभाषाओं में विरचित, कथित, संकल्पित सृजनों के, मूल मंत्रों के उच्चारण के विशाल व्योम में गुंजारित करने का ये सबसे सशक्त माध्यम। क्या क्या नहीं किया आकाशवाणी ने विचारों के, गद्य पद्य के स्वरूपों को, गद्य पद्य की जितनी विधाएं हैं उनको वैखरी के, वैखरी अर्थात कंठ से निकले हुए स्वर लोक श्रुत हुए और कंठार बन गए। इस तरह से मैं ये समझता हूँ कि आकाशवाणी मेरे विचार में अनेक कालखंडों की बहुत कीमती वाणी है, बहुत कीमती वाणी।
1: आपकी इस बात से निश्चित रूप से हम सभी गौरवान्वित हैं। हम आपसे एक शुभकामना चाहेंगे इस 90 वर्ष पर।
0: इस 90 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुकी आकाशवाणी के इस आमोद भरे अवसर पर मैं अपने हृदय तल से आकाशवाणी का आदर अभिनंदन करता हूँ, देशवासियों को महनीय शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूँ।
1: कोई छोटी सी कविता या कोई छंद सुनाएंगे आप?
0: जी जी बिल्कुल, एक छोटी सी कविता रखता हूँ। मैं लोक भाषा का कवि हूँ तो मैं एक गीत, छोटा गीत रखता हूँ, तो सुनिए। तुमने कभी नहीं देखे हैं लिपे पुते आंगन, तुम क्या जानो कैसा गाँव की गोरी का मन। तुमने कभी नहीं देखे हैं लिपे पुते आंगन, तुम क्या जानो कैसा होता है गाँव का मन। घर क्या है छप्पर छानी के महल गढ़ दिए हैं, फिर पीरे पीरे गुबरी ले वर्क जड़ दिए हैं। सब अचला के अंचल से निकले हैं चाल चलन, तुम क्या जानो कैसा गाँवों की गोरी का मन। सहज सुलभ संवादों से झर पड़ते नंदन वन, सहज सरल संवादों से झर पड़ते नंदन वन। तुम क्या जानो कैसा होता है गाँवों का मन, तुमने कभी नहीं देखे हैं लिपे पुते आंगन।

0: हमारे साथ जुड़ी डायरेक्टर उर्दू एकेडमी नुसरत मेहंदी।
1: स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। और हमारा ये कार्यक्रम जुड़ा हुआ है आकाशवाणी के 90 वर्ष की यात्रा में। एक लिसनर की दृष्टि से, एक शायरा की दृष्टि से, उर्दू एकेडमी की डायरेक्टर की दृष्टि से और तमाम सारे आपके जो जीवन के आयाम हैं उन सभी दृष्टियों से आप आकाशवाणी को किस रूप में महसूस करती हैं?
2: सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतने खूबसूरत मौके पर आपने मुझे याद किया। फिर मैं आपको बताना चाहूंगी कि आकाशवाणी का मेरे जीवन में व्यक्तिगत रूप से भी और जो मेरी प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी
1: जी
2: बेहद महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मैं आपको बताऊं कि मैं अगर लेखनीय दुनिया में हूँ, चाहे वो मेरा प्रोज का गद्य का क्षेत्र हो या शायरी का क्षेत्र हो, तो इसमें महत्वपूर्ण इसलिए है कि मेरी जीवन यात्रा, मेरी सृजन यात्रा जो शुरू हुई थी वो आकाशवाणी नजीबाबाद का जो रेडियो स्टेशन था वहां से हुई थी।
1: अच्छा।
2: मेरी पहली कहानी मैं क्या हूँ आकाशवाणी नजीबाबाद से प्रसारित हुई थी।
1: अरे वाह।
2: और वहीं से मेरी सृजन की यात्रा शुरू हुई है। तो मेरे जीवन में तो आकाशवाणी का इतना महत्व है कि शायद दूसरे किसी के जीवन में नहीं होगा। इसके लिए मैं आपके माध्यम से बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद और बहुत आभार ज्ञापित करना चाहती हूँ। अब मैं दूसरी बात करती हूँ कि अगर जो हमारा प्रोफेशनल जीवन होता है उसमें आकाशवाणी नहीं होती, रेडियो नहीं होता, तो मुझे लगता है कि इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आज तो बहुत सारे टाइम था कि सुबह से लेके रात तक सिर्फ रेडियो ही होता था जिससे सूचनाएं मिलती थी और हम लोग अपडेटेड रहते थे
1: जी।
2: तो जितने भी जीवन के आयाम आपने जिक्र किया, चाहे वो मेरा उर्दू अकादमी का हो या शासन के किसी भी विभाग का मामला हो, आकाशवाणी के बिना इनकी सारी सार्थकता अधूरी है। क्योंकि आज भी, ये पुराने जमाने की बात तो मैं कह ही रही हूँ कि उस समय तो कोई माध्यम था ही नहीं, लेकिन अगर आज का भी हम जिक्र करें और बेशुमार माध्यम है सोशल मीडिया के, लेकिन उसके बावजूद जब आपका नमस्कार भोपाल या और इस तरह के जो कार्यक्रम है वो प्रसारित होते हैं तो हमारे पास आज भी फोन आते हैं, क्योंकि आप लोग इतने सक्रिय हैं कि एक तो हर कार्यक्रम पे नजर रखते हैं और हमें नहीं कहना पड़ता। ये आप लोग की सक्रियता, उसको साधुवाद और प्रणाम करती हूँ। और जब वो प्रसारित होता है तो हमारे पास बहुत सारी सूचनाएं आती हैं, फोन आते हैं कि हमने आज आपका ये सुबह सुना और हम आज आ रहे हैं, तो इसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत ही शानदार यात्रा रही है, बहुत ही सफल और बहुत ही सार्थक यात्रा रही है आपकी।
1: बहुत धन्यवाद। हम देना चाहेंगे आप जैसे सुधे श्रोता और आप जैसे साहित्यकारों से जुड़कर, कलाकारों से जुड़कर ही आकाशवाणी अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। यदि शुभकामनाओं की बात की जाए तो आप आकाशवाणी के भविष्य को लेकर क्या कामना करना चाहेंगी?
2: मेरी शुभकामनाएं दिल से आपके साथ हैं। जितने भी कार्यक्रम हैं उसको आप लोग जिस तरह से प्रसारित करते हैं इसी तरह के और कुछ और इनमें आयाम आप जोड़ सकते हैं। वैसे आपके यहाँ सब कुछ शामिल है क्योंकि मैं आपके दूसरे कार्यक्रमों में भी शामिल होती हूँ, मुशायरा कवि सम्मेलन भी होते हैं। कुछ चीजें हैं कि जैसे एक शायर को बैठा लेते हैं और दूसरा एक उसके कलाम को कंपोज करके गाता है, कलाम शायर शायद पहले कभी हुआ करता भी था। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं आपको, ऐसे ही उत्तरोत्तर उन्नति करता रहे हमारा आकाशवाणी।

0: आकाशवाणी की इस 90 वर्ष की यात्रा में अब शामिल हो रहे हैं नारायण व्यास, जो पुरातत्वविद हैं और इस कार्य के लिए आप पद्मश्री भी प्राप्त कर चुके हैं।
1: नमस्कार जी।
0: आपसे जानना चाहेंगे कि आप लंबे समय तक अपने कार्य में लगे रहे निरंतर, और आपके बेहतरीन कार्य के लिए आपको शासन से पद्मश्री भी प्राप्त हुआ है। एक पुरातत्वविद की दृष्टि से, एक श्रोता की दृष्टि से, या एक सामाजिक दृष्टि से आकाशवाणी का क्या महत्व महसूस करते हैं आप उसकी इस लंबी यात्रा में?
1: ये आकाशवाणी का तो हमारे जीवन में बहुत महत्व, हम बचपन से ही देख रहे हैं आकाशवाणी को, सुनते हैं। और अभी जब से मेरी नौकरी 1978 में लगी है, मेरी जो 1980 के बाद तो पता नहीं कितनी वार्ताएं आपके आकाशवाणी से हुई भी है पुरातत्व के विषय में। तो उसमें पहले ये जो यहाँ 1992 के करीब, तो एक महीने में 4 वार्ताएं मेरी करते थे।
0: अच्छा।
1: उसमें ये जो भोपाल के आसपास के जितने पुरातत्व स्थल होते हैं उनके बारे में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त हुई थी। और कई बार हम लोग तो कह टेलीकास्ट यहाँ पर बैठ के जो हुआ है, जो पुराने जी है यहाँ, और हम दो लोग ऑफिस के लोग थे, तो वहीं बैठ के आकाशवाणी में बैठ के पूरे मध्य प्रदेश को कंट्रोल करके और सब उनकी समस्याएं जो पुरातत्व की नई नई खोज क्या होती है, ये पूरी जानकारी आकाशवाणी के माध्यम से हमने वो सब जनता को दी। और कई में ऐसी सूचना भी मिली उनसे, लोगों से, जिसमें हम जाके साइट विजिट किए, वो चीज हमें मिली भी, क्योंकि पुरातत्व का ऐसा विषय है, क्योंकि जनता को जोड़ने के लिए आकाशवाणी का ऐसा बहुत बड़ा महत्व रहा है। विशेष रूप से हम जो नए नए उत्खनन करते थे उनकी जो जानकारी हमसे पूछते थे डायरेक्ट लाइव आपके यहाँ से होता था, तो हम बताते थे उनको कि कैसे ये पुरानी संस्कृति की खोज कैसे की जाती है, पुराने टीलों के किनारे, नदी किनारे घूमते रहते थे। लेकिन क्या है कि हम खोज तो कर लेते हैं लेकिन प्रचार प्रसार कौन करेगा? लेकिन जो रेडियो आम जीवन में जो रहता है गाँव में सब जगह, वो लोग सब सुनते, हम उनको बताते हैं कैसे संस्कृति की खोज होती है और कैसे हम आगे बढ़ते हैं, और उनको बताते देते भी है कि इतिहास पुरातत्व दोनों एक दूसरे से मिले जुले हैं, पुरातत्व तो जमीन के अंदर है, इतिहास बाहर है। तो आकाशवाणी से जो ऐसी चीजें जाती लोगों की, तो बड़ा लोगों को अच्छा लगता है। और आपकी आकाशवाणी की टीम के साथ हम कई स्थानों भी गए, सांची में भी किया, खजुराहो में भी किया, और बहुत से ऐसे मॉन्यूमेंट साइट से जो

इसको धरोहर से संबंधित है। सबसे ज्यादा सफल कार्यक्रम हमारा सांची में हुआ था और खजुराहो में हुआ था। तो ये हमें बड़ी प्रसन्नता होती है कि आकाशवाणी के माध्यम से कितना पुरातत्व का प्रचार प्रसार हुआ है, ये हम अब महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये रेडियो कैसा है, हम चलते फिरते कहीं भी सुन सकते हैं, टेलीविजन नहीं देख सकते, सुन सकते या देख सकते हैं, उसके लिए देख देखिए बैठना पड़ता, पर रेडियो तो हम कहीं भी ले जाके सुन सकते हैं। तो आकाशवाणी का तो मैं बहुत ही धन्यवाद देना भी चाहूंगा कि आकाशवाणी के माध्यम से हमारा पुरातत्व का बहुत प्रसार प्रसार हो, और मैं कहता हूँ व्यक्तिगत भी मुझे लोग जानने लगे कि ये तो व्यास जी हैं आकाशवाणी से, कई बार हम इनके ये जो शोध लेख भी होते ये सुनते थे पहले, जैसे हमारे यहाँ आपके यहाँ आर्य साहब भी थे, उनके समय भी हुआ, उसके पहले भी कई लोग होते थे। तो देखो हम लोग पैसों की चिंता नहीं, हम देखते हैं हमारी जनता के साथ में कितने जुड़ाव रेडियो के माध्यम से होता, वो हम लोगों का बहुत हुआ, तो हमें तो आज भी बड़ी प्रसन्नता है। तो मैं तो ये स्थापना के जो 90 वर्ष हो रहे हैं इसके लिए मैं आप सभी पूरे स्टाफ को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और मैं एहसान भी मानता हूँ कि आपके माध्यम से हमें बहुत आगे बढ़ने का मौका भी मिला है। धन्यवाद।

0: श्रोताओं, हमारे साथ हैं उदयन वाजपेयी। आप वरिष्ठ साहित्यकार हैं, बल्कि हम यूं कहेंगे कि उनकी पारखी दृष्टि समाज के हर अंग पर, हर वर्ग पर, हर आयाम पर पड़ती है। आकाशवाणी के 90 वर्ष की इस यात्रा में रेडियो के या आकाशवाणी के समाज के प्रति योगदान की बात जानना चाहेंगे और सुनने वालों का क्या रिश्ता बन पाया आकाशवाणी से।
1: एक तो पहले मैं आपको ये चीज स्पष्ट करूं कि कभी भी रेडियो जो है वो, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण भारत में आकाशवाणी है, वो कभी भी टेलीविजन से ज्यादा दूर तक और देर तक रहने वाला मीडिया है। उसका सीधा कारण ये है कि दृश्य से ऊब और थकान दोनों होती है, जबकि सुनने से जो कल्पनाशीलता है वो जागृत होती है। इसीलिए सिनेमा में भी, जो कि दृश्य का और सुनने का माध्यम है, उसमें जो साउंड है, आवाज है, उसकी कहीं अधिक अर्थवत्ता होती है बनस्पत दृश्य के। तो इसलिए आकाशवाणी, क्योंकि ये सुनने का, श्रवण का माध्यम है, इसलिए इसका कभी भी ज्यादा महत्व बहुत सारे लोगों का के जीवन में रहा है। और एक जमाने तक तो केवल आकाशवाणी ही था, और आज भी बहुत हद तक आकाशवाणी ने कम से कम संगीत के क्षेत्र में और बातचीतों के क्षेत्र में अपनी विश्वसनीयता बना के रखी है। कई जगह विश्वसनीयता प्रश्नांकित उसकी हुई है, लेकिन ये होता है लंबे दौर में, अलग अलग किस्म के जब आप तंत्रों में रहते हैं तो ये सब तो होता है। बचपन से हमारे घर में उदाहरण के लिए फिल्मी संगीत सुनने की इजाजत नहीं थी जब हम बच्चे थे। आप समझिए 1966 या 70 के आसपास की बात है। आकाशवाणी पर उन दिनों फिल्मी गीत सुनना, कम से कम मेरी बहनों के लिए, एक तरह से उनकी स्वतंत्रता की

0: अभिव्यक्ति थी, क्योंकि वो छुप के सुनती थी
1: जी,
0: माता पिता से छिपके। लेकिन माता पिता से छिपकर जो आप काम करते हैं वो एक तरह से बचपन से ही आपकी स्वतंत्र का प्रशिक्षण होता है कि आपकी अपनी दुनिया क्या है। आप अन्यों से, अपने माता पिता से, अपने चाचा चाची से, ताऊ वगैरह से भिन्न कहाँ हैं। तो आकाशवाणी एक तरह से बहुत लोगों का, सिर्फ मेरी बहनें हो उसमें उदाहरण हो ये नहीं है, बहुत लोगों के लिए आकाशवाणी को सुनना उनके स्वातंत्र का प्रशिक्षण जैसा था, जो बाद में उन्होंने कई तरह से प्रकट हुआ होगा। दूसरा, उसमें शास्त्रीय संगीत जो आता था और उसमें जो बहसें हुई हैं आकाशवाणी की शुरुआत में, केसकर जब थे अगर मुझे ठीक याद है, पहली डायरेक्टर जनरल
1: जी। सर यहाँ पे मैं एक छोटा सा करेक्शन कह लीजिए या ये दोहराना चाहूंगी कि केसकर साहब उस समय INB मिनिस्टर हुआ करते थे।
0: अच्छा,
1: और
0: अच्छा, अच्छा।
1: जी, और पहले जो स्टेशन डायरेक्टर थे वो
2: गिरिजा कुमार माथुर
1: साहब थे।
0: हाँ ठीक है, आप ठीक कह रही हैं। तो उन्होंने जब ये बात कही, साहब हम हारमोनियम को की इजाजत नहीं देंगे, ये कोई एक ऐसा निर्णय नहीं था जो एक किस्म का अपने आप ले लिया गया निर्णय हो। उसके पीछे भारतीय संगीत की एक गहरी समझ थी, उसके भीतर जो परिवर्तन हुए हैं संगीत, शास्त्रीय संगीत में, उसकी जरूर अनदेखी थी, लेकिन फिर भी एक गहरी समझ थी। बहसें बड़ी दिलचस्प होती थी। हम चूंकि शुरू में हमारा जो परिवार है वो साहित्य, कला, संस्कृति आदि का केंद्र जैसा रहा है, हम सारे लोग लेखक, कलाकार या नर्तक वगैरह रहे हैं तो, और हैं, तो उसमें ये बहसें हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती थी कि हारमोनियम में क्या सीमा है। तो फिर पता लगा कि भाई उसमें श्रुति नहीं सुनाई पड़ती, स्वर से स्वर पे आप जाते हैं, और वो हमारे यहाँ संगीत में उतना महत्व का नहीं होता। हमारे यहाँ श्रुतियों की केंद्रीयता है नृत्य संगीत। तो बहुत सोच के, संगीत के स्वरूप को समझ के वो बंदिश लगाई गई थी। हमारे यहाँ ध्रुपद में आज भी हारमोनियम नहीं बजता। ध्रुपद में केवल ज्यादा से ज्यादा तानपुरा बजता है, और अगर थोड़ा बहुत उसको आप विस्तार करें तो थोड़ा बहुत सारंगी बजती है, लेकिन ध्रुपद में आज भी हारमोनियम नहीं होता। उसका कारण है कि ध्रुपद में जो श्रुति है उसकी केंद्रीयता बहुत अधिक है। ये बहस बड़ी पुरानी, और ये संगीत पर बहस आकाशवाणी से पैदा हुई थी। ये संगीत पर एक किस्म की दार्शनिक बहस है, सौंदर्य शास्त्रीय बहस है। ऐसी बहसें आपको दूरदर्शन पर या आजकल जो बहुत सारे हजारों चैनल्स हैं जो ज्यादातर बिके हुए हैं, उनमें कोई नहीं समझ में आएगी आप, उसमें कोई ऐसी बहस होती ही नहीं। दूसरा, आकाशवाणी ने अपने को बाजार से बहुत हद तक स्वतंत्र रखा था, क्योंकि आकाशवाणी में जो लोग हैं, यहाँ भारतीय जो नागरिक हैं, समुदाय हैं, जो सामुदायिक जीवन है, वो केंद्रीय था, बाजार केंद्रीय नहीं था। दूरदर्शन के पहले क्षण से बाजार केंद्र में आ गया, समाज केंद्र से विस्थापित हो गया। तो दूसरी बात ये थी कि आकाशवाणी ने अपने को भारतीय लोगों की आवाज के रूप में, उनके मनोरंजन के रूप में प्रस्तुत किया था और अपना आकार ग्रहण किया था। ये बहुत बड़ी बात है। आज ये बात हमें समझने में बहुत सारे युवा लोगों को असंभव जान पड़ेगी।
1: बिल्कुल
0: सही। ऐसा कुछ भी हो सकता है इसका बाजार से कोई संबंध ना हो, क्योंकि आज तो बाजार का जो प्राधान्य है वो डरावना है, लेकिन आकाशवाणी में नहीं था, एक हद तक आज भी नहीं था। ये बहुत बड़ी बात है। तीसरा, मुझे खुद बहुत बार अवसर मिला अपनी कहानी पढ़ने का, कविताएं पढ़ने का, तो मुझे अक्सर कई बार छोटी छोटी जगहों पे ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनमें जो आपको, हमको बताते हैं कि साहब आपकी हमने फलानी कहानी सुनी थी आकाशवाणी पे। ये वो लोग हैं जिन तक पत्रिकाएं नहीं पहुंचती। साहित्यिक पत्रिकाओं की वैसे भी हालत हमारे यहाँ बहुत खराब है, हमारा मध्य वर्ग तो पढ़ता लिखता नहीं है, तो हमारे साहित्य तो एक किस्म का बेघर साहित्य है। इस बेघर साहित्य को थोड़ी सी देर के लिए आश्रय या शरण आकाशवाणी देता रहा है, और ये बहुत बड़ी बात है। साहित्य के लिए भी बहुत बड़ी बात है। आकाशवाणी या कोई पत्रिका लेखक पैदा नहीं कर देती, लेकिन एक तरह से उन लेखकों को या उस संगीत को, उसका, उसके फैलाव के लिए, को दूर तक ले जाने की जो जिम्मेदारी आकाशवाणी ने लंबे समय तक निभाई है, उसका हम सबको कृतज्ञ होना चाहिए। कम से कम मैं एक लेखक के रूप में बहुत कृतज्ञ हूँ उसका। अगली और अंतिम बात यह है कि आकाशवाणी सुनते हुए आपके आप सोचने के लिए स्वतंत्र होते हैं, यानी वो इस तरह की, क्योंकि वो आवाज है, आवाज मूल है उसमें, उस वो आप

0: आपको बांधता नहीं है, वो आपको खोलता है। तो आप सुनते समय आकाशवाणी का भले संगीत सुन रहे हो, आप भले कोई बातचीत सुन रहे हो, कोई लेक्चर सुन रहे हो, कोई नाटक सुन रहे हो, कोई कहानी सुन रहे हो, आप खुलते हैं
1: जी।
0: और ये खुलाव भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। लोकतंत्र के लिए खुला हुआ नागरिक जरूरी है। एक बंद आज्ञाकारी नागरिक जो है वो डरावना होता है लोकतंत्र के लिए, वो कभी नहीं लोकतंत्र को चला सकता। तो आकाशवाणी ने एक तरह से भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने में एक हद तक भूमिका निभाई है और हम सबको उसका कृतज्ञ होना ही चाहिए।
1: बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपने, बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी बात रखी है। आप आगे आने वाले समय के लिए क्या शुभकामना आकाशवाणी को देना चाहेंगे?
0: मैं सोचता हूँ, एक तो बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं, आकाशवाणी कभी बंद ना हो। जिस तेजी से हमारी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस खत्म होते जाते हैं, उसके मैं बहुत ज्यादा उसके लिए आशान्वित हूँ कि ये बचा रहेगा। दूसरी बात ये मैं सोचता हूँ कि आकाशवाणी जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती है, उसका विकास होता है, उसे अधिक से अधिक स्वतंत्र स्वयं में होती जाना चाहिए। और ये सबके लिए सही है, ये बच्चे के लिए भी सही होता है, मेरे आपके लिए भी सही होता है। हम सारे लोग अगर स्वातंत्र की ओर नहीं बढ़ रहे हैं तो हमारी ग्रोथ, हमारा विकास नहीं हो रहा है। उसमें ज्यादा संगीत शामिल हो, ज्यादा लेखक कवि उसमें शामिल हो, ज्यादा उसमें तरह की बातचीत हो, जितनी अभी हो रही है उसे और ज्यादा हो। तो जैसे जैसे इस तरह का फैलाव आकाशवाणी का क्षेत्र बढ़ता चला जाएगा, आकाशवाणी की पहुंच भी बढ़ेगी और हम भारत को एक दूसरे एक जगह को भारत की दूसरी जगह से जोड़ने का जो उसने दायित्व निभाया है उसका स्तर भी गहरा होता जाए, ऐसा मैं शुभकामनाएं आकाशवाणी को देता हूँ।
1: बहुत धन्यवाद। हम भी यही चाहेंगे और उम्मीद करेंगे, बल्कि यूं कहिए कि सक्रिय कोशिश करेंगे कि ये व्यापकता निरंतर बढ़ती रहे।

0: सिंधी कार्यक्रमों के हमारे कंपेयर हैं नारी लच्छवानी, जो लगभग पिछले 25 वर्षों तक कार्यक्रम को प्रस्तुत करते रहे और स्वयं आकाशवाणी के एक बहुत अच्छे श्रोता हैं। हमने बात की आपसे। स्वागत है, आज हम बातचीत कर रहे हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष की यात्रा में। तो आपसे जानना चाहेंगे कि कौन सी यादें, कौन सी बातें हैं जो आप आकाशवाणी को लेकर महसूस करते हैं, आकाशवाणी से जुड़ी हुई हैं।
1: तो मैं लगभग 25 साल तक निरंतर जुड़ा रहा आकाशवाणी से।
0: जी,
1: 1969 से लेकर 1994 तक। सबसे बड़ी सौगात या सबसे बड़ा सौभाग्य हम कहें तो हमारा आकाशवाणी से जुड़ना बड़ा सौभाग्य हमारे जीवन का, क्योंकि मैं आकाशवाणी को शुद्धता और उत्कृष्टता का केंद्र मानता था। उन्होंने अनुशासन सिखाया, साहित्य, कला, संस्कृति, ज्ञान से प्रेम करना सिखाया, स्वच्छता का पाठ, संस्कारवान बनाया और अच्छा साहित्य लेखन, कविता लेखन, कहानी लेखन, मतलब हर तरह से हर वर्ग के लिए आकाशवाणी ने अपना योगदान दिया है। बच्चों से लेकर बड़ों तक, महिलाओं से युवा तक, वृद्धजनों तक, किसानों तक, ग्रामीण लोगों तक, मतलब कोई भी ऐसा समाज का वर्ग नहीं है जो आकाशवाणी से अछूता रहा हो।
0: जी,
1: तो ये सबसे बड़ी देन है हमारे जीवन में। हम जीवन भर के सानिध्य को भूल नहीं सकते, भुला नहीं सकते। उसी के बल पर हम अपना अच्छा जीवन जी रहे हैं। जीवन में आकाशवाणी उत्कृष्टता का प्रतीक। मधुबन

तरह से याद करता हूँ कि जब 15 अगस्त 1947 को आधी रात भारत आजाद हो रहा था, उस दौरान आकाशवाणी ही वो स्वर था जिसने देश भर में आजादी की खुशी को

आकाशवाणी ने शुरू से लेकर अंत तक विश्वास की परंपरा को बनाकर रखा है। आज जबकि हर हाथ में मोबाइल है, सूचना का विस्फोट का समय है, एआई हमारे ऊपर आ चुका है, ऐसे समय में जब हर जगह संदेह है, हर जगह हमको अविश्वास दिखाई देता है, वहां अगर विश्वसनीयता की बात हो तो अपने तमाम प्रोग्राम्स में, चाहे वो संगीत के कार्यक्रम हो, चाहे वो वार्ताएं हैं, चाहे वो चर्चाएं हैं,

0: उसकी अगली यात्रा को लेकर जहां पर बहुत चुनौतियां हैं, क्या भविष्य या क्या अपेक्षा आप आकाशवाणी से रखते हैं?
1: जैसे मैं शुरू से एक बात जो रेखांकित कर रहा हूँ कि जितनी देश में विविधता है, आकाशवाणी उस महासागर की तरह है जिसने पूरे

0: कि जितनी देश में विविधता है,
1: जी
0: आकाशवाणी उस महासागर की तरह है जिसने पूरे देश अपने मनोदशा को व्यक्त करते हैं। तो तकनीकी रूप से इस चुनौती के बीच में, जैसे पत्थरों के बीच में नदी बहती है, आकाशवाणी को शायद इस परंपरा को बनाए रखते हुए पहुंच को और विस्तारित करना होगा और विविधता को बनाए रखना होगा। मुझे लगता है कि उन तमाम चीजों के बीच में हम जैसे लौट रहे हैं पुरानी तरफ।

0: लोगों की प्यास बुझाती रहे, अपने किनारों पर हरियाली देती रहे। और कहते हैं ना कि गौमुख से निकली गंगा जब तक गंगा सागर तक नहीं पहुंचती तब तक अपनी यात्रा पूरी नहीं करती है। तो ये
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: निर्बाध चलती रहे। बस एक बात और आपसे जानने का मन हो रहा है कि एक

0: वो जैसा है नहीं बनता बहुत है, और दो तीन शेरी सुनाऊंगा इसके के उसी से बात करना है कि जिसने, उसी से बात करना है कि जिसने हमें समझा नहीं पूछा बहुत है, हमें समझा नहीं पूछा बहुत है। और एक ये शेर आखिरी शेर है कि हमें कुछ देर में मंजिल मिलेगी, हमें कुछ देर में मंजिल मिलेगी, हमारा रास्ता सीधा बहुत है, हमारा रास्ता सीधा बहुत है।
1: बहुत खूब। व्यक्ति के रूप में, एक श्रोता के रूप में, आकाशवाणी की कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा आकर्षित कर रही है आपको, या जिससे आप जुड़ा महसूस करते हैं?
0: जैसे परिवार का एक मतलब आकर्षण।

0: हमारे साथ हैं अभय फगरे, आप ख्यात बांसुरी वादक जिनकी बांसुरी की मधुर तान आपने कईयों बार आकाशवाणी से सुनी होगी। स्वागत है अभय जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में जो आकाशवाणी के 90 वर्ष के उत्सव के रूप में हम सब मना रहे हैं। हम ये आप आकाशवाणी को लेकर क्या महसूस करते हैं या वो क्या अनुभव है आपका जिसे आप परिभाषित कर सकते हैं?
1: नमस्कार मिता जी, सबसे पहले तो आकाशवाणी के सारे परिवार को बधाइयां देता हूँ कि 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं आकाशवाणी के और आप उसको उत्सव के रूप में मना रहे हैं। और जहाँ तक आकाशवाणी का मेरे दिल में या मेरे कार्य में योगदान है और मेरा इसके अंदर योगदान है, इसके अंदर तो बड़ी लंबी बातचीत हो सकती है, पर बहरहाल संक्षेप में आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ।
0: स्वागत।
1: और आकाशवाणी का मैं शायद संगीतकार के रूप में हम लोगों की जनरेशन लगभग मतलब जो स्टाफ आर्टिस्ट भी रहे हैं उन लोगों के लगभग अंतिम जनरेशन है हम लोगों की
0: जी।
1: और हम लोगों ने जितना हमारे जीवन में आकाशवाणी का क्या इतना अद्भुत महत्व है कि हम बयान करना बड़ा मुश्किल होता है, पर आकाशवाणी ने जैसे हम लोगों को संगीत के लिए प्रेरित किया है और संगीतकार बनने के लिए प्रेरित किया है, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। इतना अधिक संगीत और खासकर शास्त्रीय संगीत जिसे हम राग संगीत कहते हैं, ये हमने रेडियो से आकाशवाणी के माध्यम से ही हमें सब समझ में आया है और ये हमारी मेरा सौभाग्य है कि मैं अंततः आकाशवाणी कलाकार के रूप में अपने सेवाएं आकाशवाणी को दे पाया और वहीं से फिर मैं अंततः रिटायर हुआ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पूरे संगीत जगत में और संस्कृति में अगर हम और बृहत रूप से देखेंगे तो भारतीय संस्कृति को सहेजने के माध्यम के रूप में देखेंगे तो

0: बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है।
1: जी, आप आकाशवाणी कलाकार के रूप में भी आपने सेवाएं लंबे समय तक दी हैं। यदि इससे अलहदा बात की जाए तो पूरे आकाशवाणी के कार्यक्रमों को लेकर या उसके कल्चर को लेकर या उसकी किसी विशेषता को लेकर आप कौन सी बात ऐसी महसूस करते हैं जिससे आप आकाशवाणी से जुड़े रहे, जुड़ना चाहते हैं या आज भी अपनापन महसूस करते हैं?
0: सबसे बड़ी बात तो है कि इसका धरातल पूरा का पूरा भारतीय है।
1: जी,
0: मतलब ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पे हमने आइडियाज कहीं से बाहर से बारो नहीं करते थे। यहाँ का जो भी प्रोडक्शन होता था उसकी वैल्यू में भारतीयता सबसे ज्यादा झलकती थी, ये मुझे हमेशा लगा है। और बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया जाता था, जैसे कि हमारे उत्सवों के लिए कुछ प्रोग्राम्स बनते थे पहले, और वो उत्सव मतलब पूरे साल भर में जितने भी उत्सव होते थे उनके प्रोडक्शन हुआ करते थे। वो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोडक्शन वैल्यू के साथ में रेडियो पे होते थे, वो उसका कोई पैरेलल नहीं था।
1: भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति और जो हमारे जीने का आधार है वो यदि हमें कहीं से मिलता रहता है तो बहुत सीधी सी बात है कि उसका आकर्षण, उसका लगाव या उसकी आत्मीयता हमें बांध कर रखती है।

0: आज
1: बिल्कुल
0: एक उत्सव की तरह हम आकाशवाणी के 90 वर्ष की इस यात्रा को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं। आप एक ख्यात बांसुरी वादक रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि क्यों ना आपकी बात का समापन और इस कार्यक्रम का समापन एक उस छोटी सी बांसुरी की धुन से किया जाए, जिसे सुनकर सभी मंत्रमुग्ध होते हैं, कार्यक्रम का समापन कर सकें।
1: जरूर जरूर होगा।

बांसुरी की मधुर तान माहौल में रस घोल रही है। उत्सव की बेला अपने उत्कर्ष पर है। उत्सव जो 9 दशकों की यात्रा की निरंतरता का है। उत्सव है हमारे आपके भरोसे का, हमारे आपके साथ का, प्रीत की डोर से बंधे हमारे सपनों, उम्मीदों और प्रेम का, आने वाले समय और रोशनी का, जिसकी उजास दे रही हैं ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई, मुबारकबाद आपको, हमको।

0: आइए इस मौके को साकार करते हुए हमने बात की आकाशवाणी से जुड़े सुधी श्रोताओं से, कलाकारों से, साहित्यकारों से।
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी प्रसारण के स्वर्णिम 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष फोन आउट कार्यक्रम। प्रस्तुति थी अमिता त्रिवेदी की। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत झुक गया आसमां। इस फिल्म में लता मंगेशकर की आवाज़ है, हसरत जयपुरी ने गीत को लिखा है और शंकर जयकिशन ने संगीत दिया है।

आपको याद दिला दें, रात 10 बजे हमारे केंद्र से आप सुनेंगे आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हिंदी और उर्दू काव्य रचनाओं की गोष्ठी का प्रसारण। प्रतिभागी कवि होंगे सर्वश्री अंबर ठाकरे, प्रियदर्शी अनीता श्रीवास्तव तमन्ना, सूरज राय सूरज, मिनहाज कुरैशी, सुरेश मिश्र विचित्र, यूनुस अदीब, वंदना सोनी विनम्र, नवनीता दुबे नुपुर।

0: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
1: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
0: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
2: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूँगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुँचते पहुँचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
1: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
3: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुना रहे हैं जंग लगी तलवार का भाग 3।
1: सुप्रसिद्ध लेखिका और उपन्यासकार इंदिरा गोस्वामी का असमिया साहित्य में विशेष स्थान है। प्रस्तुत है इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखित और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित असमिया उपन्यास ममारे धारो तलोवाल पर आधारित धारावाहिक जंग लगी तलवार। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता और निर्देशक हैं रेडियम वीडियो मैटिक्स दिल्ली के वेद शर्मा। रेडियो रूपांतर किया है राजीव और सुधांशु ने। अब तक आपने सुना नारायणी बसुमती के सामने लोक निंदा के भय से आत्महत्या करने की बात कहती है। बसुमती उसे गर्भवती होने की बात छिपाकर शिबू के साथ गौना करने का सुझाव देती है। शिबू गौना कराकर नारायणी को अपने घर ले आता है। दोनों प्यार भरी बातें करते हैं और भविष्य के सपने संजोते हैं। यूनियन की आम सभा में यशवंत को यूनियन का प्रतिनिधि चुन लिया जाता है। ब्राह्मण महाराज की मौत हो जाती है तो शिबू बेकार हो जाता है। बसुमती शिबू के घर आती है और 50 मजदूरों को साई नदी की साइड पर चल रहे काम पर ट्रांसफर करने की बात बताती है। उसी समय नारायणी को उल्टियां शुरू हो जाती हैं। बसुमती नारायणी की गर्भवती होने की खबर सुनाती है तो शिबू बहुत खुश होता है। साई नदी की साइड पर आने के बाद शिबू की लिचू से मुलाकात होती है। दोनों दोस्त बन जाते हैं। लोकल लीडर शास्त्री जी का सहायक बलबीर स्वामी यशवंत से मिलता है और मजदूर हड़ताल की सूचना देता है। ये सुनकर यशवंत चौंक जाता है। अब

0: रानी,
1: बहुत दर्द हो रहा है।
0: नारायणी क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
1: मुझे लगता है प्रसव का समय आ गया।
0: हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अरे किसके पास जाऊं मैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं?
1: सुनो जी, तुम जल्दी से जाकर काकी को बुला लो।
0: ठीक है, मैं जाता हूँ काकी को बुलाने। तुम चिंता मत करना, मैं अभी काकी को बुलाकर आता हूँ।
1: क्या करूं, क्या करूं मैं? पीड़ा लगातार बढ़ती जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि काकी के आने से पहले ही। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ विद्यावासिनी, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो माँ मेरी।
2: नारायणी चिंता ना कर, नारायणी हम आ गए हैं। चिंता की कोई बात नहीं बेटी।
1: काकी मेरी जान निकलती जा रही है, बहुत पीड़ा हो रही है काकी।
2: बस बेटिया बस, तनिक पीड़ा से ली।
0: नारायणी
2: शिबुआ, अरे तू क्या कर रहा है यहाँ? चल जा, जा बाहर जा।
0: अच्छा अच्छा काकी।
2: बस नारायणी, बस बस बस बस बस बस, प्रसव होने वाला है। हाँ।

0: महाविन के वासिनी का नाम जप कर महाविन के वासिनी तेरा सब कष्ट हर लेंगी। ये क्या हुआ? अरे अरे बच्चा तो पैदा होते ही मर गया, और नारायणी नारायणी को भी होश नहीं है। क्या करें हम, हे भगवान क्या करें हम? ये पानी का छींटा इसके मुंह पर डालते हैं, होश आ जाएगा, ये ठीक रहेगा। नारायणी नारायणी नारायणी मेरी बच्ची,
1: मेरा बच्चा कैसा है काकी? बोलो ना काकी, मेरा बच्चा कैसा है?
0: छाती पर पत्थर रख ले नारायणी, छाती पर पत्थर रख ले।
1: क्यों?
0: तेरा लड़का पैदा होते ही भगवान को प्यारा हो गया।
1: नहीं
0: ना बिटिया, ना ना रो बिटिया, अरे बिटिया ना, अरे जो भगवान को मंजूर है वो ही होता है। अरे अपने को संभाल नारायणी,
2: नारायणी
0: अपने शरीर को तो देख, हाय हाय कितना कमजोर है। ना बेटी ना, ना मेरी बच्ची ना।
1: आप ठीक कहती है काकी, मैं अपने को संभालने की कोशिश करती हूँ।
0: हाँ बेटी,
1: वैसे भी वो मेरे पाप की निशानी थी।
0: बेटी तू,
1: भगवान ने, माँ विंध्यवासिनी ने मुझे इस पाप के बोझ से मुक्त कर दिया। बेटी लेकिन काकी मैं क्या करूँ, मेरे सीने में जो माँ का दिल धड़क रहा है उस दिल को कैसे समझाऊं काकी?
2: भगवान पर विश्वास रख नारायणी, भगवान पर विश्वास रख, भगवान सब भला करेंगे।

0: आती हूँ
1: काकी, क्या हुआ काकी? नारायणी तो ठीक है ना?
0: हाँ बेटा, नारायणी तो बिल्कुल ठीक है, पर बेटा
1: क्या हुआ?
0: बेटा तुम्हारा बच्चा पैदा होते ही मर गया।
1: क्या क्या बोले जो? क्या बोले?
0: हाँ बेटा।
1: नहीं नहीं, अरे
0: नारायणी बड़ी बलवान है बेटा।
1: अरे नहीं,
0: होनी बड़ी बलवान है।
1: अरे नहीं काकी,
0: होनी बड़ी बलवान है।

0: नारायणी, ए नारायणी, कहाँ जा रही हो?
1: मजूरी करने।
0: मजूरी करने? पर अभी दो दिन पहले ही तो। नहीं नहीं नहीं नहीं नारायणी, नहीं नहीं नहीं नहीं, मैं तुझे मजूरी करने नहीं जाने दूंगा। अरे देख तो, तू कितनी कमजोर है, अभी अभी मजूरी नहीं नहीं नहीं, देख तू अभी मजूरी नहीं कर पाएगी।
1: नहीं नहीं, मुझे जाना ही होगा।
0: नहीं नारायणी नहीं, देख देख इस हालत में मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा, कहीं नहीं जाने दूंगा।
1: आप समझते क्यों नहीं, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। भूख से तड़प कर मरने से तो अच्छा है कि मजूरी करते हुए मर जाऊं। मुझे काम पर जाना ही होगा।
0: नारायणी नारायणी, भगवान, हम गरीबों के भाग्य में दुखों का अंबार लगा हुआ है। अरे मुझसे बड़ा बदकिस्मत भला इस संसार में और कौन होगा? अरे मैं हट्टा कट्टा जवान, ये जवान मरद बेकार पड़ा हूं, और मेरी एक पसली की कमजोर पत्नी, अरे वो मजूरी करने गई है। ओ भगवान भगवान, मैं क्या करूं? संतान का मुख देखने के लिए कितनी उतावली थी मेरी नारायणी, मगर मगर भगवान तूने वो सब

0: से वो सुख भी छीन लिया। क्यों क्यों छीना तूने उससे वो सुख? हे भगवान, अरे तेरी इच्छा के चलते ही अपनी संतान को साई में बहा देना पड़ा मुझे। अगर उसे कुछ हो गया ना, अगर उसे कुछ हो गया तो नहीं नहीं नहीं, उसे उसे उसे कुछ नहीं होगा, उसे कुछ नहीं होगा। अगर उसे कुछ हो गया तो, अगर उसे कुछ हो गया ना तो भगवान मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा, तुझे कभी माफ नहीं करूंगा भगवान। उसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा भगवान, उसे कुछ नहीं होगा।
1: शंभू काका, शंभू काका,
2: तू आ गया यशवंत।
1: अरे आपका बुलावा सुनकर नंगे पैर दौड़ा आया हूँ, कोई विशेष काम है मुझसे काका?
2: अरे पहले बैठ तो सही।
1: अब कहो शंभू काका, किस प्रयोजन से बुलाया है तुमने मुझे?
2: देखो बेटा, मैंने मनोती मांगी थी कि दलित समाज से यूनियन का प्रतिनिधि बनने के बाद सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करूंगा।
1: अरे ये तो बहुत अच्छी बात है काका, बताइए कब करना है कथा पूजा का आयोजन?
2: परसों बेटा।
1: पंडित जी को कथा बांचने का निमंत्रण दिया कि नहीं?
2: गया था लेकिन निराश होकर वापस लौटना पड़ा।
1: क्यों काका?
2: अरे हम दलित जो हैं, पहले तो आने के लिए बमहनाई की दुहाई देकर आने से मना करता रहा, हाथ पैर जोड़ने पर किसी तरह माना तो मुंह फाड़ कर दक्षिणा की मांग कर बैठा अन वस्त्र अलग से।
1: काका तो फिर पूजा कैसे होगी?
2: क्यों, क्या तू पढ़ा लिखा नहीं है?
1: अरे सो तो ठीक है काका, लेकिन ये मंत्र वंत्र मुझे कहाँ आता है?
2: क्या पंडित माँ के पेट से मंत्र सीख कर आता है?
1: नहीं तो।
2: अरे पंडित भी कथा की पुस्तकें पढ़कर ही मंत्र बांचता है, क्या तू ऐसा नहीं कर सकता?
1: मैं समझ गया काका, सब समझ गया। आप कथा के आयोजन की तैयारियां कीजिए। और हाँ काका, दलित मजदूरों के अलावा दूसरे मजदूरों और कंपनी के अफसरों को भी कथा में आने का न्योता दिया ना।
2: ये पागलों वाली बात ना कर यशवंत, हम दलितों की लाइन में भला कौन आएगा, हम छोटी जात जो ठहरे।
1: अरे सुनो काका, दूसरे लोग भले ही हमें ईश्वर के सामने समान नहीं मानते हों, मगर हमारी नजर में सब समान हैं। हम सभी के बीच इंसानियत का रिश्ता जो है काका, और फिर न्योता देना तो हमारा कर्तव्य है, आना या ना आना उनकी अपनी इच्छा।
2: ठीक है यशवंत बेटा, मैं सभी को न्योता दे आऊंगा।
1: हाँ ठीक, ये हुई ना बात काका।
3: सुन भाई बामू,
4: बोल रहा हूँ,
3: अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम चील गिद्धों का आहार बनकर रह जाएंगे।
4: क्यों भाई रामू, क्यों?
3: देख बामू, जब हम चारे खेरा पर थे तो ठाकुर साहब की चापलूसी करके उनका विश्वास जीत लिया था। उसके बाद हमने वहाँ खूब चोरियाँ की, मगर भला हो ठाकुर साहब का, हम कभी पकड़े नहीं गए।
4: बिल्कुल ठीक कहता है रामू, यहाँ तो काम करना पड़ता है तब जाकर हमारा पेट भरता है।
3: और भैया बामू, काम करना हमारे बस का रोग है नहीं।
4: हाँ।
3: काम किए बिना हम भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे, तब क्या हमारी लाश को चील और गिद्ध नोच नोच कर नहीं खाएंगे?
4: अरे नहीं रामू भाई नहीं, अरे तेरी बात सुनकर मेरी आत्मा कांप उठती है, मैं ऐसी मौत नहीं मरना चाहता भाई, कुछ सोच सोच भैया।
3: अरे चुप चुप तो कर, पहले मुझे कुछ सोचने दे।
4: सोच ना। भाई, तूने कुछ देखा?
3: हाँ हाँ देखा, अभी अभी एक जीप आकर रुकी है।
4: हाँ, पर रामू भाई, ये जीप में कौन आया होगा?
3: बामू, वो देख, जीप से कोई उतर रहा है।
4: हाँ, अरे वो तो अपने ठाकुर साहब हैं। रामू कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे?
3: अरे सपना नहीं बामू, ये सचमुच के ठाकुर साहब हैं।
4: अच्छा।
3: अरे अपने चारे घेरा वाले ठाकुर साहब।
4: अरे तो फिर जल्दी कर, ठाकुर साहब के कदमों में गिर जा।
3: चल चल चल चल बामू, चल चल चल।
4: पहला ठाकुर साहब।
2: अरे रामू बामू तुम दोनों।
3: ठाकुर साहब हमने तो आपको देखते ही पहचान लिया।
4: अब देखिए ना ठाकुर साहब, आपके बिना हमारी क्या हालत हो गई है, सूख कर कांटा हो गए। सरकार
3: सरकार आप यहीं पर रहने आए हैं ना?
4: अबे चुप। अरे खुद ही बोले जाएगा या ठाकुर साहब को भी कुछ बोलने देगा? हमें आशीर्वाद लेने देगा या नहीं? ठाकुर साहब ये तो नादान है
3: मालिक।
4: आप बताइए ये चारे खेरा से यहाँ कैसे आना हुआ?
3: सरकार
2: मेरा ट्रांसफर हुआ है यहाँ पर, चार्ज लेने आया हूँ।
3: कितना दयालु है, जल्दी हमारी भगवान। जब ठाकुर साहब यहाँ आ गए हैं तो हमारे दुखों का अंत समझो।
4: ठाकुर साहब हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं?
2: अभी तो मैं 3-4 दिन व्यस्त हूँ। हाँ इतवार को मेरे घर आ जाना, तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है।
4: ठाकुर साहब की
3: जय हो।
4: ठाकुर साहब की
3: जय।
4: ठाकुर साहब की
3: जय हो।
1: पूजा संपन्न हुई, आरती का समय हो गया है। सभी भक्तगण खड़े हो जाएं, भगवान सत्यनारायण की आरती गाएं।

0: की
1: जय।
0: बोलो लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की
1: जय।
2: शंभू काका, अब आप सभी भक्तों में चरणामृत और प्रसाद का वितरण कर दीजिए।
3: ठीक है, लो भाई लो, चरणामृत लो, प्रसाद लो, लो बेटा लो, तुम भी लो,
4: मुझे भी दीजिए, मुझे भी दीजिए,
5: मुझे भी दीजिए, मुझे भी दीजिए, मुझे भी दीजिए, मुझे भी दीजिए, मुझे भी दीजिए, मुझे भी दीजिए, मुझे भी दीजिए।

0: एसपी साहब, आप
1: मुझे बुलवा लिया होता। आइए आइए आइए, कुर्सी पर बैठिए, आइए आइए।
2: देखो ठाकुर, अगर तुम्हें बुलाने से काम निकल सकता तो मैं ऐसा ही करता। अगर ऐसा नहीं किया तो इसलिए कि यहाँ आए बिना मेरा मकसद हल हो ही नहीं सकता था।
1: ठीक है सरकार, तो कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ।
2: ठाकुर, जानते हो मेरी पोस्टिंग विजिलेंस ब्रांच में है।
1: जी क्या, विजिलेंस ब्रांच?
2: हाँ,
1: लेकिन हमारे यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, फिर विजिलेंस वालों को यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ गई?
2: एक बात बताओ ठाकुर।
1: कही सरकार।
2: जिस समय साई एक्वेडक्ट की आधारशिला रखवाई गई थी, उस समय मंत्री जी के लिए आप लोगों ने एक मंच बनवाया था।
1: देखिए एसपी साहब, यहाँ पर मेरी नई नई पोस्टिंग हुई है, फिर भी दूसरे अफसरों से पता चला है कि मंत्री जी के लिए यहाँ पर एक मंच बनवाया गया था।
2: इस मंच को बनवाने में कितना सीमेंट लगा था?
1: सर, वो इस सवाल का जवाब तो मैं स्टोर कीपर से ही पूछकर दे सकता हूँ।
2: ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, सीमेंट का खर्चा किसने दिया था? कंपनी ने या सरकार ने?
1: मेरे ख्याल से सीमेंट सरकार ने दिया था और बाकी काम हमारे मजदूरों ने किया था।
2: तो ये खर्च का हिसाब किताब कहाँ है?
1: वो स्टोर कीपर के पास।
2: स्टोर कीपर के पास, ठीक है, हिसाब किताब की फाइल मंगवाइए।
1: फाइल? आप बिल्कुल चिंता ना करें साहब, मैं फाइल लेकर खुद आपके दफ्तर में हाजिर हो जाऊंगा।
2: हाँ, ताकि तुम फाइल में मन माफिक फिर बदल कर सको।
1: अरे नहीं नहीं एसपी साहब, आप गलत समझ रहे हैं।
2: हम बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं ठाकुर, अभी इसी समय फाइल मंगवाओ, वरना मुझे तुम्हारे खिलाफ भी एक्शन लेना पड़ेगा।
1: आप नाराज मत होइए सरकार, मैं अभी मंगवाता हूँ।
3: रामू बामू, अरे ओ रामू बामू, कहाँ मर गए दोनों? रामू बामू
1: जी, रामू तू एसपी साहब के लिए जाकर चाय लेकर।
4: बिल्कुल सरकार।
1: बामू
5: जी सरकार,
1: तू स्टोर कीपर से सन 1974 की फाइल मांग कर ला।
5: 1974 की फाइल?
1: एसपी साहब, ये फाइल 4 साल पहले की है, तब मेरी नियुक्ति यहाँ पर नहीं हुई थी। देखिए मेरा कोई दोष नहीं है।
2: ये तो हम देख लेंगे, जिसका भी दोष होगा, जिसने भी सीमेंट का गबन किया होगा, सरकार उसी को तलब करेगी। तुम्हें सूख कर काटा होने की कोई जरूरत नहीं है।
5: लीजिए लीजिए डॉक्टर साहब, मैं ये फाइल ले आया। लीजिए डॉक्टर साहब।
2: ए बामू, फाइल मुझे दो। सुना नहीं तुमने?
1: दे दे बामू, फाइल एसपी साहब को दे दे।
5: लीजिए लीजिए ये लीजिए।
2: सन 1974, हाँ यही है वो फाइल। ठाकुर, अब ये फाइल हमारे पास रहेगी।
1: मगर एसपी साहब, कंपनी की बदनामी तो होगी ही।
2: तुम अपना काम करो ठाकुर, विजिलेंस अपना काम करेगी। अगर सरकारी काम में रुकावट डालने की कोशिश की तो अंजाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझे?
1: समझ गया एसपी साहब, बिल्कुल समझ गया।
2: अब हम चलते हैं।
1: वो चाय आ रही सरकार।
2: चाय तुम पी लेना, हमारे पास बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है, समझे?
5: सरकार, एसपी साहब का फाइल भी लगा।
4: लेकिन सरकार ये चाय
1: तू पी ले।
6: नारायणी
7: चिल्ला कह रहा है शिबू।
6: काकी तुम? काकी मेरी नारायणी को क्या हुआ है? वो लीजू है ना, वो कह रहा था कि नारायणी की तबीयत ठीक नहीं है।
7: हमने ही तो भेजा था उसे।
6: नारायणी है कहाँ काकी?
7: सो रही है।
6: सो रही है? काकी वो ठीक तो है ना?
7: हाँ हाँ ठीक है नारायणी, ठीक है।
6: पर काकी वो लीचू, काकी तुमने लीचू से ऐसा क्यों कलवाया?
7: अरे भगवान ने तेरी प्रार्थना सुन ली शिबू। हाँ भगवान ने तेरी सुन ली। नारायणी का पैर भारी है।
6: सच? अरे काकी काकी काकी।
8: मजदूर भाइयों, यूनियन के नेताओं ने कंपनी के अधिकारियों से कई बार बात की, लेकिन कंपनी हमारी मांगों पर गौर करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और अब हमारे पास अंतिम हथियार सिर्फ एक ही है, और वो है हड़ताल।
9: लेकिन सुनिए, हमारे मजदूर भाई जानना चाहते हैं कि कंपनी के साथ यूनियन की किन मुद्दों पर बातचीत हुई है।
8: बहुत अच्छा सवाल किया यशवंत तुमने। यूनियन कंपनी के साथ 1975 में हुआ समझौता रद्द करवाना चाहती है।
6: लेकिन यूनियन ऐसा क्यों चाहती है?
8: क्योंकि ये समझौता मजदूर विरोधी है।
9: और मैंने सुना है कि ये समझौता भी यूनियन ने ही किया था।
8: ठीक सुना है तुमने। दरअसल तब के यूनियन नेताओं

0: हड़ताल होगी, आर पार की लड़ाई होगी।
1: ना ना नहीं नहीं, अरे हम हड़ताल नहीं करेंगे।
2: अरे काकी, ये तू क्या कह रही है?
1: हम ठीक कह रहे हैं, हड़ताल से हिंसा होती है। अरे गांधी भगवान अहिंसा के पुजारी रहे ना, हाँ? तो हम सभी को अहिंसा का पालन करना चाहिए।
2: अरे चुप रह बुढ़िया तू।
3: बिल्कुल गलत बात कर रहे हो बलवीर बाबू। तुमने काकी को बुढ़िया कहा? अरे बसुमती काकी हम सबकी माँ की उम्र से भी बड़ी है, कम से कम उनसे तो तुम्हें तमीज से बोलना चाहिए। यो मजदूर भाइयों, क्या मैंने कुछ गलत कहा?
2: नहीं बिल्कुल गलत नहीं कहा, बिल्कुल गलत नहीं कहा।
4: हम किसी मजदूर का अपमान सहन नहीं करेंगे,
2: नहीं करेंगे, नहीं करेंगे।
0: शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, आप लोग शांत हो जाइए। ये सभा आप लोगों के हित के लिए बुलाई गई है, हड़ताल आप लोगों के हित में होगी। मेरा सभी से अनुरोध है कि आप सभी यूनियन का साथ दें, यूनियन का विरोध न करें और जोर से नारा लगाएं हमारे साथ, मजदूर एकता, मजदूर एकता, मजदूरों पर अत्याचार
5: बंद करो, बंद करो।
0: मजदूर भाइयों, हड़ताल करने के लिए हमें किसानों का भी सहयोग लेना चाहिए, वो भी हमारी ही तरह मजदूर हैं। अगर मजदूर किसान एक हो जाएंगे तो हमारी ताकत बढ़ जाएगी।
3: किसान मजदूर एकता
5: जिंदाबाद, जिंदाबाद।
3: किसान मजदूर एकता
5: जिंदाबाद, जिंदाबाद।
6: चल भाई बामू, चुपचाप यहाँ से खिसक ले।
1: हाँ।
6: अरे अब हमारा यहाँ क्या काम?
1: तू ठीक कहता है रामू, ठाकुर साहब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। जब हम हड़ताल की खबर सुनाएंगे तो वो हमें अंग्रेजी शराब पीने को देंगे।
6: अरे तो जल्दी चल, मेरी तो अभी से लार टपक रही है।
1: चल, चल, चल, चल।
0: तो मजदूर भाइयों, हमारी अगली सभा अब खेत में होगी, वहाँ पर लोकल लीडर शास्त्री जी भी आएंगे। आज की सभा संपन्न होती है, सब लोग अपने अपने घर लौट जाएं।
2: चलो भाई, चलो।
0: मजदूर एकता, मजदूर एकता।
1: हड़ताल करने चले हैं? अरे जब भूखा मरने की नौबत आएगी ना, तब पता चलेगा। कर लो हड़ताल, हड़ताल करेंगे।

0: बधाई हो शिबु, बधाई हो। अरे औरतों को इकट्ठा करो, अरे गीत गवाओ, सोहर गवाओ, अरे खुशियां बनाओ, अरे खुशियां बनाओ।
1: काकी काकी ये तो बता क्या हुआ, लड़का या लड़की?
0: अरे चाचा राम पधारे तुम्हारे घर।
1: अरे वाह सच काकी, लो लो काकी ये लो, अरे गांठ में ये सिर्फ 5 का नोट है, अरे रख लो रख लो। मैं सभी लोगों को खुशखबरी सुना कर आता हूँ, अभी आता हूँ। अरे बाबा, अरे मैं बाप बन गया।

अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक जंग लगी तलवार। भाग लेने वाले कलाकार थे वीना होरा, दीपा रॉय, गीता वर्मा, श्याम अरोड़ा, केदारनाथ, मोहनलाल, दिनेश वर्मा, रजनीश शर्मा, कमल साथी, राजेश आहूजा, वीपी कालरा, उमेश श्रीवास्तव, सुरेंद्र सागर, बनवारी झोल, मंगत राम और संदीप। ध्वनि मुद्रण किया था रविंदर सिंह राजावत, एसपी राठौर और भगत सिंह ने। प्रस्तुति सहायक थे समीर झा।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गरीबों के हित में एनडीए सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया। एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक मदद पारदर्शी तरीके से पहुंच रही है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि पूरे देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा के लिए शहरों की सूचना जारी कर दी है। पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रदेश के विकास खंडों और नगरीय निकायों में 12 से 18 जून तक जन कल्याण शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं से वंचित पात्र नागरिकों का पंजीयन और लाभ वितरण किया जाएगा। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो किया गया था। वर्ष 1956 में इसे बदलकर आकाशवाणी किया गया। आकाशवाणी के 591 रेडियो स्टेशनों से 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा हर दिन सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में विश्वसनीय समाचार प्रसारित किए जाते हैं। और मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मानसून 15 से 18 जून के बीच दस्तक दे सकता है। विभाग ने आज राज्य के करीब 29 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने सभी श्रोताओं का आज के स्वास्थ्य विशेष कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण में। मैं हूं अर्चना सक्सेना और आप सभी को मेरा नमस्कार। श्रोताओं, हम सभी जीवन में खुश रहना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं और अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, लेकिन ये तभी संभव है जब हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हों, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही हमें ऊर्जा देता है, आत्मविश्वास देता है और जीवन को सकारात्मक दृष्टि से जीने की प्रेरणा देता है। श्रोताओं, हमारा स्वास्थ्य काफी हद तक हमारी दिनचर्या, खान पान, स्वच्छता के साथ ही बदलते मौसम के अनुसार बढ़ती गई सावधानियों पर भी निर्भर करता है। मौसम बदलते ही कई तरह की मौसमी बीमारियां भी बढ़ने लगती हैं। कभी तेज गर्मी, कभी उमस, कभी बारिश तो कभी अचानक तापमान में बदलाव, और यही बदलाव सर्दी, जुकाम, वायरल फीवर, डेंगू, मलेरिया और पेट संबंधी संक्रमण जैसी कई बीमारियों का कारण बन सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी सावधानी अपनाकर हम इन बीमारियों से काफी हद तक बच सकते हैं। सबसे पहले जरूरी है अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाए रखना। इसके लिए हमें अपने भोजन में ताजे मौसमी फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें और पौष्टिक आहार शामिल करना बहुत आवश्यक है। विटामिन और खनिज तत्वों से भरपूर भोजन शरीर को संक्रमणों से लड़ने की शक्ति देता है। श्रोताओं, इसके साथ ही हमें बाहर खुले में रखे कटे हुए फल, बासी या अस्वच्छ भोजन से भी बचना चाहिए। पीने के लिए हमेशा साफ, फिल्टर किया हुआ या उबला हुआ पानी ही उपयोग में लाना चाहिए। कई बीमारियां श्रोताओं केवल स्वच्छता की कमी के कारण भी

फैलती हैं, इसीलिए स्वच्छता का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। खासकर बरसात के मौसम में घर और घर के आसपास पानी जमा बिल्कुल ना होने दें। कूलर, गमले, खुले बर्तन या गड्ढों में जमे पानी में ही अक्सर मच्छर पनपते हैं, जो डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का कारण बनते हैं। रात में सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करना भी श्रोताओं लाभदायक होता है। इसके साथ ही अपनी उम्र और शारीरिक क्षमता के अनुसार व्यायाम, योग या सुबह शाम टहलना भी शरीर को सक्रिय और स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होता है। श्रोताओं, एक और ज़रूरी बात ये कि आपको यदि लगातार बुखार, सरदर्द, शरीर में दर्द, खांसी या बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रही हो तो लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी चाहिए आपको। स्वयं दवा लेने के बजाय तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना बेहतर होता है। समय पर उपचार कई गंभीर समस्याओं से हमें बचा सकता है। श्रोताओं, अक्सर हमारी छोटी छोटी लापरवाहियाँ ही बड़ी परेशानियों का कारण बन जाती हैं, इसीलिए यदि हम छोटी छोटी सावधानियों को अपनी आदत बना लें तो न केवल स्वस्थ और सुरक्षित रह सकते हैं बल्कि अपने परिवार को भी स्वस्थ रख सकते हैं, खुशहाल रख सकते हैं। और जब परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ होते हैं, खुशहाल होते हैं, तो जीवन का हर मौसम सुहाना लगता है।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब समय है एक भेंटवार्ता का। चलिए तो आपको सुनवाते हैं फिजियोथेरेपी से दर्द प्रबंधन के आधुनिक तरीकों के बारे में जानकारी। डॉक्टर अभिनव साठे से बातचीत कर रहे हैं मनीष कजबीय।
1: श्रोताओं नमस्कार, स्वास्थ्य दर्पण कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं हूँ मनीष कजबीय। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो वर्तमान समय में लगभग हर आयु वर्ग के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। बदलती जीवन शैली, लंबे समय तक बैठकर काम करने की आदत, खेलकूद में चोट या बढ़ती उम्र के कारण होने वाले दर्द आज एक आम समस्या बन चुके हैं। ऐसे में फिजियोथेरेपी न केवल दर्द से राहत दिलाने में मदद करती है बल्कि व्यक्ति को सक्रिय और स्वस्थ जीवन जीने के लिए भी प्रेरित करती है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं फिजियोथेरेपी से दर्द प्रबंधन के आधुनिक तरीके विषय पर। इसके लिए आज हमने अपने स्टूडियोज में आमंत्रित किया है वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अभिनव साठे जी को। अभिनव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
2: नमस्कार सर।
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि फिजियोथेरेपी के बारे में, कि आखिर ये फिजियोथेरेपी क्या है और दर्द प्रबंधन में इसकी क्या भूमिका रहती है।
2: मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा, फिजियोथेरेपी मेडिकल साइंस की एक ऐसा संकाय है जिसमें जो पेशेंट है उनको फिजिकल थेरेपी द्वारा, मतलब व्यायाम के द्वारा, एवं उसमें जो एडवांस तकनीक है उसके द्वारा उनके दर्द का प्रबंधन किया जाता है। और दर्द जैसे कि हमें पता है कई प्रकार के होते हैं, तो मान के चलें मांसपेशियों के दर्द, जोड़ों के दर्द, एवं खेल के बाद कोई चोट जो लगती है उसके दर्द के निवारण में फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा योगदान है।
1: जी जी जी, जो फिजियोथेरेपी होती है वह, उसको अगर हम सरल भाषा में अपने श्रोताओं को समझाना चाहे तो वह सिर्फ एक्सरसाइज के माध्यम से उन चोटों को ठीक किया जाता है। किसी तरह की कोई मशीनरीज वगैरह होती है जिनकी हेल्प लेकर भी हम इलाज करते हैं जो भी पेशेंट है उनका।
2: जी सर, मैं इस प्रश्न को थोड़ा सा विस्तार में उत्तर देना चाहूंगा। फिजियोथेरेपी जैसे कि अपने आप में एक इंडिपेंडेंट संकाय है, स्वतंत्र रूप से इसमें कोर्सेज चलाए जाते हैं। तो जिस प्रकार का पेशेंट है, मान लीजिए ऑर्थोपेडिक पेशेंट है, मान लीजिए न्यूरोलॉजिकल रिलेटेड या कार्डियक इवन कुछ वेल्व सर्जरी के बाद, तो उस परेशानी से जब वो बाहर आ रहा है उसके अनुसार फिर फिजियोथेरेपी में कुछ प्रकार की एक्सरसाइजेज हैं। कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जो परेशानी होने से पहले, हम एक उदाहरण स्वरूप देख लें, जैसे उम्र के साथ जोड़ों में परेशानी आते हैं, तो हम पेशेंट जब हमारे पास आते हैं दर्द के साथ तो हम उनको पहले ही ऐसे एक्सरसाइज बता देते हैं जिससे डिटियोरेशन, जो कि जोड़ों में विकार आना है आगे चल के, वो कम से कम रहे। इसके अलावा इलेक्ट्रोथेरेपी, जो कि एक अगेन पार्ट है हमारे फिजियोथेरेपी का ही, तो जिसमें एडवांस तकनीकों से, मशीनों से इसमें दर्द का निवारण एवं परेशानियों को दूर किया जाता है।
1: जैसे अभी आपने बात करी हमसे इलेक्ट्रोथेरेपी की, तो हम ये जानना चाहेंगे कि इलेक्ट्रोथेरेपी क्या है और ये किस तरह से काम करती है।
2: जी, इसको भी मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहूंगा श्रोताओं के लिए। तो जब फिजियोथेरेपी संकाय सन 1950-60 के दौरान यूरोप प्रांत में जब ये डेवलप हो रहा था, तो उस समय फिजिकल थेरेपी के नाम से पहले जाना गया और फिर ये फिजियोथेरेपी की ओर आया। तो उस समय जो फिजिक्स, भौतिक चिकित्सा, इसलिए हम लोग हिंदी भाषा में इसको भौतिक चिकित्सक के रूप में भी हमको बताया जाता है, तो इसमें फिजिकल थेरेपी में, इलेक्ट्रोथेरेपी में जो मशीनें हैं, उदाहरण स्वरूप अल्ट्रासाउंड बता दूं, जो कि थेरेप्यूटिक अल्ट्रासाउंड, एक जांच वाला अलग होता है, ये ट्रीटमेंट वाला अल्ट्रासाउंड होता है, लो लेजर करके एक थेरेपी होती है लो एम्पलीट्यूड पे उपयोग की जाने वाली, फिर कुछ ऐसे आइस थेरेपी, हीट थेरेपी, वैक्स थेरेपी, ये अलग अलग, या फिर डायथर्मी, एक बहुत बड़ा वर्ड है जिसमें बहुत सारे चीजें आ जाती हैं। तो डायथर्मी को अगर मैं विस्तार से बताऊं तो इसका अर्थ होता है थ्रू हीट, तो हीट के द्वारा ट्रीटमेंट करना जिसमें किसी ना किसी फिजिकल वे में, मतलब फिजिक्स के किसी सिद्धांत के ऊपर वो मशीन बनी होती है और अंत में उसका काम यही रहता है। मान लीजिए एक बैक एरिया है, पीठ का एरिया जहां दर्द है, उसको लगाने के कारण वहां का दर्द ठीक होता है, वहां की जो मांसपेशी है उसमें लचीलापन आता है, उस मांसपेशी में जो जकड़न आ गई है तो वहां पर खून का प्रवाह बढ़ाने से वहां पर वो लचीलापन भी वापस आ जाता है। तो इस तरीके से एक ब्रॉडर एस्पेक्ट पे एविडेंस बेस्ड इलेक्ट्रोथेरेपी भी हमें हेल्प करती है।
1: डॉक्टर साहब, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा किस तरह के दर्द से पीड़ित है और अधिकतर ऐसे कौन से दर्द लोगों में देखे जा रहे हैं फिजियोथेरेपी के माध्यम से उन दर्द का निवारण संभव है।
2: जी, तो जैसे कि आजकल की हम जीवन शैली देख रहे हैं, काफी भागदौड़ वाली जीवन शैली है, और इसमें मैं विस्तार से बताना चाहूंगा, पहले यह देखा जाता था एक उम्र के बाद ही कुछ प्रकार के दर्द होते थे, बट आज के समय में जो हमारे मेन युवा हैं 30 से 45 वर्ष के आयु के, वो काफी प्रकार के दर्द या जिसको हम कहते हैं पेन से अफेक्टेड हैं, उसके पीछे उनका व्यवसाय, उनका काम करने का तरीका, कंप्यूटर का यूज, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और जो आपने मेन सवाल किया कि कौन से दर्द, तो देखा जा रहा है गर्दन से संबंधित जो कि पोस्चर से रिलेटेड है, शोल्डर हो गया, अत्यधिक ड्राइविंग के कारण जो हमारा टखना है, एंकल है, नीज है, इनमें भी देखा गया है। और गलत पोस्चर का सबसे बड़ा कारण जो कि बैक पेन है, वो भी ये कॉमनेस्ट, ये पांच जो कॉमन एरिया बताए, मैं फिर से बताना चाहूंगा श्रोताओं के लिए, गर्दन का दर्द, कंधे का दर्द, कमर का दर्द, घुटने और टखने का दर्द, ये ज्यादा करके कॉमन देखा गया है और फिजियोथेरेपी इसमें काफी लाभकारी है।
1: जी डॉक्टर साहब, जैसे आधुनिक फिजियोथेरेपी की अगर हम बात करें और पारंपरिक उपचार पद्धति, इन दोनों की बात करें तो दोनों में क्या अंतर है?
2: सर आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, मैं इसको थोड़ा विस्तार से बताना चाहूंगा। तो जैसे जो हमारी पुरानी थेरेपी का पार्ट थी या उपचार के तरीके थे, वो भी अपने जगह उस समय मानव जीवन के लिए जरूरी थे, बट अब जब हम उसको कंपेयर करते हैं फिजियोथेरेपी के द्वारा, तो पहले का जो पद्धति था उसके पीछे ये था कि दर्द का निवारण बस। आज के समय में जब फिजियोथेरेपी किसी पेशेंट को या किसी रूप में दी जा रही है, तो सिर्फ दर्द का निवारण नहीं, उस दर्द के पीछे का कारण, उस कारण को दूर करना एवं वो कारण के वापसी ना हो और फिर से उस पेशेंट को उसी साइकिल में पेन, फिर इज, फिर पेन, इसमें ना जाना पड़े, तो ये बहुत बड़ा एक गैप हम कह सकते हैं जो फिल किया है फिजियोथेरेपी ने, कि एविडेंस बेस्ड किसी सिद्धांत या किसी उसके पीछे क्या रोग के पीछे कारण था और वो फिर उसको दर्द में तब्दील हो गया था, उसको ठीक करने में काफी कारगर है फिजियोथेरेपी।
1: जी डॉक्टर साहब के द्वारा जो दी गई जानकारियां है वह निश्चित तौर पर हमारे श्रोताओं को उससे लाभ मिलेगा, हम यही उम्मीद करते हैं। डॉक्टर साहब, स्पोर्ट्स में कितना ज्यादा कारगर है फिजियोथेरेपी? रिहैबिलिटेशन की बात करें जो स्पोर्ट्स पर्सन है, तो क्या उसमें भी ये काफी ज्यादा असरदार है? और जो आजकल का जो समय है वो ज्यादा कॉम्पिटिशन का है, सभी लोग आपस में बहुत ज्यादा एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं, तो उसमें ये कितना ज्यादा कारगर है फिटनेस की दृष्टि से भी खिलाड़ियों के?
2: सो सर, जैसे आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है श्रोताओं के लिए, तो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी या स्पोर्ट्स में फिजियोथेरेपी का एक बहुत बड़ा रोल है। इसको हम कह सकते हैं जैसे कोच ट्रेनिंग के लिए पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल है, या खिलाड़ी के प्रदर्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल, बट उस प्रदर्शन के पीछे फिट रहने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत रोल है। इसको मैं दो भागों में बताना चाहूंगा इस सवाल का जवाब। तो पहली बात तो ये है कि फिजियोथेरेपिस्ट जब एक खिलाड़ी के साथ रहते हैं, तो मान लीजिए खेल के दौरान चोट होना स्वाभाविक है, खेल इतना तेज है या बैक टू बैक मैचेस हैं, तो उसमें तो वो ठीक करने में मदद करता ही है। जब ऐसी कोई इंजरी हो गई, मान लीजिए एक नी का लिगामेंट जैसे हम कहते हैं वो टियर हो गया और उसके उपरांत प्लेयर को सर्जरी के लिए जाना पड़ा, तो सर्जरी के बाद ब्रिंगिंग हिम बैक टू नॉर्मल, उसको नॉर्मलसी पे लाने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट बहुत बड़ा उपयोग साबित होता है पुनर्वास में, एवं खेल के दौरान, खेल के बाद, और वह इंजरी या जैसे मान ले बार बार टखने का मुड़ना वो ना हो, तो उसके लिए स्पेशलाइज ट्रेनिंग देना। सो प्रीहैब, रिहैबिलिटेशन एंड एट द टाइम ऑफ इंजरी, ये तीनों डोमेन फिजियोथेरेपिस्ट एक स्पोर्ट्स खिलाड़ी के लिए कवर करते हैं, जो कि उसके कैरियर में भी बहुत इंपॉर्टेंट साबित होते हैं।
1: जी तो क्या फिजियोथेरेपी दवाओं पर निर्भरता कम करने में भी मदद कर सकती है?
2: जरूर सर, ऐसे कई दर्द देखे गए हैं जहां पर फिजियोथेरेपी बहुत लाभकारी सिद्ध हुई है और दर्द की दवाओं का उपयोग छोड़े जरूरत ही नहीं पड़ती है।
1: जी जी, शुरुआत में आपने बात करी थी बुजुर्गों की, जो बुजुर्गों में भी किसी तरह के जैसे जोड़ों के दर्द होता है, मांसपेशियों के दर्द होता है, तो आजकल ऐसी कौन सी आधुनिक तकनीकें हैं जिसके उपयोग से इस दर्द से राहत मिलती है, खासकर हम बात करें बुजुर्गों को?
2: जी सर, बहुत ही अच्छा सवाल किया सर। जो नियमित व्यायाम है, सूक्ष्म व्यायाम है, या हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, यह तो हमारे वृद्धजनों के लिए लाभकारी होती है। और जो कि आपने बोला आधुनिक क्या है, तो आज के समय में काफी टेलर्ड या काफी एविडेंस बेस्ड प्रोग्राम है, जिसको मैं पहले बताना चाहूंगा, उसका नाम है फॉल प्रिवेंशन प्रोग्राम। मतलब जैसे कि हमें पता ही है कि वृद्धावस्था में कुछ बैलेंस इशू होने के कारण गिरने की संभावना बढ़ जाती है, मसल की ताकत कम हो जाती है, तो पहले से ही अगर इस फॉल प्रिवेंशन प्रोग्राम को किया जाए जो कि डेवलप्ड है वर्ल्ड लेवल पे और 8 से 10 एक्सरसाइज का यह प्रोग्राम है, तो ऐसा पहले से ही कराकर वृद्धजनों में जो गिरने की संभावना है उसको कम किया जा सकता है, उससे आगे होने वाली ऑर्थोपेडिक जो परेशानियां है फ्रैक्चर या बोन इंजरीज वो भी कम हो सकती हैं और एक हेल्थी लाइफ को प्रमोट करने के लिए बहुत कारगर सिद्ध होती
1: है। डॉक्टर साहब कुछ ऐसे अभ्यास भी है जिन्हें लोग घर पर कर सकते हैं?
2: जरूर सर, फिजियोथेरेपी के ऐसे कई व्यायाम हैं जो कि आम जन अपने घर पर कर सकते हैं, बस इसमें यही है कि आपके लिए क्या जरूरी है उसके लिए आपको एक योग्य और पंजीकृत फिजियोथेरेपिस्ट को पहले दिखाना है, उसके अनुसार फिर वो आपको एक व्यायाम का पूरा प्रोग्राम डिजाइन कर देंगे और फिर उसे आप अपने घर पर कर सकते हैं।
1: जी, हम अपने श्रोताओं को कहना चाहेंगे अगर वो किसी भी तरह की कोई फिजियोथेरेपी करना चाहे तो स्वयं से ना करे, सोशल मीडिया से देख कर ना करे, सोशल साइट्स पे जाकर ना करे, बल्कि जो पंजीकृत फिजियोथेरेपिस्ट है उनसे सलाह लेकर ही किसी तरह की कोई एक्सरसाइज घर पर करें। डॉक्टर साहब, फिजियोथेरेपी उपचार शुरू करने से पहले क्या हमें किन्हीं बातों का ध्यान देने की जरूरत है?
2: बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बिल्कुल है सर। जब फिजियोथेरेपी हमें शुरुआत करनी है तो सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा आप एक पंजीकृत योग्य फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, उनके पास आप अपनी पुरानी कोई रिपोर्ट है, कोई जांच है या कहीं और किसी पद्धति का ट्रीटमेंट लिया है उसकी जानकारी भी फिजियोथेरेपिस्ट को दें, और इसके अलावा और क्या उनकी पूर्व में सर्जरी या कोई और परेशानी है उसके भी फिजियोथेरेपिस्ट को बताएं। इससे क्या होगा सर, फिजियोथेरेपिस्ट जब आंकलन करेगा उस मरीज का तो उसको आसानी हो जाएगी और फिर उसके अनुसार क्या उसको दिया जा सकता है क्या नहीं दिया जा सकता है उसमें आसानी होगी। मैं इसको उदाहरण स्वरूप बताना चाहूंगा क्यों जरूरी है। जैसे कि एक हार्ट का पेशेंट आता है, हार्ट के पेशेंट में कोई वेल्व की सर्जरी हुई है जो कि एक अगेन एक मैग्नेटिक डिवाइस लगा है, तो हमारी फिजियोथेरेपी में इलेक्ट्रोथेरेपी जो संकाय है वह कई जगह कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, जिसका अर्थ है वेल्व जैसे सर्जरी है वहां पर नहीं दिया जा सकता, या कोई महिला है जो गर्भावस्था में है उन्हें भी कई ऐसी मशीनें हैं, जब देखा जाए तो लगभग सभी मशीनें नहीं दी जा सकती। तो जितना डिटेल्ड में जितना विस्तार से पेशेंट अपने फिजियोथेरेपिस्ट को अपनी जानकारियां देगा तो एक तो आंकलन करने में, असेसमेंट करने में, दूसरा ट्रीटमेंट डिजाइन करने में भी काफी मदद होगी।
1: जी निश्चित तौर पर हम यही कह सकते हैं कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति में फिजियोथेरेपी का बहुत अहम रोल है। अब चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को जो भी यह कार्यक्रम सुन रहे हैं उनको क्या सलाह देंगे ताकि वे दर्द से बचाव और शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रख सके?
2: मेरा हमारे श्रोताओं से यही कहना है कि आहार बहुत अच्छे से लें, संपूर्ण आहार लें, नींद अच्छी लें, ये बहुत बड़ा एक पहलू है हमारे स्वस्थ जीवन का। रोजमर्रा में कोई ना कोई तरीके का, चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे वो रनिंग हो, चाहे वॉकिंग हो, इस प्रकार का कुछ व्यायाम करें, एवं कम से कम हमारे शरीर के जितने हमारे जो मेजर मेजर जॉइंट्स हैं, जो जोड़ हैं, उनको मूवमेंट करने की कोशिश करें, बैलेंस ट्रेनिंग करें, और इससे आप स्वस्थ रहेंगे और जो हमारा फिट इंडिया का सपना है वो जरूर पूरा हो।
1: बिल्कुल अभिनव जी, आप हमारे स्टूडियोज में आए और इतनी अच्छी जानकारी आपने हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद मनीष जी।
0: श्रोताओं, अभी हमने डॉक्टर अभिनव साठे से फिजियोथेरेपी से दर्द प्रबंधन के आधुनिक तरीकों के बारे में जानकारी ली और यही उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए लाभकारी रहेगी। और श्रोताओं, इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद अब एक बार फिर रुक करते हैं मनोरंजन की ओर और साथ मिलकर सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, टेक्नोलॉजी आज केवल हमारी सुविधा का माध्यम ही नहीं रही है, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं को भी पहले से अधिक आसान और प्रभावी बना रही है। इन्हीं से एक जो खास है इनमें, डिजिटल बायोमार्कर, हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी जानकारी या संकेत जो डिजिटल उपकरणों के माध्यम से एकत्र की जाती है, श्रोताओं, डिजिटल बायोमार्कर कहलाती है। सरल भाषा में कहें तो जब कोई स्मार्ट वॉच, फिटनेस बैंड, मोबाइल हेल्थ ऐप या अन्य कोई डिजिटल डिवाइस जो हमारे शरीर की गतिविधियों और स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों को लगातार रिकॉर्ड करती है, तो उससे मिलने वाली जानकारियों को बायोमार्कर कहा जाता है। इनके द्वारा हार्ट रेट हमारा, नींद, चलने के कदम, शरीर में ऑक्सीजन का स्तर, ब्लड शुगर मॉनिटरिंग या शरीर की अन्य गतिविधियों को स्वास्थ्य की स्थिति से समझने में मदद मिलती है। यानी श्रोताओं, सेहत अब जो है तकनीक से बेहतर होती जा रही है, या ये कहें कि इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बन रही है। चलिए तो एक और गीत साथ मिलकर सुन लेते हैं।

श्रोताओं, अब समय है आपसे विदा लेने का। चलते चलते यही कहेंगे, कार्यक्रम यूं ही सुनते रहें और अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक जरूर भेजते रहें। पत्र लिखने का पता है कार्यक्रम स्वास्थ्य अर्पण, द्वारा के निदेशक, आकाशवाणी श्यामला हिल्स, भोपाल, पिन 462002। और अब फिर मिलने के वादे के साथ एक बार फिर हम करते हैं नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति था। आप
1: मीडियम वेव पर, ये आकाशवाणी जबलपुर है।
2: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
3: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
2: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
4: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूंगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुंचते पहुंचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
3: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
5: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी?

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए लोक संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है। कलाकार हैं आशीष श्रीवास्तव और साथी। इनसे सुनते हैं बुंदेली लोकगीत। पहले सुनते हैं स्वांग गीत।

आशीष श्रीवास्तव और साथियों के गाए इस बुंदेली लोकगीत के साथ ही लोक संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज के कलाकार हैं राजेंद्र पारिख। इनसे सुनते हैं गीत और भजन। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है। पहले सुनते हैं इन्हीं का गाया गीत।

0: राजेंद्र पारिक के गए इस भजन के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे थे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।
1: मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जबलपुर है।
2: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
3: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
2: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
4: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूंगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुंचते पहुंचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
1: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
2: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आपको एक सूचना दे दें, आकाशवाणी से प्रसारण हेतु कार्यक्रम प्रस्ताव आमंत्रित करने की सूचना। प्रसार भारती आकाशवाणी पर प्रसारण के लिए रेडियो कार्यक्रमों की सोर्सिंग हेतु पात्र प्रोडक्शन हाउस, निर्माता, अधिकार स्वामी, एग्रीगेटर या कंटेंट क्रिएटर्स को आमंत्रित करता है। ये कार्यक्रम सोर्सिंग, राजस्व साझाकरण या रेवेन्यू शेयरिंग, प्रायोजित अथवा स्पॉन्सर्ड एवं निःशुल्क या ग्रेटिस आधार पर किया जाएगा। यह सब प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए संशोधनों अथवा आदेशों के अनुरूप होगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि प्रस्ताव जमा करने से पहले वे प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों एवं आदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। ये सभी दस्तावेज प्रसार भारती और आकाशवाणी की वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं। आकाशवाणी भोपाल से हिंदी, उर्दू अथवा सिंधी भाषा में रेडियो कार्यक्रमों की सोर्सिंग के लिए इच्छुक आवेदक ईमेल bhopal@prasarbharti.gov.in एवं hopaarbhopal@gmail.com पर अपने प्रस्ताव भेज सकते हैं। प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। सूचना समाप्त हुई।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत। हमने लिया है मुकेश का गाया हुआ। हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा, संगीत तैयार किया शंकर जयकिशन ने। फिल्म का नाम संगम।

0: मुकेश की आवाज़ में गाए फूल बने अंगारे फिल्म के इस गाने के साथ ही कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। दोपहर के 2:10 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि पूरे देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। उन्होंने कहा कि इन 12 वर्षों ने निर्धनों और वंचितों के जीवन में आशा, अवसर और स्वावलंबन के नए अध्याय लिखे हैं। इंदौर में कल से ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 13 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन की जानकारी देते हुए बताया कि इस सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि कृषि नवाचार, खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय वृद्धि जैसे विषयों पर विचार विमर्श करेंगे।
2: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे।
1: आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश की 98% आबादी तक है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस मौके पर आकाशवाणी को बधाई दी है।
3: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
1: प्रदेश से राज्यसभा की तीसरी सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश केवट को उम्मीदवार घोषित किया है। इस सीट के लिए उनका कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन से मुकाबला होगा। मध्य प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटें रिक्त होने जा रही हैं।

सीटों की पूर्ति के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन प्रक्रिया के तहत आज नामांकन प्रक्रिया का अंतिम दिन है। भाजपा पहले ही दो सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, जबकि एक सीट के लिए कांग्रेस द्वारा घोषित उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश के कई जिलों में प्री मानसूनी गतिविधियां जोर पकड़ चुकी हैं। जून के शुरुआती दिनों में ही प्रदेश में औसत से 65% से अधिक बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अब तक पूरे प्रदेश में औसतन आधा इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है, जबकि इस अवधि में सामान्य बारिश केवल 8.3 मिलीमीटर मानी जाती है। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि प्रदेश में मानसून 15 से 18 जून के बीच प्रवेश कर सकता है। वहीं आज प्रदेश के करीब आधे हिस्से में आंधी, गरज चमक और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जलगंगा संवर्धन अभियान के तीसरे चरण के अंतर्गत आगरमालवा जिले के नलखेड़ा में लखुंदर नदी पर स्वच्छता एवं श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिवपुरी में कल 35वीं एनसीसी बटालियन के द्वारा आयोजित एनसीसी शिविर में कैडेटों ने रक्तदान किया। जबलपुर में बारिश से जलभराव की परेशानी से निपटने के लिए निगम आयुक्त ने आगामी 15 दिनों में नालों और नालियों की सफाई तथा जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर नर्मदापुरम के बनखेड़ी में साइकिल रैली का आयोजन कल किया गया। कटनी में पीएम स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूर्ण होने पर 30 जून तक लोक कल्याण मेलों का आयोजन किया जा रहा है और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा के लिए शहरों की सूचना जारी कर दी है। पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। दोपहर के 2:15 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने CBSE बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और क्रिकेट में भारत ने न्यू चंडीगढ़ में एकमात्र टेस्ट मैच में अफगानिस्तान को पहली पारी में 152 रन पर आउट करने के बाद फॉलो ऑन कराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
2: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
3: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की

0: सबसे बड़ी प्राथमिकता रही।
1: आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
2: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि पूरे देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी पहल ने कठिन परिस्थितियों में करोड़ों परिवारों को ताकत दी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। एक रिपोर्ट।
3: आयुष्मान भारत योजना देश के सभी नागरिकों को समान और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है। पश्चिम बंगाल इस योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। योजना के तहत देश भर में 36,000 से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है और अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस योजना की शुरुआत के बाद से यह भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बदलाव का आधार बनी है। इससे लोगों के इलाज पर होने वाला निजी खर्च कम हुआ है और उन्हें सरकारी तथा निजी अस्पतालों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
4: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और मधु जैन की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और CBSE से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होगी। जनहित याचिका में CBSE द्वारा अपनाई गई डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धनशोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धनशोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के दबंग नेता जहांगीर खान को आज सुबह नेपाल सीमा से गिरफ्तार कर लिया। वो कथित रूप से नेपाल सीमा से भागने के प्रयास में था। आगे की पूछताछ के लिए उसे कोलकाता लाया जा रहा है। पिछले महीने की 21 तारीख को फलता विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान के सिलसिले में ये गिरफ्तारी हुई है। भारत ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठकों की मेजबानी करेगा। ये बैठक मध्य प्रदेश के इंदौर में कल से 13 जून तक होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ये बैठक इस वर्ष ब्रिक्स संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान हो रही है। श्री चौहान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुँच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
5: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
2: पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्यशाला आयोजित करेगा। पंचायती राज मंत्रालय में सचिव विवेक भारद्वाज कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात की ग्राम पंचायतें और ब्लॉक पंचायतें कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगी। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ।
6: आज़ादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश के 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए विश्व के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।
7: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम।
8: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन।
9: Good evening, this is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9.
6: अमन यादव के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
10: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
2: सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL से कथित रूप से जारी उस अधिसूचना का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों की KYC निलंबित कर दी है और सिम कार्ड 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया और कहा कि BSNL ने सिम KYC से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर जवाबी हमले किए हैं। इससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है और संघर्ष विराम बाधित है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने इसराइल के प्रमुख सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। एक रिपोर्ट।
11: ईरान और इसराइल के बीच हालिया सैन्य गतिविधियों ने अप्रैल से लागू संघर्ष विराम को चुनौती दी है। हाल के मिसाइल और सैन्य हमलों से क्षेत्रीय शांति भंग हुई है। ईरान ने कहा कि उसकी कार्रवाई लेबनान में इसराइली सैन्य अभियानों के जवाब में की गई एक सीमित और संतुलित प्रतिक्रिया थी। वहीं इसराइल का दावा है कि

0: उसकी सैन्य कार्रवाइयों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना और भविष्य के संभावित हमलों को रोकना है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत की प्रक्रिया में लौटने की अपील की है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के साथ बातचीत की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन अफगानिस्तान दूसरी पारी में चायकाल तक 5 विकेट पर 98 रन बनाकर खेल रहा है। भारत द्वारा फॉलो ऑन कराए जाने के बाद अफगानिस्तान 314 रन से पीछे है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने CBSE बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को छाया पाठक का नमस्कार। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं इन सभी श्रोताओं की पसंद से बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से ये पत्र आया। रामचंद माखीजा काफिर, सविता, बेबी स्वाति, माही, पूजा, छुटकी, शरद, श्रेया, पूनम वाधवानी और समस्त माखीजा परिवार। रिन्नी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी और दत्तनेगी से भागवत वर्मा। इन सभी श्रोताओं की पसंद है आनंद बख्शी की शब्द रचना, धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, आवाज किशोर कुमार की है और फिल्म है मिस्टर एक्स इन बॉम्बे।

अगला गीत इन सभी श्रोताओं ने सुना चाहा है, सरो चौक अमरावती महाराष्ट्र से, कमरोल्ला ठेकेदार नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा, अलिया, शोएब खान, पोत्रा, मुश्ताबा खान, राउफ भाई शाहिद, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, महाराष्ट्र बीड शहर से ये पत्र आया, प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया और प्रदीप और केशव पटेल का। इन सभी श्रोताओं ने सुना चाहा वक्त फिल्म का गाना, जिसे गाया आशा भोंसले ने, धुन तैयार की रवि ने और गीत लिखा साहिल लुधियानवी ने।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश के फिल्मी नगमे। कार्यक्रम का अगला गीत कर्तव्य फिल्म का है, जिसे गाया लता मंगेशकर ने। कफी लजर ने इस गीत को लिखा, धुन तैयार की लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनना चाहा है उपाध्याय नगर देवास से मुरारी लाल वर्मा, मनीष वर्मा शिवम, सुपर मार्केट देवास से प्रकाश चंद जसवानी, पंकज और रानी सनी जसवानी, गंगेड़ी जिला उज्जैन से गोपाल भगवान, गोविंद सालिग्राम, दशरथ बागवान, लोकेंद्र वर्मा, राजाराम नगर देवास से पत्राय राजू अग्रवाल, मधु राकेश अग्रवाल का। इसी गीत को सुनना चाहा है जेल रोड देवास से नवीन वर्मा, बबलू वर्मा और कालू भैया ने।

प्रेम गीत फिल्म का अगला गीत गाया जगजीत सिंह ने। हिंदी वर ने इस गीत को लिखा, संगीत तैयार किया जगजीत सिंह ने ही। सुनना चाहा है गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंदले, आरती जोंदले, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री, यहीं से दान सिंह रावत, रानू, पद्मिनी रावत, शुभम, सौरभ रावत। तो आइए सुनते हैं इन सभी श्रोताओं की पसंद पर प्रेम गीत का गाना।

भाटापारा दतरेंगी से पत्राया द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झवेंद्र कुमार वर्मा का। इन श्रोताओं ने सुनना चाहा थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का ये गाना, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं इन श्रोताओं की पसंद का अगला गीत। धोरा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नेत्राम साहू, भूपेन साहू। राजावत कॉम्प्लेक्स, नई सड़क, एमपी शाजापुर से ये पत्र आया मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशिद रक्षित और समस्त राजावत परिवार का। इन श्रोताओं की पसंद है साथी फिल्म का गीत, जिसे गाया मुकेश और सुमन कल्याणपुर ने। संगीत नौशाद का और इस गीत को लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने।

0: साथी फिल्म के इस गाने के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं समाप्त करने की छाया पाठक को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक इंदौर में कल से 13 जून तक होंगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में जानकारी दी कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी।

और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी है। श्री रिजिजू ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि आज पूरा राष्ट्र आकाशवाणी से जुड़ा है। आकाशवाणी के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना सशक्त हो रही है। पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्यशाला आयोजित की जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होगी। प्रदेश के विकास खंडों और नगरीय निकायों में 12 से 18 जून तक जन कल्याण शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं से वंचित पात्र नागरिकों का पंजीयन और लाभ वितरण किया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा के लिए शहरों की सूचना जारी कर दी है और मौसम विभाग ने प्रदेश के ग्वालियर, सागर, शहडोल, जबलपुर, नर्मदापुरम, इंदौर और भोपाल संभागों के कई जिलों में आंधी, गरज चमक और बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 3 बजे हैं। आइए आपको जानकारी दे दें आज शाम प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। शाम 5:02 पर युवावाणी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति रहेगा, जिसमें आज आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के स्वर्णिम 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी भोपाल द्वारा शासकीय सरदार वल्लभ भाई पटेल पॉलिटेक्निक कॉलेज भोपाल में 5 जून 2026 को आयोजित तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता के संपादित अंश। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं शाम 5:33, शाम 6:30 और रात 8:35 पर। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम होगा शाम 6:00। आजकल इसका समय है 6:40 पर। 6:45 पर प्रादेशिक समाचार दर्शन। आकाशवाणी भोपाल से 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम होगा, जिसमें सुनिएगा फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष किसान सशक्तिकरण, ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं रात 8:00। रात 9:30 पब्लिक स्पीक हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। श्रोता अपनी पसंद के फिल्मी गाने सुन सकते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, समय रहेगा रात 10:00। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 सुनिएगा रसिक लाल अंधारिया का ख्याल गायन। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय दोपहर के 3:51 हुए हैं। अब मीडियम वेव पर हमारा ट्रांसमिशन कुछ देर के लिए बंद होता है।

0: उस बात का ध्यान रखते हैं कि पहली बात तो हम अपनी सावधानी का ज्यादा ध्यान रखते हैं। छोड़ने की बात से पहले हम ये देखते हैं कि हमें कितना लहरों के बीच में जाना चाहिए और कितना नहीं जाना चाहिए, तो
1: क्या
0: उस
1: बात
0: हिसाब
1: है।
0: से हम जाते हैं। और रेत जो होती है ममता जी, वो अक्सर आप जहाँ पैर रखेंगे, दूसरा पैर आगे बढ़ाएंगे, तो वहाँ खिसकती है रेत। तो अगर आप भूल से भी किसी पत्थर पर खड़े हो जाते हैं और जब आप पैर नीचे रखेंगे तो आपका पैर बहुत अंदर तक जाएगा। तो ये सावधानी हमें किसी ने
1: बिल्कुल।
0: बताई
1: और ये
0: थी।
1: कहा जाता है ना कि आग और पानी का कोई भरोसा नहीं
0: जी
1: होता है, तो खास तौर से समंदर का तो बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। और जो जैसे कि मुंबई तटीय इलाका है और यहाँ पर बीच है और नियमित रूप से लोग आते जाते हैं, तो यहाँ का मालूम है
0: जी
1: यहाँ के निवासियों को, और इतना गहरा भी नहीं है समंदर यहाँ का। लेकिन बहुत सारे जगहों पर जहाँ पर महासागर की गहराई ज़्यादा है और
0: जी
1: जो बहुत इंटीरियर बीच है,
0: जी
1: वहाँ जब आप जाते हैं तो इन सब बातों का खास ख्याल रखना चाहिए कि आप बहुत अंदर तक पानी में ना जाएं, और
0: बिल्कुल
1: कहीं पर रेत धसकती है।
0: बिल्कुल
1: और कुछ ऐसे जगह, खास तौर से रायगढ़ में एक जगह है दापोली, जहाँ पर
0: जी
1: हमने देखा, हमने खुद देखा है कि वहाँ पर पैर रखिए तो आप एक ज़रा सा कुछ सेकंड के लिए खड़े होंगे तो आपके पैर मतलब घुटने तक रेत चली जाती है, इतना
0: बिल्कुल
1: तक। और कई बार गाड़ियाँ वहाँ पार्क की जाती हैं, वो गाड़ियाँ फंस जाती हैं और ये बाकायदा इंसिडेंट होते हैं। तो इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि आप कहाँ जहाँ जा रहे हैं पहले वहाँ के बारे में सावधानी और नियमावली पढ़ लें, उस जगह के बारे में, उस समंदर के बारे में। और एक बात और है जो आप भी
0: जी
1: जानती होंगी कि वहाँ पर
0: बिल्कुल
1: ढेर सारा कचरा छोड़कर ना आए, बताइए आप क्या
0: बिल्कुल,
1: कहेंगी।
0: क्योंकि हम देखते हैं कि वहां पर लोग घर से या तो खाने के लिए कुछ चीजें ले जाते हैं या वहां से परचेज करके खाते हैं, जो छोटी छोटी दुकानें लगी रहती है, तो उसमें जो पॉलिथीन चीज जैसी चीज होती है या आपने दोने में कोई चीज खाई है, तो वो सब वहीं पे छोड़ के चले आते हैं, तो वो वापस समुद्र में जाता है, जो उसको दूषित कर देता है
1: और
0: पानी को,
1: आपको वापस देता भी है
0: वापस
1: लाकर।
0: पलट के वो लहरों के थ्रू वापस आता
1: हाँ,
0: भी है।
1: तो ये कहने का मतलब है कि आप मुझे जो दोगे मैं वही वापस करूंगा,
0: हाँ
1: मतलब समंदर
0: बिल्कुल
1: ये एक तरह से मूक भाषा में ये कहता है।
0: संदेश देता है।
1: तो ये मत करिए, जब आपको मालूम है कि आपने पैर डाला पानी में और एक पॉलीथिन फंस गया और एक कचरा कागज का टुकड़ा
0: बिल्कुल
1: या कुछ भी आ गया, तो बहुत बुरा सा लगता है ना, आपको
0: जी
1: डर भी लगता है कि कहीं कोई कीड़ा तो नहीं आ गया, मछली तो
0: जी
1: नहीं आ गई है ना।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे आपने कहा कि जैसा हम करेंगे, जैसा वो उसके साथ करेंगे, वो भी वापस जवाब देता है। तो हमें इन सब की खूबसूरती को अगर देखने जाना है तो आप देखिए, खाइए, पीजिए, लेकिन आप उस कचरे को या तो आप अपने साथ किसी पॉलिथीन में, पैकेट में, झोले में रख के ले आइए अपने घर में, आसपास जो आपका कचरा दान है उसमें डालिए, या वहाँ पर भी रहते हैं कचरे के डिब्बे तो आप उसमें डालिए, वहाँ समुद्र के वातावरण को, उसके किनारे को, उसकी सुंदरता को नष्ट नहीं
1: नहीं
0: करें,
1: करें,
0: इसका ध्यान
1: बिल्कुल।
0: रखना
1: और
0: है।
1: बारिश के मौसम में समंदर के हर बीच पर बहुत सावधानी बरतनी चाहिए।
0: बिल्कुल
1: मुंबई में भी खास तौर से एक बीच है, अक्सा बीच जो
0: जी
1: कहा जाता है, वो थोड़ा सा गहरा है, तो वहाँ पर हर साल बारिश में दुर्घटनाएं घटित होती हैं और ये कहा जाता है। और उस वहाँ पर जो युवाओं का झुंड है अक्सर जाता है
0: जी
1: और हर साल कुछ न कुछ हादसे होते हैं। तो प्लीज़ अपनी ज़िंदगी का
0: जी
1: ख्याल रखें, अपने
0: बहुत
1: माता
0: सही
1: पिता
0: कहा
1: का ख्याल रखें कि कितनी अनमोल है ज़िंदगी। और आज विश्व सागर दिवस पर ये जो बातें हम चर्चा कर रहे हैं,
0: जी,
1: हम कहते हैं कि हमारे श्रोताओं के कुछ अनुभव होंगे, खट्टे मीठे अनुभव साझा करें,
0: बिल्कुल
1: बजाय ये लिखने कि हमने बहुत सारी बातें तो साझा कर दी है और कोई एक तरह की टिप्पणी हमारे श्रोता लिख रहे हैं, तो उसकी बजाय अपने अनुभव साझा करें, हम आप तक पहुँचाएंगे।
0: जी
1: अब क्या करें, हम
0: अब गीत सुना दीजिए।
1: चलिए सुनते हैं गाना।

0: तो ममता जी, हम पहले विषय बता देते हैं कि हम बात करेंगे व्यंजन में मथुरा की दाल और आलू की कचौड़ी जो वहाँ पे प्रसिद्ध है उसके बारे में, और एक विषय हमारा है तपाक से बोलने की आदत। तो हमारे साथी इस पर लिखकर भेज चुके हैं, और जो नए साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं विविध भारती के पेज से वो भी लिखकर भेजें। और धरती की धड़कन है महासागर, विश्व महासागर दिवस पर
1: वो हमने बता
0: ही दिया है, और कथा सुधा में हम आभूषण का भाग दो सुनेंगे।
1: और तपाक से बोलने की जो आदत है, कई बार लोग तपाक से बोलने के चक्कर में गलत बोल जाते हैं, तो जरा सोच समझ के बोले क्योंकि कहा जाता है ना कि बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बोली कभी वापस नहीं आती। तो जब बोले तो सोच समझ के। फिलहाल ये गाना सुने।

0: आइए सुनते हैं कथा सुधा कहानी आभूषण, इसका भाग दो।
1: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
2: कथा सुधा में हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण। पिछली कड़ी में आपने सुना,
3: शीतला के पति का नाम विमल सिंह था। उनके पुरखे किसी जमाने में इलाकेदार थे, लेकिन अब इस घर की दशा हीन हो गई है। सुरेश सिंह के पिता जमींदार के काम में दक्ष थे। विमल के पास सवारी का टट्टू भी न था। उसे दिन में दो बार भोजन भी मुश्किल से मिलता था। उधर सुरेश के पास हाथी, मोटर और कई घोड़े थे। 10-5 बाहर के आदमी नित्य द्वार पर पड़े रहते थे, पर इतनी विषमता होने पर भी दोनों में भाईचारा निभाया जाता था। सुरेश विद्या प्रेमी थे। हिंदुस्तान में ऊंची शिक्षा प्राप्त करके वो यूरोप चले गए और सब लोगों की शंकाओं के विपरीत वहां से आर्य सभ्यता के परम भक्त बनकर लौटे। पहले वो घर वालों के बहुत जोर देने पर भी विवाह करने को राजी नहीं हुए थे, पर यूरोप से लौटने पर उन्होंने उसी पहले की कन्या से बिना उसके आचार विचार जाने हुए विवाह कर लिया। उसी सौभाग्यवती वधू को देखने के लिए आज शीतला अपनी सास के साथ सुरेश के घर गई थी। उसी के आभूषणों की छटा देखकर वो मर्माहत सी हो गई। विमल सिंह ने घर से निकल जाने की ठानी। निश्चय किया, या तो इसे गहनों से ही लाद दूंगा या वैधव्य शोक से। या तो आभूषण ही पहनेगी या सिंदूर को भी तरसेगी। वो पहले कलकत्ता

0: करते गया, वहां जो सुन पाया कि रंगून में मजदूरी अच्छी मिलती है, तो वो रंगून जा पहुंचा और बंदर पर माल चढ़ाने उतारने का काम करने लगा। और विमल उन गिनती के दो चार मजदूरों में था जो संयम से रहते थे, जिनके जीवन का उद्देश्य खा पी कर मर जाने के सिवा कुछ और भी था। थोड़े ही दिनों में उसके पास थोड़ी सी संपत्ति हो गई। संयम और आचार सम्मान सिद्धि के मंत्र हैं। विमल मजदूरों का नेता और महाजन हो गया। कुंवर सुरेश सिंह की नववधु मंगला कुमारी गृह कार्य में निपुण, पति के इशारे पर प्राण देने वाली अत्यंत विचारशीला, मधुर भाषिणी और धर्म भीरु स्त्री थी, पर सौंदर्य विहीन होने के कारण पति की आंखों में कांटे के समान खटकती थी। धीरे धीरे पति पर से उसकी श्रद्धा उठने लगी। उसने तर्क किया कि ऐसे क्रूर हृदय शून्य कल्पनाहीन मनुष्य से मैं भी उसी का सा व्यवहार करूंगी। जो पुरुष रूप का भक्त है वो प्रेम भक्ति के योग्य नहीं। इस प्रत्याघात ने समस्या और भी जटिल कर दी।
1: आइए सुनते हैं इस कहानी की दूसरी कड़ी।
0: मंगला को केवल अपनी रूपहीनता का ही रोना न था, शीतला का अनुपम रूप लालित्य भी उसकी कामनाओं का बाधक था, बल्कि ये उसकी आशा लताओं पर पड़ने वाला तुषार था। मंगला सुंदरी न सही, पर पति पर जान देती थी। जो अपने को चाहे उससे हम विमुख नहीं हो सकते। प्रेम की शक्ति अपार है, पर शीतला की मूर्ति सुरेश के हृदय द्वार पर बैठी हुई मंगला को अंदर न जाने देती थी, चाहे वो कितना ही वेश बदल कर आवे। सुरेश इसी मूर्ति को हटाने की चेष्टा करते थे, उसे बलात् निकाल देना चाहते थे, किंतु सौंदर्य का आधिपत्य धन के आधिपत्य से कम दुर्निवार नहीं होता। जिस दिन शीतला इस घर में मंगला का मुख देखने आई थी, उसी दिन सुरेश की आंखों ने उसकी मनोहर छवि की एक झलक देख ली थी। वो एक झलक मानो एक क्षणिक क्रिया थी, जिसने एक ही धावे में समस्त हृदय राज्य को जीत लिया, उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया। सुरेश एकांत में बैठे हुए शीतला के चित्र को मंगला से मिलाते ये निश्चय करने के लिए कि उनमें क्या अंतर है, एक क्यों मन को खींचती है, दूसरी क्यों उसे हटाती है, पर उसके मन का ये खिंचाव केवल एक चित्रकार या कवि का रसास्वादन मात्र था। वो पवित्र और वासनाओं से रहित था। वो मूर्ति केवल उसके मनोरंजन की सामग्री मात्र थी। वो अपने मन को बहुत समझाते, संकल्प करते कि अब मंगला को प्रसन्न रखूंगा, यदि वो सुंदर नहीं है तो उसका क्या दोष, पर उनका ये सब प्रयास मंगला के सम्मुख जाते ही विफल हो जाता था। वो बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से मंगला के मन के बदलते हुए भावों को देखते थे, पर एक पक्षाघात पीड़ित मनुष्य की भांति घी के घड़े को लुढ़कते हुए देखकर भी रोकने का कोई उपाय ना कर सकते थे। परिणाम क्या होगा ये सोचने का उन्हें साहस ही न होता था। पर जब मंगला ने अंत को बात बात में उनकी तीव्र आलोचना करना शुरू कर दिया, वो उनसे उच्छृंखलता का व्यवहार करने लगी, तो उसके प्रति उनका वो उतना सौहार्द भी विलुप्त हो गया। घर में आना जाना छोड़ दिया।

0: एक दिन संध्या के समय बड़ी गर्मी थी। पंखा झलने से आग और भी दहकती थी। कोई सैर करने बगीचे में भी न जाता था। पसीने की भांति शरीर से सारी स्फूर्ति बह गई थी, जो जहां था वहीं मुर्दा सा पड़ा था। आग से सेके हुए मृदंग की भांति लोगों के स्वर कर्कश हो गए थे। साधारण बातचीत में भी लोग उत्तेजित हो जाते थे, जैसे साधारण संघर्षण से वन के वृक्ष जल उठते हैं। सुरेश सिंह कभी चार कदम टहलते, फिर हाँप कर बैठ जाते थे। नौकरों पर झुंझला रहे थे कि जल्द जल्द छिड़काव क्यों नहीं करते। सहसा उन्हें अंदर से गाने की आवाज सुनाई दी।
1: पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर।
2: क्या बात है,
1: मुखड़े पे डाले हुए जुल्फों की बदली।
0: चौंके, फिर क्रोध आया। मधुर गान कानों को अप्रिय जान पड़ा।
3: ये क्या बेवक्त की शहनाई है, यहाँ गर्मी के मारे दम निकल रहा है और इन सबको गाने की सूची है। मंगला ने बुलाया होगा और क्या। लोग नाहक ही कहते हैं कि स्त्रियों का जीवन का आधार प्रेम है, उनके जीवन का आधार वही भोजन निद्रा राग रंग आमोद प्रमोद है जो समस्त प्राणियों का है। घंटे भर तो सुन चुका, ये गीत कभी बंद होगा भी या नहीं। सब व्यर्थ में गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हैं।
0: अंत को न रहा गया। जनान खाने में आकर बोले,
3: ये तुम लोगों ने क्या कांव-कांव मचा रखी है, हाँ? ये गाने बजाने का कौन सा समय है, बाहर बैठना मुश्किल हो गया।
0: सन्नाटा छा गया, जैसे शोरगुल मचाने वाले बालकों में मास्टर पहुंच जाए। सभी ने सिर झुका लिए और सिमट गईं। मंगला तुरंत उठकर सामने वाले कमरे में चली गई, पति को बुलाया और आहिस्ते से बोली,
4: अरे क्या बात है, इतना क्यों बिगड़ रहे हो आखिर।
3: मैं इस वक्त गाना नहीं सुनना चाहता।
4: तुम्हें सुनाता ही कौन है, क्या मेरे कानों पर भी तुम्हारा अधिकार है।
3: फजूल की मच।
4: तुमसे मतलब?
3: मैं अपने घर में ये कोलाहल न मचने दूंगा।
4: तो मेरा घर कहीं और है।
3: इन सबसे कह दो फिर किसी वक्त आए।
4: हाँ हाँ, इसलिए कि तुम्हें इनका आना अच्छा नहीं लगता है ना।
3: ओहो हाँ हाँ हाँ, इसीलिए।
4: तुम क्या सदा वही करते हो जो मुझे अच्छा लगे। तुम्हारे यहाँ मित्र आते हैं, हंसी ठट्टे की आवाज अंदर सुनाई देती है। मैं कभी नहीं कहती कि इन लोगों का आना बंद कर दो। तुम मेरे कामों में दखल अंदाजी क्यों करते हो भला।
3: इसलिए कि मैं घर का स्वामी हूँ।
4: स्वामी हूँ, स्वामी हूँ, तुम बाहर के स्वामी हो, यहाँ इस घर में मेरा अधिकार है।
3: क्यों व्यर्थ की बकबक करती हो, मुझे चिढ़ाने से क्या मिलेगा तुम्हें, हाँ?
4: अच्छी बात है, जब इस घर में मेरा कोई अधिकार नहीं तो मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। अब तक भ्रम में थी, आज तुमने वो भ्रम मेरा मिटा दिया। मेरा इस घर पर अधिकार कभी था ही नहीं। जिस स्त्री का पति के हृदय पर अधिकार नहीं, उसका उसकी संपत्ति पर भी कोई अधिकार नहीं हो सकता।
3: अरे सुनो, बात का बतंगड़ क्यों बनाती हो, मेरा ये मतलब नहीं था। कुछ का कुछ समझ गई तुम तो।
4: मन की बात आदमी के मुंह से अनायास ही निकल जाती है। सावधान होकर हम अपने भावों को छिपा लेते हैं।
0: सुरेश को अपनी असज्जनता पर दुख तो हुआ, पर इस भय से कि मैं इसे जितना ही मनाऊंगा उतना ही ये और भी जली कटी सुनाएगी, उसे वहीं छोड़कर बाहर चले आए।

प्रातःकालीन ठंडी हवा चल रही थी। सुरेश खुमारी में पड़े हुए स्वप्न देख रहे थे कि मंगला सामने से चली जा रही है। चौंक पड़े, देखा द्वार पर सचमुच मंगला खड़ी है। घर की नौकरानियां आंचल से आंसू पोंछ रही हैं। कई नौकर आसपास खड़े हैं। सभी की आंखें सजल और मुख उदास है, मानो बहु विदा हो रही है। सुरेश समझ गए कि मंगला को कल की बात लग गई, पर उन्होंने उठकर कुछ पूछने की, मनाने की या समझाने की चेष्टा नहीं की। ये मेरा अपमान कर रही है, मेरा सिर नीचा कर रही है। जहां चाहे जाए, मुझसे कोई मतलब नहीं। यूं बिना कुछ पूछे गाछे चले जाने का

अर्थ ये है कि मैं इसका कोई नहीं, फिर मैं इसे रोकने वाला कौन? वो यूं ही जड़वत पड़े रहे और मंगला चली गई, उनकी तरफ मुंह उठाकर भी नहीं ताका।

0: मंगला पांव पैदल चली जा रही थी। एक बड़े तालुकेदार की औरत के लिए ये मामूली बात न थी। हर किसी को हिम्मत न पड़ती थी कि उससे कुछ कहे। पुरुष उसकी राह छोड़कर किनारे खड़े हो जाते थे। नारियां द्वार पर खड़ी करुण कौतूहल से देखती थीं। इस गांव से निकलकर मंगला उस गांव में पहुंची जहां शीतला रहती थी। शीतला सुनते ही द्वार पर आकर खड़ी हो गई और मंगला से बोली,
1: मंगला बहन, जरा अंदर आकर दम ले लो। ये क्या हुआ?
2: शीतला बहन, जो भाग्य में लिखा था वही हुआ, और क्या।
1: कुंवर जी से कुछ कहा सुनी हुई क्या?
2: मुंह से कुछ न कहने पर भी तो मन की बात छिपी नहीं रहती ना।
1: अरे, तो क्या अब यहां तक नौबत आ गई है?
2: चाहती तो अब भी वहीं पड़ी रहती, उसी घर में जीवन कट जाता। पर जहां प्रेम नहीं, पूछ नहीं, मान नहीं, वहां अब नहीं रह सकती मैं।
1: तुम्हारा मैका कहाँ है?
2: मैं के कौन मुंह लेकर जाऊंगी मैं भला?
1: अरे, तो तब कहाँ जाओगी?
2: ईश्वर के दरबार में, ईश्वर के दरबार में पूछूंगी कि तुमने मुझे सुंदरता क्यों नहीं दी, बदसूरत क्यों बनाया। बहन, स्त्री के लिए इससे अधिक दुर्भाग्य की बात नहीं कि वो रूपहीन हो। शायद पहले जन्म की पिशाचिनियां ही बदसूरत औरतें होती हैं। रूप से प्रेम मिलता है और प्रेम से दुर्लभ कोई वस्तु नहीं है।
0: ये कहकर मंगला उठ खड़ी हुई। शीतला ने उसे रोका नहीं। सोचा,
1: इसे क्या खिलाऊंगी, आज तो चूल्हा जलने की भी कोई आशा नहीं।
0: मंगला के जाने के बाद शीतला बहुत देर तक बैठी सोचती रही,
1: मैं कैसी अभागिन हूं जिस प्रेम को ना पाकर ये बेचारी जीवन को त्याग रही है। उसी प्रेम को मैंने पांव से ठुकरा दिया। इसे जेवर की क्या कमी थी? क्या ये सारे जड़ाऊ जेवर इसे सुखी रख सके? इसने उन्हें पांव से ठुकरा दिया। उन्हीं आभूषणों के लिए मैंने अपना सर्वस्व खो दिया। हाँ, ना जाने वो कहाँ है, किस दशा में है।
0: अपनी लालसा को, तृष्णा को वो कितनी ही बार धिक्कार चुकी थी। मंगला की दशा देखकर आज उसे आभूषणों से घृणा हो गई।

मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण की दूसरी कड़ी आपने सुनी। इसमें भाग लेने वाले कलाकार हैं सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह, जी श्याम, शीतला, पूनम त्रिपाठी, सुरेश सिंह, जयंत पात्रकर, मंगला, ममता सिंह। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। आज आपने इस कहानी की दूसरी कड़ी सुनी। मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी आगे कहाँ पहुँचती है, जानने के लिए जरूर सुने कथा सुधा में तीसरी कड़ी अगले हफ्ते।

0: विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली
1: और हम बात करने वाले हैं धरती की धड़कन है महासागर, क्योंकि आज है विश्व महासागर दिवस। विश्व महासागर दिवस हर साल 8 जून को मनाया जाता है और महासागर वातावरण को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सूर्य की ऊष्मा को अपने भीतर समाहित कर तापमान को नियंत्रित करते हैं। यदि महासागर ना हो तो धरती पर कहीं अत्यधिक गर्मी और कहीं असहनीय ठंड हो जाती है। वर्षा चक्र भी महासागरों के कारण ही संभव है और समुद्र से उठती जल वाष्प बादलों का रूप लेकर खेतों, जंगलों और नदियों को जीवन देती है।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं आप। महासागर जैव विविधता का अनमोल खजाना है। लाखों तरह के जीव जंतु वनस्पतियां समुद्र में निवास करती हैं और छोटी मछलियों से लेकर विशाल वेल तक हर जीव समुद्री जीवन की अद्भुत दुनिया का हिस्सा है। करोड़ों लोगों की आजीविका भी महासागरों पर निर्भर होती है। कितने सारे लोग मछली पकड़ने जाते हैं, पूरी आजीविका उन पर टिकी होती है। आप तो यहीं मुंबई जहां विविध भारती का स्टूडियो स्थित है, यहां के तमाम बीच पर जाइए तो मछलियां सूखती रहती हैं, तो ये उनकी आजीविका का स्रोत है। और जरा उनके बारे में सोचिए कि जो मछुआरे कई कई दिन तक मछली पकड़ने के लिए अपनी छोटी सी नैया लेकर चले जाते हैं बहुत दूर तक, और कई बार तूफान आ जाता है तो उन तूफानों से लड़ते हैं। तो जब हम समंदर में सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं तो ये इन बातों का भी ख्याल रखें कि हम जब सागर हमें इतना कुछ दे रहा है तो हम भी सागर के लिए कुछ कर सकते हैं जो हमारे हाथ में, कि उसकी सुरक्षा साफ सफाई का ख्याल रख सकते हैं।
1: बिल्कुल। और मछली तो वहाँ पर मिलती ही मिलती है, मछली पालन भी किया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे बहुत ही बहुमूल्य रत्न भी समुद्र से महासागरों से पाए जाते हैं।
0: तेल मिलता है जिससे जो बहुत बड़ा स्रोत है हम सब,
1: बिल्कुल ईंधन का साधन है। और व्यापार, पर्यटन और परिवहन जैसे अनेक कार्य समुद्रों के कारण ही चलते हैं और इसका जो इतना

0: महत्व होने के बावजूद भी ममता जी आज महासागर संकट में है। प्लास्टिक प्रदूषण, तेल रिसाव, अत्यधिक मछली पकड़ना और जलवायु परिवर्तन समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। समुद्र का बढ़ता जलस्तर तटीय क्षेत्रों के लिए खतरा बनता जा रहा है। यदि हम समय रहते नहीं जाग गए तो इसका प्रभाव पूरी मानव सभ्यता पर नजर आएगा।
1: बिल्कुल, हमारी एक सखी हैं जिन्होंने लिखा है कि समंदर, नदियों और तालाब में गजब का आकर्षण छिपा है। ये सब प्रकृति के महत्वपूर्ण उपादान हैं। रात जब चंद्रमा बजाता है बांसुरी, समुद्र में ही नहीं नदियों, तालाब और जहाँ जहाँ पानी है वहाँ उठती है फेनिल हिलोरें और मन की आंतरिक सतह में एक मीठा झरना गुनगुनाने लगता है। क्या बात है, रात चांदनी की जब बात कही तो चांदनी रात में समंदर के किनारे बैठना, समंदर के किनारे सैर करना बहुत सुहाता है। हालांकि रात में समंदर का शोर डराता भी है मन को, लेकिन सुखद भी लगता है।
0: ऐसा लगता है कि वो जब उसके किनारे आप टहल रहे होंगे तो लगेगा लहरें आपको पीछे से घेर लेती हैं, ऐसा लगता है वो दृश्य।
1: इसी तरह की बात हमारी एक और सखी लिख रही है कि आसमानी रंग को अपने तन पर समेटे हुए सुंदरता को बिखेरता हुआ नजर आता है, जो मनमोहिनी का काम करता है। उसकी अपार सुंदरता बरबस ये आकर्षित करती है। दूध सी आती शुभ्र उर्मि जब पैरों से टकराती है तो ऐसा लगता है किसी ने पांव में पायल बांध दी और नूपुर बज उठते हैं। उससे निकलता संगीत मन को गहराई तक छू जाता है। क्या बात है भाई, आज तो हमारी
0: बड़ी अच्छी
1: सखियां
0: बातें लिखी हुई,
1: बड़ी ललित भाषा में ये बातें लिख रही हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, शुक्रिया अदा करते हैं
0: जी। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि महासागर धरती की धड़कन की तरह है जो पूरी पृथ्वी के जीवन को संतुलित बनाए रखते हैं। विशाल और गहरे महासागर न केवल प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाते हैं बल्कि जलवायु को नियंत्रित करने, वर्षा लाने और असंख्य जीवों को जीवन देने का कार्य भी करते हैं। समुद्र की लहरों की मधुर आवाज मन को शांति देती है और हमें प्रकृति की अपार शक्ति का एहसास कराती है। धरती पर जीवन का आधार माने जाने वाले महासागर मानव, पशु, पक्षियों और पर्यावरण के लिए अनमोल धरोहर हैं। इसलिए हमें महासागरों को स्वच्छ और सुरक्षित रखने का संकल्प लेना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उनकी महिमा के महत्व को समझ सके।
1: बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। और मंजरी जी, आपने समुद्र एक संदेश भी देता है, उस संदेश को कभी सुना है? जब हम बहुत ध्यान से समंदर की लहरों को उठती गिरती देखें तो एक संदेश होता है। हम सब ये महसूस करते हैं कि एक बार उठना और गिरना ये इंसान की भी फितरत होती है।
0: क्या बात,
1: तो जब बहुत ऊंचाई पर जाएं तो कभी भी गुरूर नहीं करना चाहिए। कुछ इसी तरह की बात हमारे एक श्रोता भी लिख रहे हैं, हमारे सखा हैं ये। इन्होंने लिखा है कि समुद्र की धड़कनों से उसकी अनंत गहराई मनुष्य को जीना सिखाती है। इतनी ऊंची लहरें मन को सुकून तो देती हैं, ये कहती हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा, सीमा से ज़्यादा ऊंचा उठना भी एक दिन वापस आना बताती है। बहुत सी चीज़ें हमें देती हैं, लेकिन हम सब जाएँ तो वहाँ स्वच्छता, साफ़ सफाई ज़रूर रखें। ये एक बात है कि ये कहा जाता है कि जब हम बहुत ऊंचाई तक ये उड़ते हैं लोग, मतलब ऊंचे ख्वाब देखते हैं और ये अपनी अपनी जड़ों को, ज़मीन को भूल जाते हैं, तब ये बात हम कहते हैं कि ज्यादा मत उड़ो, जब गिरोगे तो चोट ज्यादा लगेगी, है ना।
0: जब आप तो ये बात कह रही थी ममता जी, तो मेरी जो सोच थी वो चली गई थी आपके ऊपर कि आप जो साहित्य लिखती हैं, साहित्य की दृष्टि, आपकी जो कलम चलती है, तो उस नजरिए से आपने बहुत बड़ी बात कही थी इसमें कि लहरें ऊपर भी उठाती हैं और नीचे भी गिराती हैं।
1: शुक्रिया मंजरी जी, लेकिन ये जब हम किसी भी जगह जाते हैं
0: जी,
1: तो बजाय सिर्फ मौज मस्ती के गाना बजाना और खाना पीना करने के बजाय हम प्रकृति के उन नज़ारों को ध्यान से देखें, अपनी आंखों से देखें, उसे महसूस करें, आत्मसात करें, तो बहुत सारी बातें अपने आप समझ में आती हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वो हम ही से जुड़ी हुई हैं, हम उनसे जुड़े हुए हैं। इसी तरह हमारे एक साथी भी लिखते हैं कि महासागर प्रकृति की अनमोल देन है, वे केवल पानी का विशाल विस्तार नहीं बल्कि धरती पर जीवन को बनाए रखने वाली शक्ति है। उनकी अथाह गहराई में असंख्य जीवों का संसार बसता है और उनकी लहरें प्रकृति के निरंतर प्रवाह का संदेश देती है। महासागर हमारे मौसम को संतुलित रखते हैं, वर्षा में सहायक होते हैं, मानव जीवन के लिए अनेक संसाधन प्रदान करते हैं। इनकी स्वच्छता और सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। यदि महासागर स्वस्थ रहेंगे तो धरती भी स्वस्थ और जीवन से भरपूर रहेगी, और इनको स्वस्थ रखने में हम सभी को ही अपना योगदान देना चाहिए।
1: उफ, इतनी सारी टिप्पणियां हैं मंजरी जी, क्या कहें, लेकिन हम बहुत लंबी लंबी टिप्पणियां हैं तो शॉर्ट में पढ़ देते हैं दो टिप्पणी एक साथ। महासागर को एक सखा है हमारे लिख रहे हैं, महासागर को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है और दिल की धड़कन, जो इस ग्रह के मौसम, जलवायु और जीवन को नियंत्रित करते हैं। अगर वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो पृथ्वी के गर्भ में एक रहस्यमय धड़कन हर 26 सेकंड में सूक्ष्म कंपन का स्रोत अटलांटिक महासागर की लहरों को ही माना जाता है। महासागर एक विशाल कार्बन सिंक है जो हमारे वायुमंडल से करीब 25% कार्बन डाइऑक्साइड को अवशेषित कर लेता है। और एक हमारे श्रोता हैं, इन्होंने लिखा है कि विविध भारती के सभी को नमस्कार। और एक श्रोता ने लिखा है कि महासागर न केवल पृथ्वी की सतह के 70% से अधिक हिस्से को कवर करता है बल्कि ये हमारी जलवायु को नियंत्रित करता है, हमारे ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत है और ग्रह के जलचक्र को बनाए रखता है। महासागर हमारे पारिस्थितिकी तंत्र और जीवन के लिए आवश्यक है, ये एक जीवन रेखा है।
0: और एक हमारे साथी और लिखते हैं कि अक्सर ये बात कही या सुनी जाती है कि दिल सागर जैसा विशाल रखिए, सागर जो हमें अपार सहनशीलता या विशाल दृष्टिकोण और निस्वार्थ प्रेम सिखाता है। इस धरती की हर गंदगी अपने में समाकर खुद खारा यानी नमकीन बन जाता है, बदले में कड़ी धूप और गर्मी सहन करते हुए जल से बादल बनाकर बरसात द्वारा हमें मीठा पानी देता है, मतलब खुद जहर पीकर हमें अमृत देता है। जैसे मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसी का जीना है जो।
1: क्या बात है, अब देखते हैं कि आनंद बख्शी साहब ने इस गाने में समंदर के बारे में क्या लिखा है। लता मंगेशकर ने स्वर दिया है और सचिन देवबर्मन ने संगीत दिया। फिल्म बारूद।

0: बारूद फिल्म का ये गाना था और समंदर के लिए आनंद बख्शी साहब ने लिखा था और सचिन देव बर्मन ने संगीत तैयार किया था।
1: देखिए ना कुछ कहने वाले
0: अरे, आपने मुझे बोले ही नहीं थे, काट दिया।
1: देखो यही तो बात होती है ना कि क्या हम
0: तपाक से मतलब ये तपाक से बोलना हुआ लेकिन कई बार जरूरी बात रह जाती है ना तपाक से बोलने पर।
1: बिल्कुल सही बात है, और तपाक से इसीलिए कई बार जब ऐसा बोला ना कि तपाक से बोल दिया तो उसका अंजाम भी बहुत गलत हो जाता है।
0: नहीं, कई बार सही भी तो हो जाता है,
1: कई बार सही हो जाता है।
0: जैसे अभी हम तो तपाक से बोलने की बात पर हमें बतियाना था तो आपने तो सही किया, लेकिन आप घबरा गई।
1: हमें लगा कहीं तपाक से बोले तो कहीं वो गलत ना असर पड़ जाए। तो ऐसा कई बार हो भी जाता है कि हम ना चाहते हुए भी बोल जाते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ममता जी कि मतलब वो
0: अच्छी बात बोल देते हैं, कोई जानकारी होती है और वो तपाक से बोल देते हैं कि ये नहीं ये ऐसा था।
1: बिल्कुल। और कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बिना सोचे समझे, बस चार लोग खड़े हैं और वो लोग बात कर रहे हैं, मालूम पड़ा आपने बिना सोचे समझे कि उनकी बात का क्या है, मतलब है कहाँ हमें बोलना नहीं चाहिए कहाँ बोलना है, वो तपाक से बोल देते। फिर उसका असर जो तीन सुन रहे होते, चार के बीच में आपने चौथे आपने बोल दिया, जो तीन सुन रहे तो उनको बड़ा लगता है अरे ये क्या बात कर दी इसने, मतलब किसी का आप कटाक्ष भी कर देते हैं तपाक से बोलने वाले। कभी कभी ऐसे लोग होते हैं तो इसका नुकसान भी होता है, लोग गलत समझ सकते हैं। कभी कभी सीधी बात सामने वालों को कठोर या बहुत ही अपमानजनक लग सकती है, और कभी कभी रिश्तों में तनाव भी आ जाता है, और हर व्यक्ति जो है वो सच सुनने के लिए तैयार भी नहीं होता है ममता जी। और बिना सोच समझ कर कही गई बात रिश्तों में दूरी भी ला सकती है।
0: लेकिन हमारी एक सखी है, इन्होंने लिखा है कि मुझे तो तपाक से बोलने की आदत है और मुझे पता है कि अच्छी आदत नहीं है, लेकिन क्या करूं, जब कोई गलत करता है तो अपने को मैं रोक नहीं पाती, अपने बातों से चतुर बनने की कोशिश करता है कोई तो मुझसे बोले बिना रहा नहीं जाता है, मैं बोल देती हूं भाई कोई गलत बात कह रहा है तो आपको बोलना ही चाहिए तपाक से।
1: बिल्कुल।
0: तो सामने वाले की गलती भी उजागर हो जाती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमारी एक सखी है, इन्होंने लिखा है कि बड़ों ने कहा है, कुछ कहावत भी है कि कुछ भी बोलो तो पहले सोच समझ के फिर बोलो। तपाक से कुछ भी बोल जाने से हमारे मुंह से गलत निकल सकता है, किसी से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, किसी को दुख पहुंच सकता है, किसी का हम अपमान कर जाएंगे, सारी हानि हमें ही होगी, इसलिए बहुत सोच समझ के बोलो, तपाक से मत बोलो।
1: और हमारे साथी लिखते हैं कि तपाक से बोले शब्द तीर बन जाते हैं जो दिलों को पर वार करते हैं, जबकि सोच समझ कर बोले शब्द मोती होते हैं जो कभी चुपते नहीं बल्कि सजे हार बनकर रिश्तों को खूबसूरत बनाते हैं। और इसी तरह हमारे साथी और लिखते हैं कि अत्यधिक उत्तेजना व अहंकार में सामने वाले को तपाक से ऐसा कोई आप शब्द कटु शब्द ना बोले जिससे संबंधों रिश्तों में मतभेद कड़वाहट हो जाए। पहले तोले फिर बोले, नम्रता ममता भरे भाव मधुर बोले सभी जन से जिससे प्यार स्नेह बढ़ता है। इन्होंने बात लिख करके
0: और हमारी एक सखी है, इन्होंने कहा है कि कुछ कह देना अक्सर बातचीत में गलतफहमी, विवाद या सामने वाले को ठेस पहुंचाने का कारण बनता है, इसलिए इसे आमतौर पर एक अच्छी आदत नहीं मानी जाती। बिना सोचे बोले गए शब्दों में अक्सर सही संदर्भ की कमी होती है जिससे सामने वाला व्यक्ति आपकी बात का गलत अर्थ निकाल सकता है।
1: और हमारे एक साथी देखिए और भी लिखते हैं कि तपाक से बोलने की आदत हमारे व्यक्ति की विशेषता होती है, जहां लोग दिल की बात बिना लाग लपेट के कह देते हैं वहीं तपाक से बिना सोचे समझे बोली गई बात जिसमें उतावलापन रूखापन या दूसरों की बात काटने का उद्देश्य हो मित्रों आपसी रिश्तों और कार्यस्थल पर मुश्किलें भी पैदा कर सकती है, लेकिन शिष्टता संयम और सम्मान के साथ तपाक से बोली गई बात आपको सम्मान के साथ आपके प्रभावशाली व्यक्तित्व को दर्शाती है।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि जल्दबाजी अत्यधिक उत्साह या चिंता शामिल है तपाक से बोलने में, इसे एक बातूनी या वाचाल स्वभाव कहा जाता है, इस आदत को सुधारने और कम बोलने की आदत डालने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं। सुनने की आदत डालें, दूसरों की बात को ध्यान से सुने और बीच में न काटें। आज तो मंजरी जी ने हमें काटा बीच से, कहा कि तपाक से बोलने के लिए, तो भाई मैं मान गई, चुप हो गई और मैंने कहा कि हाँ क्या कहना चाहती हैं। तो कई बार पते की बात कहने के लिए भी काट दिया जाता है, तो अच्छी बात है कि अगर हम घड़ी की ओर देख रहे हैं कि हमें बहुत सारी बातें करनी है तो इसलिए एक दूसरे को काट कर अगर बोलते हैं तो वो अपनी जगह पर सही है।
1: बिल्कुल।
0: तो इनका कहना भी सही कि कुछ कहने से पहले 3-5 सेकंड का समय

0: पहले सोच लें और उसके बाद मन को शांत करके बोलें, और चिंता में और गुस्से में ना बोलें। और भी बहुत लंबी सी टिप्पणी इन्होंने लिखी है।
1: देखिए, एक बड़ा मजेदार सा संदेश मिला है मुझे। ममता जी लिखते हैं कि तपाक से बोलने की आदत कुछ मर्दों में होती है, लेकिन प्रायः महिलाओं में ये आदत होती है, अच्छी तरह एक ऑटोमेटिक मशीन जैसी होती है। इन्होंने लिखा है पड़ोसी की पति
0: काफी
1: से।
0: विश्लेषण किया है
1: हाँ, देखिए ना,
0: इन्होंने।
1: पड़ोसी की पति से लड़ती पड़ोसन के तपाक से बोलने की आदत को ताज्जुब करता हूँ। कभी कभी हमारी भी ऐसी करती हैं। अब नहीं तो कह कर सर मैं उन्हें तकलीफ क्यों
0: अच्छा, वैसे झगड़े के
1: पहुंचाऊं।
0: वक्त
1: जी
0: तो शब्द अपने आप फूटते हैं ना,
1: बिल्कुल,
0: फटाफट फटाफट
1: वो
0: तपाक
1: जो
0: से।
1: तपाक से
0: ऐसे
1: फूटते
0: नॉर्मल
1: हैं।
0: बातचीत में कई बार लोग सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन झगड़े के वक्त जो लोग बिल्कुल नहीं बोलते हैं, देखा है कि वो भी बहुत तेजी से और
1: तेजी से,
0: फास्ट बोलने लगते हैं।
1: सही
0: तो
1: बात
0: ये
1: है।
0: क्या वजह है? हमें लगता है कि
1: भरे
0: अंदर
1: बैठे
0: से
1: होते होंगे इसलिए बोल जाते
0: एक श्रोता ने लिखा है कि
1: होंगे
0: तपाक से बोलने या बिना सोचे समझे तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत अक्सर बातचीत में खटास डाल देती है।
1: तो।
0: और भी कुछ कहना चाहती हैं?
1: नहीं, अब गीत सुन लेते।
0: सुनते हैं।

0: आज नहीं तो कल कह लेंगे, लेकिन आप हम
1: हमें
0: कल
1: आज ही
0: पे
1: कहना पड़ेगा
0: तुरंत कहना पड़ेगा और तपाक से
1: जी।
0: तो तपाक से बताइए कौन सी रेसिपी तैयार की गई है आज।
1: बस हम तैयार करने वाले हैं मथुरा की आलू की खस्ता कचौड़ी, जिसे आलू की सब्जी के साथ भी खाते हैं और चटनी के साथ भी
0: तो
1: खाते
0: ये
1: हैं।
0: रेसिपी सिर्फ बता रहे हैं, बनाया भी है कभी, बनाती भी है?
1: नहीं वैसे तो देखिए आलू की कचौड़ी और दाल की कचौड़ी तो सब घर में बनती है, लेकिन अब देखते हैं कि यहाँ की इसमें क्या खास बात है।
0: अरे आपने समझा ही नहीं, बनाने से मतलब है कि
1: अभी तो
0: बना
1: नहीं
0: के खिलाया जाता है ना
1: अभी तो नहीं
0: सिर्फ बनाया नहीं जाता है
1: जी, वो तो मैं जानती हूँ आपके इशारे, आपकी आंखों की जो चमक थी वो मैं समझ गई थी।
0: तो कौन सा व्यंजन आप बना
1: हम
0: रही
1: आलू
0: हैं?
1: की खस्ता कचौड़ी बताते हैं।
0: बताइए।
1: इसकी सामग्री है 2 कप मैदा, 4 बड़े चम्मच तेल या घी मोयन के लिए लेना है, आधा छोटा चम्मच नमक, गुनगुना पानी, आलू की ब्रावन के लिए आपको लेना है 2 या 4 उबले आलू लीजिए और हरी मिर्च बारीक कटी हुई 2, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच धनिया दरदरा लीजिए, साबुत धनिया लीजिएगा उसको दरदरा कर लीजिए और आधा छोटा चम्मच

0: लिए तेल भी आपको अलग से रखना है। और इसको बनाना है कि सबसे पहले मैदे में नमक मोयन डालकर अच्छी तरह इसको मिला लीजिए, और जब आपके हाथ से दबने लगे तो समझ लीजिए कि मोयन आपका रेडी सही लगा इसमें। और पानी डालकर थोड़ा सा इसको गूंथ लीजिए नरम नरम, और करीब 20 मिनट के लिए आप रखिए। अब आप एक कढ़ाई में तेल गर्म करिए, उसमें हींग सौंफ धनिया डालिए, हरी मिर्च डालिए, और उबले आलू हाथ से तोड़ कर डालें, सारे मसाले नमक डाल करके आप मिला लें अच्छे से। हरी धनिया भी आप इसमें डाल दीजिए, और मिश्रण सूखा और मसालेदार जब हो जाएगा तब आप उसको किनारे रख लें। अब कचौड़ी की जो लोई आटा साना है उससे लोइयाँ बनाइए, उसमें आलू का भरावन भरिए, और इसको आप हल्के से हाथ से दबाकर बेल लें, या फिर आप हाथ हथेली से दबाएं या बेलन से बेलें, और इसको आप सुनहरा सुनहरा धीमी आँच पर आप इसको तल लें, तो ये आपकी आलू की खस्ता कचौड़ियाँ तैयार हो जाएगी।
1: तो जब भी बनाना हो तो बना सकते हैं, और मंजरी जी बना के लाएंगी तो हमें ज़रूर खिलाएंगी, हम ये
0: जी
1: उम्मीद करते हैं। और अब तो हमने माइक्रोफोन पर कह दिया है ये बात
0: बिल्कुल, ये टाली भी नहीं जाएगी।
1: अब दाल की खस्ता कचौड़ी कैसे बनाएं ये भी आप ज़रा सुन लीजिए हमारे सारे श्रोताओं के साथ। दाल की खस्ता कचौड़ी के लिए भरावन के लिए पहले तो सामग्री बता दें। आधा कप धुली उड़द की दाल 4-5 घंटे भिगोई हो जो, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच धनिया दरदरा कुटा हुआ, और 1/4 छोटा चम्मच हींग, या हींग तो चुटकी भर अंदाजे से डाल सकते हैं, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला छोटे चम्मच से मतलब चुटकी भर, और 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, 2 बड़े चम्मच तेल का प्रयोग कर सकते हैं। अब भरावन कैसे बनाएं, भीगी उड़द की दाल का पानी निकाल कर दरदरा पीस लें, कढ़ाही में तेल गरम करें, हींग सौंफ और धनिया इसमें डालें। अब दाल मध्यम आँच पर भून लें, सारे मसाले नमक डालें, मिश्रण सूखा और खुशबूदार होने तक पकाएं, ठंडा होने दें। अब कचौड़ी बेलें, आटे की छोटी लोई बनाकर बीच में दाल की भरावन भरें और धीमी आंच पर तेल में तलें। इसको आलू की पतली सब्जी और चटनी के साथ खाएं, चाय के साथ भी खा सकते हैं
0: जी।
1: और अब ये गाना सुनें।

0: कहीं दिन कहीं रात फिल्म का गाना था, महेंद्र कपूर की आवाज़ थी। और अब घड़ी की ओर ज़रा देखिए, बिल्कुल भी वक्त नहीं कि कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं। तो लेते हैं सभी श्रोताओं से इजाज़त, आप सभी को ममता सिंह
1: और मंजरी वर्मा का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनु

बेचारा। पिटारा में आज सेहत।

0: नमस्कार दोस्तों, सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के कार्यक्रम में दोस्तों, हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मुंबई के सुप्रसिद्ध मधुमेह रोग विशेषज्ञ और फिजिशियन डॉक्टर कुणाल मेहता से। इनसे हम बातचीत करेंगे जिसका विषय रहेगा मधुमेह, कारण और बचाव। डॉक्टर कुणाल मेहता जी, विविध भारती के स्टूडियो में सेहतनामा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार श्रोताओं, मुझे आज बेहद खुशी हो रही है कि मैं विविध भारती के इस माध्यम द्वारा आपसे बात करने का ये मुझे सुंदर मौका मिला है। हमारी जनरेशन वो जनरेशन है जो विविध भारती सुन के ही बड़ी हुई है। मैं महाराष्ट्र के एक छोटे गांव से बिलोंग करता हूं, जो विविध भारती सुनते ही बड़ा हुआ हूं, और अभी मुंबई में पिछले 10 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ।
0: डॉक्टर साहब, ये तो आपने परिचय दे दिया कि विविध भारती सुनते सुनते हमारी जनरेशन भी बड़ी हुई है। और देखिए, इसमें एक संयोग की बात यह है कि उसी चैनल पर जब आपको बातचीत का मौका मिलता है सुनने वालों से, तो अच्छा भी लगता है।
1: जी, बहुत खुशी हो रही है, और ये मेरे लिए एक मीडियम है जहाँ से मैं इंडिया की पूरी जनता से जुड़ सकता हूँ और उनको मेरे विचार पहुँचा सकता हूँ, और थोड़ा मैं उनको गाइड कर सकता हूँ आज के विषय के बारे में।
0: जी, आज का विषय हमने सुनने वालों को बता दिया है, मधुमेह, कारण और बचाव। तो डॉक्टर साहब, शुरुआत ऐसे करते हैं कि मधुमेह कई बार डरावना शब्द होता जा रहा है आज के दौर में, खास तौर से आपके पास भी जो मरीज आते होंगे उसमें उम्र की कोई सीमा नहीं होती। पहले होता था कि एक बड़े होने के बाद, आयु वर्ग निकलने के बाद मधुमेह एक रोग होता था, आजकल ये कॉमन सी बात हो गई है। और भारत में तो इसका प्रभाव सबलता से बढ़ता जा रहा है। तो हम जानेंगे कि मधुमेह के प्रकार किस तरह से हैं और आप विस्तार से क्या कहना चाहेंगे।
1: जी, मधुमेह जो बीमारी है सबको पता है, डायबिटीज़ मेलाइटस जिसको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं, ये आजकल बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई है। और कहने में दुख होता है कि इंडिया डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनते जा रहा है, और यह बन गया है। मधुमेह के मुख्य दो प्रकार होते हैं, एक होता है टाइप 1 डायबिटीज़ जिसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं, और दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस जो कि एडल्ट्स में होता है, जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं। तो टाइप 1 जो डायबिटीज होता है उसमें ये इंसुलिन की टोटल कमी होती है, पैंक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर पाते, इसके लिए ये जो मरीज होते हैं ये पूरी तरह डायबिट इंसुलिन पे डिपेंडेंट होते हैं, और इनमें जो है टैबलेट्स हम नहीं दे सकते, इनका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन के इंजेक्शन से किया जा सकता है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है, जो कॉमनली पहले एडल्ट्स में होता था लेकिन आजकल काफ़ी यंग लोगों में पाया जा रहा है, इसमें बहुत सारी

0: चीजें हैं, जैसे इंसुलिन की कमी तो है ही, लेकिन साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ओबेसिटी है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ता है, ये सब फैक्टर्स के कारण इंसुलिन जो है शरीर में उसका प्रभाव कम हो जाता है, उसका असर कम हो जाता है, जिसके कारण शुगर बढ़ने लगता है। और एक प्रकार डायबिटीज होता है जो कि हम बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस, जो कि प्रेग्नेंट महिलाओं में पाया जाता है। महिलाएं प्रेगनेंसी के पहले उनका शुगर नॉर्मल रहता है, लेकिन प्रेगनेंसी में कभी कभी हार्मोनल चेंजेस के कारण उनमें डायबिटीज शुगर बढ़ जाती है, डायबिटीज पाया जाता है, जो कि डिलीवरी के बाद 50-60% महिलाओं में उनका शुगर बिना ट्रीटमेंट के नॉर्मल हो जाता है। कुछ महिलाओं में ये शुगर आगे कंटिन्यू रहता है, तो उनको डायबिटीज का ट्रीटमेंट लेना पड़ता है।
1: देखिए, ये क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण करके आपने समझा तो दिया कि टाइप 1, टाइप 2 और अदर प्रकार के जो मधुमेह रोग होते हैं वह किस प्रकार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ये एक भ्रम सा पैदा हो गया, हम जी कभी देखते हैं कि बहुत ही मोटा व्यक्ति यदि हमारे समक्ष है तो हम एक एंटीसिपेशन कल्पना कर लेते हैं इसको डायबिटीज होगा या होने वाला है, ऐसा क्यों होता है?
0: सी, डायबिटीज मोटापे से बहुत रिलेटेड है, जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम हम बोलते हैं, जिसमें है ओबेसिटी, डिसलिपिडिमिया और हाइपरटेंशन, मतलब हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और मोटापा। मोटापे के कारण शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल ही मतलब चर्बी की मात्रा बढ़ जाती है, ये सब के कारण इंसुलिन का सिक्रीशन जो है उस पर असर होता है, और जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है मतलब जो इंसुलिन का एक्शन है वो कम हो जाता है, जिसके कारण कि शुगर कंट्रोल में तकलीफ होती है और शुगर बढ़ जाता है।
1: अगर डॉक्टर साहब ये पूछा जाए कि जो आपके यहाँ मरीज आते हैं और सबसे पहली नज़रिए वाली बात होती है, तो आप कैसे पहचान जाते हैं कि मधुमेह का टाइप 1 का रोगी बन चुका है?
0: टाइप 1 के जो रोगी होते हैं वो नॉर्मली छोटे बच्चे रहते हैं, जिसको हम जुवेनाइल डायबिटीज़ भी पहले कहते थे। ये जैसे कि मैंने कहा, इसमें इंसुलिन की पूरी डेफिशिएंसी होती है, इसलिए ये बच्चे इंसुलिन डिपेंडेंट रहते हैं। मधुमेह के लक्षण वही है, वज़न कम होना, भूख ज़्यादा लगना, प्यास ज़्यादा लगना, रात में पेशाब जाना पड़ता है काफ़ी बार, 4-5 बार, इन्फेक्शन होना या घाव नहीं भरना, ये सारे लक्षण हैं। और जब सीवियर हो जाते हैं, शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो शरीर में केमिकल उथल पुथल होती है, जिसके कारण कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, डिहाइड्रेशन होता है, पेशेंट को वॉमिटिंग हो सकती है और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। और जब हम शुगर चेक करते हैं तो पता चलता है शुगर 500 एंड अबव है,
1: ओहो,
0: इतना ज़्यादा शुगर होता है।
1: वैसे नॉर्मल जो यूनिट वैल्यू है वो क्या है शुगर की?
0: नॉर्मल शुगर हम बोलते हैं फास्टिंग जो है वो 100-110 के अंदर होती है, और जो पोस्ट लंच मतलब दोपहर के खाने के 2 घंटे बाद की शुगर होती है वो 130 के अंदर होनी चाहिए।
1: अच्छा,
0: जो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन है, जिन्होंने गाइडलाइन सेट की है, वो बोलते हैं कि सुबह खाली पेट 12 घंटे फास्टिंग करने के बाद का जो शुगर होता है वो 126 या उससे ज़्यादा हो तो उसे हम डायबिटीज लेबल कर देंगे।
1: अच्छा, यहाँ पर एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारे जो हमारे लोग होते हैं उनको पता नहीं होता है वो, कि ये जो बात होती है कि भाई अचानक कोई आदमी महसूस करता है कि मुझे शुगर जैसा लग रहा है या बहुत भूख लगती है फिर भी वज़न कम होता जा रहा है, तो अगर मान लीजिए कि उसे शुगर नहीं है लेकिन जांच के पहले या कुछ घंटों के पहले उसने मीठा कुछ ज़्यादा खा लिया है, तो क्या जांच प्रभावित हो जाती है?
0: नॉर्मली अगर जांच के पहले कुछ मीठा खा गया है तो उसमें थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है, बट जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स है या जो प्री डायबिटिक्स नहीं है उनमें इसका असर नहीं होगा, बॉडी की क्षमता ऐसी है कि वो उसको हजम कर लेगी।
1: अच्छा,
0: तो इसलिए प्रभाव नहीं पड़ेगा। बट याद रखिए, जब भी हम शुगर टेस्टिंग बोलते हैं फास्टिंग में, तो आपको 12 घंटा फास्टिंग रखना बहुत ज़रूरी है।
1: जी हाँ भाई, देखिए चर्चा हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर चल रही है, थोड़ा सा विराम हमें देना होगा और एक संगीतमय वातावरण को गुंजायमान करना होगा। हम चाहेंगे अपनी पसंद का कोई एक गाना बताइए आप
0: श्रोताओं को। मैं ये मेरे दिल का बहुत ही करीबी गाना है, ये मैं डेडिकेट करना चाहूँगा मेरी प्रिय वाइफ डॉक्टर प्रीति मेहता, जो कि एक रूमेटोलॉजिस्ट है और हमेशा मेरे साथ रही है मेरे इस जर्नी में, क्योंकि मैं फैमिली को बहुत कम समय दे पाता हूँ मेरी प्रैक्टिस के कारण, एमरजेंसीज के कारण, बट शी इज़ ऑलवेज देयर। सो गाने का नाम है तू मिले दिल खिले, फ्रॉम द मूवी क्रिमिनल।
1: हम सुनवा रहे हैं क्रिमिनल फिल्म का बहुत ही रोमांटिक गाना है।

0: तू मिले दिल खिले। देखिए बहुत ही उम्दा गाना सुनवाया आपने। और अब जब मरीज आपसे मिलते हैं, टाइप 1 के भी मिलते हैं, टाइप 2 के भी मिलते हैं, तो ये डिफरेंट या ये भिन्नता या विविधता या ये अंतर कैसे आप परीक्षण से करते हैं टाइप 2 मरीज है ये?
1: जैसे कि मैंने पहले बताया, टाइप 1 कॉमनली बच्चों में होता है, तो जल्दी जुवेनाइल डायबिटीज़ होता है, यंग बच्चों में होता है, और इसके सिम्टम्स जो डायबिटीज़ के हैं वही है, लेकिन ये बहुत बार इनको इमरजेंसी में लाया जाता है और हम चेक करते हैं तो शुगर ज़्यादा होती है, या फिर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो, या इनकी जो मदर है उनको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ रहा हो, तब हम सस्पेक्ट करते हैं कि बच्चे को डायबिटीज़ हो सकता है, या बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है, बच्चा बहुत खा रहा है फिर भी वज़न नहीं बढ़ रहा है, रात में बार बार पेशाब उठ रहा है, या पेशाब में इंफेक्शन हो रहा है यंग बच्चों को, तो डायबिटीज हम सस्पेक्ट करते हैं।
0: तो ये परीक्षण तो कुछ ब्लड से ही होता है?
1: ये ब्लड से ही होता है, जिसमें कि हम फास्टिंग और पोस्ट लंच शुगर करते हैं। एक और डायबिटीज़ के लिए टेस्ट होती है, जिसको हम HbA1c बोलते हैं। ये टेस्ट 3 मंथ्स एवरेज होता है डायबिटीज़ का, जो कि नॉर्मल इंडिविजुअल में 6 या 6.5 से कम होती है इसकी मात्रा। अगर इससे ज़्यादा हो तो डेफिनेटली ये डायबिटीज़ का इंडिकेटर है, और अगर ये ज़्यादा है इसका मतलब पेशेंट को डायबिटीज़ है।
0: अच्छा, सपोज पहली जो परीक्षण वाली बात होती है, टेस्ट होती है, वो ब्लड टेस्ट जाहिर कर रही है कि ये डायबिटीज़ का मरीज है, तो अल्टरनेट इमीडिएट ट्रायल ले लेते हैं आपकी, एक बार और टेस्ट करवा लेते हैं।
1: अगर पेशेंट का क्लिनिकल कंडीशन, पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं और ब्लड रिपोर्ट्स, हम पूरा पिक्चर देखते हैं ना कि सिर्फ रिपोर्ट, तो पेशेंट के अगर सिम्टम्स मैच हो रहे हैं, फैमिली हिस्ट्री है और रिपोर्ट्स भी मैच हो रही है, तो हम सीधा ट्रीटमेंट पे आते
0: तो कभी
1: हैं।
0: कोई ऐसा मौका आपको किसी मरीज के साथ मिला कि आपने अल्टरनेट ट्रायल लिए हो और बाद में पता चला हो कि डायबिटीज़ नहीं था?
1: जी हाँ, जब हमें क्लिनिकली मैच नहीं होता है तो, या हमें क्लिनिकली डाउट होता है कि ये रिपोर्ट पेशेंट के सिम्टम से मैच नहीं कर रही, तो जैसे कि मैंने कहा HbA1c टेस्ट होता है, जो 3 महीने का, पिछले 3 महीने का एवरेज शुगर हमें बताता है, तो अगर ये 3 महीने का शुगर है वो खाने पीने से अल्टर नहीं होगा, क्योंकि ये पास 3 महीने के शुगर लेवल का रिकॉर्ड है, तो अगर ये HbA1c ज़्यादा है तो डेफिनेटली ये डायबिटीज़ का संकेत है। इसके अलावा 2-3 और टेस्ट होते हैं, जो कि एक सीरम इंसुलिन लेवल होता है, जो इंसुलिन की मात्रा होती है ब्लड में, उसे हम टेस्ट करते हैं, अगर वो लेवल लो है तो भी हमें डायबिटीज़ का इंडिकेटर मिलता है, और एक सी पेप्टाइड लेवल होता है, जो भी हम टेस्ट करते हैं ऐसे स्पेशल कंडीशंस पे, जब हमें डाउट होता है कि पेशेंट को डायबिटीज़ है कि नहीं।
0: डॉक्टर साहब, ये तो आपने परीक्षण की बात बता दी और कंफर्म कर दिया कि डायबिटीज़ का मरीज़ ये रोगी है और उसका इलाज आवश्यक है। तो वो इलाज के लिए मान लीजिए इमीडिएट आपकी रिपोर्ट बताती है कि हाईएस्ट शुगर है, तो आप उसको एडमिट करने की सलाह देते हैं या घर पर ही इलाज चलता है?
1: एडमिशन का जो क्राइटेरिया होता है वो बहुत ही सिलेक्टिव है, अगर शुगर ज़्यादा है तो इसको इमीडिएट एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर डायबिटीज़ के कारण कुछ कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि मैंने बोला डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, जिसमें कि सांस फूलता है, बॉडी में केमिकल उथल पुथल होके एसिड का लेवल बढ़ जाता है, देर इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये कंडीशन में एडमिशन मैंडेटरी है, बट अगर सिर्फ शुगर ज़्यादा है, पेशेंट कंफर्टेबल है, पेशेंट का BP बाकी वाइटल स्टेबल है, तो हम इस को OPD बेसिस पे मैनेज कर सकते हैं।
0: क्या एक सामान्य आदमी जिसको डायबिटीज़ नहीं है, मधुमेह बिल्कुल नहीं है, लेकिन अचानक किसी कारण से कुछ खाद्य पदार्थों की वजह से अगर शुगर लेवल क्षणिक रूप से, आंशिक रूप से, त्वरित रूप से उसका बढ़ गया है और उसने टेस्ट करवा लिया है, तो वो तो माना नहीं जाएगा कि वो डायबिटीज़ का रोगी है क्योंकि लक्षण उसमें नहीं है, ये आप देखते हैं,
1: सही
0: पूरा
1: बात,
0: हिस्ट्री मालूम पड़ रहा है।
1: यस।
0: कई मरीज ऐसे भी आते होंगे कि वो शक पैदा कर लेते हैं कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है।
1: जो मरीज़ मेरे पास रिपोर्ट लेके आते हैं उनमें, जैसे कि मैंने कहा, पूरा डिटेल क्लिनिकल हिस्ट्री लेते हैं हम पहले, कि पेशेंट के सिम्टम्स मैच हो रहे हैं क्या, पेशेंट्स को तकलीफ़ें क्या हैं, फैमिली हिस्ट्री लेते हैं हम, लाइफस्टाइल डाइट का हिस्ट्री लेते हैं, साथ ही अल्कोहल स्मोकिंग कुछ आद्य उनको एडिक्शंस है इसकी हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद हम रिपोर्ट क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके रिपोर्ट पे आते हैं। तो जब हम पूरा पेशेंट एज अ होल देखते हैं, और मुझे यदि डाउट होता है कि नहीं ये रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है, या पेशेंट ने कुछ खाने पीने में परहेज नहीं किया,

0: है और तुरंत शुगर चेक किया है, इसके लिए शुगर ज़्यादा है, तो हम पेशेंट से वापस एक बार रिपोर्ट चेक करने बोलते हैं और जो HbA1c है वो टेस्ट करने को बोलते हैं। उससे हमें आइडिया होता है कि पेशेंट को डायबिटीज़ है कि नहीं।
1: ये बहुत ही अच्छा परीक्षण आप करते हैं ताकि भ्रम भी दूर हो जाता है और खामखा एक जो टेंशन हो जाता है
0: राइट, पेशेंट्स
1: वो
0: को
1: दूर हो
0: बहुत
1: जाता
0: टेंशन
1: है।
0: होती है।
1: अब देखिए यहाँ पे स्थिति ऐसी बन रही है कि हमारी जो बातचीत है वो तनावपूर्ण ना हो जाए, उसको हल्का फुल्का करना होगा और एक गाने का सिलसिला शुरू करना होगा।
0: ये गाना जो है दिल चाहता है मूवी से है, इसका टाइटल सॉन्ग है। ये मेरे दोस्तों को डेडिकेट करना चाहूँगा जो मेरे MD के बैचमेट्स हैं। मेमोरेबल टाइम हमने बिताया है, आज भी हम मिलते हैं, ये गाना मैं उनको डेडिकेट करना चाहूँगा।
1: सुनते हैं।

0: बहुत चाहता है कि गाना लगातार चलता रहे, सुनते रहें, लेकिन गाने की भी एक अवधि है, हमारे कार्यक्रम की भी एक पाबंदी है। अब अगला सवाल जो आज का, दोस्तों हम बता दें कि आज की चर्चा का विषय ये है मधुमेह, कारण और बचाव। डॉक्टर साहब, मधुमेह की जो प्रकार वाली बात आपने बताई, परीक्षण वाली बात बताई, अब हम जानेंगे कि बच्चों में जो मधुमेह हो जाता है तो वो कितने उम्र के छोटे बच्चों से शुरुआत होती है और कहाँ तक इसकी सीमा होती है, और ये विस्तार से हम जानना चाहेंगे।
1: देखो, बच्चों में जो डायबिटीज़ होता है, कॉमनली हमने जैसे बोला कि ये टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है, जिसको हम जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है। इसकी कोई उम्र नहीं है, 3 साल में भी हो सकता है, 6 साल में भी हो सकता है, 10 साल में भी हो सकता है। तो जैसे कि मैंने बोला, इसके लक्षण हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए, और अगर इन में से कुछ भी सिम्टम्स दिखे तो तुरंत अपने डॉक्टर को या पीडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए। फिर वो आगे जांच करके बता सकते हैं कि मरीज को डायबिटीज़ है कि नहीं, और उसकी सही ट्रीटमेंट दे सकते हैं। पर यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ में हमारे पास बहुत सारी टैबलेट्स हैं, दवाइयाँ हैं, अनफॉर्चुनेटली टाइप 1 डायबिटीज़ में हमें सिर्फ इंसुलिन के इंजेक्शंस देने पड़ते हैं। बहुत ही दुख होता है कि छोटे बच्चों को हमें सुई का प्रिक डेली लगाना पड़ता है, बट अनफॉर्चुनेटली आज तक, अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है जिससे हम टैबलेट या गोली से इसको ठीक कर सके। तो
0: हाँ,
1: इसमें जो है इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं, दिन में 2 बार या 3 बार, डिपेंडिंग कि पेशेंट की इंसुलिन वैल्यू क्या है। साथ ही खाने के परहेज करना पड़ता है, और सेहत का ध्यान रखते हुए, क्योंकि बच्चा है, बढ़ती उम्र है, तो उसका सेहत भी हमें निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो ग्रोथ हैम्पर होगी, मेमोरी हैम्पर होगी।
0: डॉक्टर साहब आपने बताया कि मेमोरी पे भी फर्क पड़ सकता है, और आपने 3 साल की जो बच्चों का उदाहरण दिया है, एक पढ़ाई की हल्की सी शुरुआत हो जाती है वहाँ पर आज के दौर में, पहले तो देर से पढ़ते थे बच्चे, तो क्या उसकी ग्रोथ रेट में कुछ ऐसा फर्क पड़ता है कि जैसे जैसे इसका विकास हो रहा है तो डायबिटीज़ की वजह से उसमें कहीं कुछ कमी आती है?
1: देखो, डायबिटीज़ की वजह से शरीर में बहुत सारे प्रभाव पड़ सकते हैं, ग्रोथ हैम्पर होती है। जनरली ये बच्चे थिन बिल्ड होते हैं, इनका वज़न बराबर नहीं बढ़ता है, क्योंकि ये इंसुलिन डिपेंडेंट रहते हैं, इनको रेगुलर इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, और इन्फेक्शंस ये बच्चे बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं अगर इनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं हो। डायबिटीज़ इट्सेल्फ कैन कॉज लो इम्यूनिटी, और अगर पोषण और सही न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दिया जाए, क्योंकि डायबिटीज़ में खाने में काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शंस आती है, मीठा नहीं खाना है, आलू नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है, जूस नहीं पीना है, फ्रूट्स में भी रेस्ट्रिक्शंस है, मिठाई नहीं खानी है, तो इनकी जो ग्रोथ पे है, अगर हम न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दें तो उसके कारण यस, डेफिनेटली ग्रोथ हैम्पर हो सकती है, जिसके कारण मेमोरी पे भी असर पड़ सकता है।
0: ये बात तो आपने बड़ी गंभीरता से इसको महसूस आया है, कई आपके पास भी ऐसे बच्चे आते होंगे और आपने इलाज किया होगा, जाहिर है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि 3 से लेके जब शुरुआत होती है तो क्या इसकी जो नींव है या फाउंडेशन गर्भावस्था में ही कुछ ऐसा हो जाता है कि वो बच्चे में डायबिटीज़ आ जाता है?
1: ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को एट बर्थ डायबिटीज़ हो, जैसे कि मैंने कहा बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जेनेटिक, एनवायरमेंटल, बट यदि उनके पेरेंट्स या फैमिली में डायबिटीज़ का हिस्ट्री है तो काफ़ी चांस है कि बच्चे में डायबिटीज़ आ सकता है, बट ज़रूरी नहीं है 100% बच्चे को डायबिटीज़ होगा। तो जब भी बच्चे को लक्षण आए तभी चेक किया जाए, या ऑब्वियसली अगर दोनों पेरेंट्स को डायबिटीज़ है तो बच्चे का टेस्टिंग करना चाहिए।
0: अच्छा, परीक्षण के बाद यदि पता चलता है कि बच्चे को टाइप 1 नहीं है और कुछ ऐसे डायबिटीज़ के लक्षण हैं जो सामान्य होते हैं शुरुआत, तो क्या गोलियों से काम नहीं चल सकता है?
1: टाइप 1 डायबिटीज़ में हम गोलियां नहीं दे सकते। अगर उसके लिए मैंने जैसे बोला, हम लोग टेस्टिंग करेंगे, इंसुलिन लेवल्स देखेंगे, सी पेप्टाइड लेवल्स देखेंगे, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे बच्चे को डायबिटीज़ है कि नहीं। बट अगर बच्चा है, उसको टाइप 1 डायबिटीज़ है, तो ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन के इंजेक्शन है, हम कोई दवा टैबलेट बच्चों में नहीं दे सकते। एडल्ट्स में जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, उसमें इंसुलिन इज़ द लास्ट ऑप्शन। बहुत बेहतरीन दवाइयाँ मार्केट में हैं, एलोपैथी ऑब्वियसली, बट जिससे हम डायबिटीज़ को कंट्रोल में रख सकते हैं और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है।
0: डॉक्टर साहब ये बताइए कि अगर बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज़ है और इंसुलिन एक आवश्यक स्रोत बन जाता है कि ये लेना ही है उसको, तो ये तो फिर जीवन भर के लिए उसके साथ रहेगा।
1: जी, सही बात है। इसी बात का हमें दुख होता है कि इंसुलिन जो है लाइफ लॉन्ग बच्चों को लेना पड़ेगा।

0: होते हैं तभी भी उनको इंसुलिन ही लेना पड़ेगा, बिकॉज उनके शरीर में इंसुलिन की एब्सोल्यूट डिफिशियंसी है एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन. दैट्स व्हाई इसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस भी कहते हैं.
1: लेकिन युवा अवस्था तक अगर वो बच्चा आता है, शादी ब्याह की बात होती है, मेल हो या फीमेल हो, तो उसमें कुछ डिसफंक्शन की बात रहती है, कुछ कमी सी लगती है, दौर्बल्यता आती है।
0: डायबिटीज़ में सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है, बट अगर आप डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखें, सही न्यूट्रिशन रखें, तो आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं. आपकी फर्टिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा.
1: अच्छा, ऐसे कोई मरीज आपके पास आते हैं जिसकी आयु 15 से 20 साल हो, युवावस्था कही जा सकती, किशोरावस्था, टीनेजर, उनको डायबिटीज हुआ हो अपनी लाइफस्टाइल बिगड़ने के कारण, तो क्या वो, और मान लीजिए फैमिली हिस्ट्री में किसी को नहीं है, तो वो क्योरेबल है?
0: डायबिटीज़ जो है इसका कोई क्योर नहीं है अनफॉर्चुनेटली. हाँ, प्री डायबिटिक कंडीशन होती है जिसको हम प्री डायबिटीज़ बोलते हैं, मतलब उनका शुगर जस्ट नॉर्मल रेंज के बाहर है, या ये वो पेशेंट्स हैं जिसको हम अगर सही लाइफस्टाइल दे, उनका डाइट कंट्रोल

0: हो, ये सब खेलते हुए हम बड़े हुए। लेकिन आज के अगर हम यंग जनरेशन देखें तो वो कंटिन्यूअसली मोबाइल में घुसे रहते हैं, या फिर प्ले स्टेशंस है, टीवी है, इंटरनेट है, तो इसके कारण उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। आउटडोर जो गेम्स रहते हैं आजकल बहुत कम खेलते हैं, जिसके कारण ओबेसिटी इज ऑन द राइज। बहुत सारे यंग बच्चे हैं जो ओबेसिटी के शिकार है, जिनमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, वजन, मोटापा जिसे हम बोलते हैं, वो बहुत बढ़ रहा है, और ये सब का असर डायबिटीज़ की तरफ उनको ले जा रहा है। उनको युवा अवस्था में 20, 25, 30 साल में डायबिटीज़ हो रहा है। इसके कारण डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस भी आगे बढ़ के उनको होने वाली हैं।
1: ये बहुत एक चेतावनी भरी बात आपने कही है, कॉम्प्लिकेशंस। इस बिंदु को लेकर हम प्रश्न आपसे पूछेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपकी पसंद का एक गाना सुनना चाहेंगे यहाँ पर।
0: ये जो गाना है ये दिल के बहुत करीब है, और ये मैं डेडिकेट करना चाहूँगा मेरे पेरेंट्स को। तो तारे ज़मीं पर का ये बहुत ही उम्दा सॉन्ग है माँ, ये मैं मेरी माँ को डेडिकेट करना चाहूँगा।
1: बहुत ही इसमें डिफाइन करने वाली बात नहीं है, सिर्फ एहसास मात्र है। आइए सुनते हैं तारे ज़मीन पर फिल्म का ये गाना।

0: गाना तो आपने बहुत ही इमोशनल सुनवा दिया। ये देखिए, ममत्व से बढ़कर कोई एहसास नहीं और कोई इमोशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब किसी को मधुमेह हो जाता है, वो आपके पास आता है, तो एक तारतम्य आपका जुड़ जाता है, एक सिंपैथी सी हो जाती है कि इतनी कम उम्र में बच्चों को हो गया। लेकिन जब बड़ों को डायबिटीज़ हो जाता है या वो उसके शिकार हो जाते हैं, तो ऐसे मरीजों के बारे में क्या कारण आप समझते हैं कि हो जाता है?
1: कारण मल्टीफैक्टोरियल है, बहुत सारे कारण हैं। एक है जेनेटिक, जो फैमिली से आता है। आपकी फैमिली में अगर हिस्ट्री है तो आप डायबिटीज़ के लिए प्रोन है। ज़रूरी नहीं कि फैमिली में हिस्ट्री है तो आपको डायबिटीज़ होगा, बट यस, आप नॉर्मल आदमी जिसके पेरेंट्स को डायबिटीज़ नहीं है या जिसके जीन्स में डायबिटीज़ नहीं है, उससे आप रिस्क पे है, उससे ज़्यादा रिस्क आपको है डायबिटीज़ होने की। आजकल जो उससे ज़्यादा बीमारी जो है आजकल, वो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम ओबेसिटी। डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ ओबेस पेशेंट्स में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। जो पेशेंट फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, जो काउच पोटैटोज़ है, जिनकी लाइफस्टाइल सही नहीं है, और जो अल्कोहल या स्मोकिंग के आदि है, ये पेशेंट्स में डायबिटीज़ का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। बिकॉज डायबिटीज़ जो है एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, स्पेशली जो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। तो इसके कारण अगर आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है, अगर आप सही टाइम पे खाना नहीं खा रहे हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी या कोई भी प्रकार का एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस है आपकी लाइफ में, या आप स्ट्रेस ले रहे हैं, मुंबई की लाइफ में स्ट्रेस तो होना ही है, बट आजकल गांव में भी हम देख रहे हैं जो युवा है, आज की जनरेशन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती है, छोटी छोटी बातों पे टेंशन आ जाता है उन्हें। तो ये सब डायबिटीज़ को बढ़ावा दे सकते हैं, आगे जाके ये पेशेंट्स, ये मरीज़ को डायबिटीज़ हो सकता है।
0: डॉक्टर साहब, एक फैमिली हिस्ट्री की बात आपने की, अनुवांशिकता की बात की, जो हेरेडिटी कैरेक्टर होता है, तो ये आपके पास इस तरह के भी मरीज देखने को मिलते होंगे आपको, कि पिता को था लेकिन 3 भाई या बहन हैं, उसमें से केवल एक को ही हुआ है, 2 को नहीं हुआ है?
1: डायबिटीज़ में फैमिली हिस्ट्री डेफिनेटली होती है, बट ज़रूरी नहीं है कि फादर या मदर को या दोनों को डायबिटीज़ है तो सभी बच्चों को डायबिटीज़ होगा। ये उस इंडिविजुअल की लाइफस्टाइल और जेनेटिक मेकअप पे डिपेंड करता है। अगर पेशेंट हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, रेगुलर एक्सरसाइज करे, बैलेंस डाइट रखे और स्मोकिंग अल्कोहल से दूर रहे, तो चांस है कि उसको डायबिटीज़ नहीं हो।
0: ये बात तो आपने बड़ी सुधार की कही है कि कभी। अच्छा, इसमें एक सेंटेंस आपने कहा था, स्ट्रेस या तनाव या अवसाद, इसको अलग अलग रूप में लेते हैं लोग, वो हर किसी को है, आपको है और मुझे भी है, कहीं ना कहीं हम इससे बचे नहीं हैं, लेकिन उसकी मात्रा पे डिपेंड करता है कि वो आप कितना गहराई से उसको महसूस करते हैं,
1: सही
0: तभी
1: बात,
0: इसके शिकार बनते हैं। कितना सहमत हैं आप?
1: ये एक बिल्कुल सही बात बोली। देखो, जैसे कि मैंने कहा, अर्बनाइजेशन जो आजकल हमारी लाइफस्टाइल है, भागदौड़ वाली मुंबई में जो हम भागदौड़ करते हैं, यहाँ से वहाँ ऑफिस जाओ, यहाँ आओ, इधर जाना है, उधर जाना है, तो लाइफस्टाइल जो हमारी है पूरी तनावपूर्ण है। ऑफिस में वर्क है, घर पे स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है। कि जो युवा है गाँव में भी, जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पर भी स्टडीज़ है जो बताती हैं कि गाँव में भी जो स्ट्रेस है वो लेवल काफ़ी बढ़ गया है युवाओं में। स्ट्रेस से बचना नामुमकिन है। ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो आदमी कितना स्ट्रेस ले, कितना नहीं ले। मैं तो मेरे पेशेंट्स को हमेशा यही कहता हूँ, भगवान ने हमको 2 कान दिए हैं, एक कान से सुनो, दूसरे से बाहर लो। बीच में जो दिमाग है उसको, बेचारे को टेंशन मत दो, उसको छोड़ दो।
0: जी
1: क्योंकि टेंशन से ना सिर्फ डायबिटीज़ के और हम बढ़ावा दे सकते हैं, इससे और भी सारी, काफ़ी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि एसिडिटी है, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है।
0: ये आपने इतना गंभीर स्रोत बताया है कि मुझे एक प्रश्न यहाँ करना पड़ेगा सुनने वालों की ओर से, कि आप इतना इलाज करते हैं और एक जो प्रौढ़ व्यक्ति है उसका अगर मधुमेह नियंत्रण में न आया, तो न आने के कारण क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस या नुकसान हो सकते हैं, उसके बारे में विस्तार से बताइए।
1: जी, डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, और डायबिटीज़ को कंट्रोल में नहीं रखे तो काफ़ी सारे शरीर के जो पुर्जे हैं उन पे नुकसान हो सकता है। डायबिटीज़ को हम इंग्लिश में बोलते हैं साइलेंट किलर।
0: जी
1: ये अंदर ही अंदर शरीर को खोखला कर देता है, और जब 10 साल 15 साल आदमी को डायबिटीज़ होता है, कंट्रोल में नहीं रहता है, तब इसके कॉम्प्लिकेशंस आना शुरुआत होती है। लेकिन जब कॉम्प्लिकेशंस सेट इन हो जाते हैं तो काफ़ी देर हो चुकी होती है, काफ़ी इसके कारण मोर्टैलिटी और मॉर्बिडिटी होती है। डायबिटीज

0: जो कॉम्प्लिकेशंस है ये माइक्रोवैस्कुलर और मैक्रोवैस्कुलर बोलते हैं। सरल भाषा में कहा जाऊं तो शरीर के सभी अवयवों पे इसका असर होता है, बुरा असर। आंखों में हम डायबिटिक रेटाइनोपैथी कहते हैं, जिसमें जो आंख का पर्दा है जहाँ पे इमेज बनती है उसे डैमेज होता है, पेशेंट्स को आगे जाके दिखना बंद हो सकता है। डायबिटिक पेशेंट्स में कैटरैक्ट्स बहुत जल्दी होते हैं, जिसको हम मोती बिंदु कहते हैं। तो ये पेशेंट्स को कम उम्र में कैटरैक्ट होता है, ऑपरेशन से ये सही हो सकता है। बट अगर डायबिटिक रेटाइनोपैथी बढ़ गया तो इसके कारण उनको दिखना बंद हो सकता है। फिर डायबिटीज से किडनी पे प्रभाव पड़ सकता है, जिसे हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं, जिससे कि क्रिएटिनिन लेवल बढ़ सकता है, किडनी खराब हो सकती है और आगे जाके ये पेशेंट्स डायलिसिस पे भी लैंड अप हो सकते हैं। इतना गंभीर रूप से डायबिटीज़ का असर होता है।
1: ओहो
0: तीसरा असर डायबिटीज़ का होता है हार्ट पे, जिसमें हार्ट अटैक जो है ये हो सकता है लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ में। स्पेशली हार्ट अटैक उन पेशेंट्स में होता है जिनको ओबेसिटी है, जिनको फैमिली हिस्ट्री है, जिनका कोलेस्ट्रॉल यानी चर्बी की मात्रा ज़्यादा है। तो हम पेशेंट्स को, जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ है, साथ में ब्लड प्रेशर है और साथ में कोलेस्ट्रॉल भी है, ये पेशेंट्स बहुत ज़्यादा रिस्क में होते हैं जिनको हार्ट अटैक आ सकता है। इसके अलावा डायबिटीज़ का ब्रेन पे भी असर हो सकता है, बिकॉज डायबिटीज़ एंड कोलेस्ट्रॉल हैंड इन हैंड चलते हैं। तो ये पेशेंट्स को लकवा यानी पैरालिसिस भी हो सकता है। डायबिटीज़ में न्यूरोपैथी होती है, जिसमें हम हाथों में पैरों में झंझनाहट होती है और आगे जाके तलियों में और हाथ के जो पंजे हैं उसमें जलन होती है। ये जलन बहुत सीवियर हो सकती है और इसके कारण पेशेंट्स को बहुत तकलीफ होती है, रात की नींद भी डिस्टर्ब होती है।
1: हमने ये भी मरीजों में देखा है, पाया है कि आपने हाथों की जो जलन बताई है, पैरों की पगतलियों में जो ऐसा होता है कि ऑपरेशन तक करना पड़ता है।
0: डायबिटीज़ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक फुट। जैसे कि मैंने बताया, न्यूरोपैथी में क्या होता है कि इनकी जो नर्व्स है वो कमज़ोर हो जाती है, इनके सेंसेशन जो है वो चले जाते हैं, इसलिए ये पेशेंट्स को पैरों में सेंसेशंस नहीं होता है। काफ़ी बार ये होता है कि पैरों में ज़ख्म हो गई, लेकिन पेशेंट्स को पैरों में सेंसेशन नहीं होने के कारण ये ज़ख्म बढ़ता जाता है। और डायबिटीज़ के जो मरीज़ है ये काफ़ी बार अपने फुट चेक नहीं करते हैं, इसलिए हम हमेशा मेरे पेशेंट्स को मैं इंस्ट्रक्शंस देता हूं कि डेली बेसिस पे एक बार एटलीस्ट दिन में अपना फुट इंस्पेक्ट करना चाहिए और फुटवेयर जो है वो प्रॉपर फुटवेयर होनी चाहिए और फुट इंस्पेक्शंस होना चाहिए। तो ये जो डायबिटिक फुट है इसमें कॉम्प्लिकेशंस होके इन्फेक्शन हो सकता है और ये इन्फेक्शन स्प्रेड होके हमें काफ़ी बार एम्पिटेशन भी करना पड़ता है, मतलब पैर को काटना पड़ता है। वो लेवल हम डिसाइड करते हैं कि इन्फेक्शन कहाँ तक फैला है, बिलो नी होता है, बिलो एंकल, अबव एंकल होता है, तो डिपेंडिंग, या कभी कभी सिर्फ एक उंगली काटनी पड़ सकती है। तो इतना भयानक ये कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक फुट।
1: लेकिन यहाँ आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि उसमें मटेरियलिस्टिक ढंग से देखें, तो प्लास्टिक का चप्पलों का उपयोग कर सकते हैं या पूरा जूता और मोजा बंद करके पहनते हैं तो मॉइस्चराइजेशन होता है, तो उस पैर की अवस्था को कैसे रखा जाना चाहिए?
0: नहीं, डायबिटिक फुट केयर में यही है कि आप अपने फुट क्लीन और ड्राई रखें। यू कैन वेयर सॉफ्ट चप्पल्स, आजकल मार्केट में भी स्पेशल डायबिटीज़ फुटवेयर आती है जो आप पहन सकते हैं। जो पेशेंट्स में डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशन है या डायबिटिक फुट है या कभी कभी फ्लैट फुट होता है, उनके लिए स्पेशल फुटवेयर भी आते हैं। न्यूरोपैथी पेशेंट्स के लिए भी स्पेशल फुटवेयर है। लेकिन जो आम जनता है जिनको डायबिटीज़ नहीं है, उनको हम ये सलाह देते हैं कि आप कंफर्टेबल फुटवेयर पहने, ज़्यादा टाइट शूज़ नहीं पहने और घर पे आते ही पैरों को खुला रखें, उनको हमेशा डेली बेसिस पे इंस्पेक्ट करें।
1: इसका मतलब थोड़े समय के लिए जब बहुत सारी बंदिश हो जाती है तो उसको आपको थोड़ा हवा के रूप में रखना चाहिए, थोड़ा खुला रखना चाहिए, मोजे वगैरह ना पहने उस समय के लिए। बहुत अच्छी बात बताई आपने, लेकिन यहाँ पर हम चाहेंगे कि हमारी चर्चा को थोड़ा सा विराम देंगे और हम गति से आगे बढ़ रहे हैं। आपकी जो संगीत वाली बात है वो कौन सी है?
0: ये गाना है, ये मैं अपने श्रोताओं को सुनाना चाहूंगा।

नमस्कार। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे है, अब आरंभ होती है हमारी सायंकालीन सभा। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों की श्रृंखला में आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी, पर उससे पहले इस घंटे की खास खबरें न्यूज हेडलाइन में अब से कुछ ही पलों बाद।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कल से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर देश भर में विशेष कार्यक्रम शुरू करेगा। ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक इंदौर में कल से 13 जून तक आयोजित होगी। बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी। प्रदेश से राज्यसभा की तीसरी सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा घोषित उम्मीदवार मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश केवट और इसी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था और 1956 में इसे आकाशवाणी नाम दिया गया। पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्यशाला आयोजित करेगी। और भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन एक पारी और 300 रन से हरा दिया है। न्यू चंडीगढ़ में खेले गए मुकाबले में भारत ने पहली पारी 8 विकेट पर 564 रन बनाकर घोषित कर दी थी, जिसके जवाब में अफगानिस्तान की टीम पहली पारी में 152 रन पर ही सिमट गई। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है युवाओं का कार्यक्रम युववाणी। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल केंद्र की है।

0: सदियों की गूंज समेटे जो हर दिल की बनी धड़कन है, क्षितिज पार से आती जो वो सुरीला सा एक बंधन है। गूंज उठा जब आकाशवाणी का वो पहला पावन स्वर, भारत के कोने कोने में जाग उठाता हर घर पर। 90 वर्षों का सफर सुहाना, सुरताल की अमीट कहानी। युग बदला तकनीक बदली पर अमर रही आकाशवाणी। युग बदला तकनीक बदली पर अमर रही आकाशवाणी। दोस्तों, आज आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इतने सालों से लगातार आकाशवाणी को इतना स्नेह देने के लिए। ये आप सभी का साथ है जो आज हम यहाँ तक लेकर आया है। आगे भी ऐसे ही स्नेह देते रहिएगा। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और एक बार आप सभी का स्वागत है आपके मनपसंद कार्यक्रम युववाणी में, जहां आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सानिया आचार्य। और आज मेरे साथ हैं सरदार वल्लभ भाई पॉलिटेक्निक कॉलेज भोपाल से आदित्य कुमार पटेल, जो कि आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 5 जून को आयोजित तत्कालिक भाषण प्रतियोगिता के विजेता रहे हैं और आज हमारे साथ एक दिन के आरजे बने हैं। आदित्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लग रहा है आज कार्यक्रम में आकर?
1: बहुत बहुत धन्यवाद सान्या। नमस्ते श्रोताओं, मैं आदित्य कुमार पटेल आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं आकाशवाणी भोपाल को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया और आज मैं बहुत खुश हूं यह उपलब्धि हासिल करके। आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे विश्व महासागर दिवस के बारे में और चर्चा करेंगे कार पूलिंग, ट्रैफिक और प्रदूषण का स्मार्ट समाधान और मिशन लाइफ के बारे में।
0: जी हाँ दोस्तों, और आपको सुनवाएंगे 5 जून को सरदार वल्लभ भाई पॉलिटेक्निक कॉलेज में आयोजित तत्कालिक भाषण प्रतियोगिता के संपादित अंश। अभी आपको सुनवाते हैं आज के कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म काई पोचे से। रंगे

0: गाय पोछे से अभी आपने गीत सुना दिव्य कुमार श्रुति पाठक की आवाजों में, संगीतकार अमित त्रिवेदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम युववाणी में और आज हमारे साथ जुड़े हैं आदित्य कुमार पटेल।
1: दोस्तों आज विश्व महासागर दिवस है यानी वर्ल्ड ओशियन डे, जो हर साल 8 जून को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को हमारे जीवन में महासागरों के महत्व और उनके संरक्षण के प्रति जागरूक करना है।
0: बिल्कुल आदित्य, हर साल इसकी कोई ना कोई थीम होती है। इस साल की थीम है महासागरों को बचाने के लिए नए प्रयासों, वैज्ञानिक खोजों और सामूहिक जिम्मेदारी, यानी कि अवेकनिंग न्यू डेप्थ्स। और हम अगर महासागर के महत्व की बात करें तो पृथ्वी की लगभग 50% से अधिक ऑक्सीजन महासागरों द्वारा ही पैदा की जाती है।
1: ये दुनिया भर के करोड़ों लोगों के लिए भोजन और आजीविका का मुख्य साधन है और महासागर पृथ्वी के तापमान नियंत्रित रखने में मदद करते हैं। पृथ्वी का सबसे बड़ा इकोसिस्टम महासागर ही है, जहां लाखों प्रजातियां रहती हैं।
0: बिल्कुल, और आज महासागर खतरे में है। प्रदूषण के कारण कहीं ना कहीं हमारे जीवन पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। प्लास्टिक प्रदूषण, ओवर फिशिंग और क्लाइमेट चेंज से हमारे समंदर खतरे में है। हम सभी को ये समझना होगा कि अगर महासागर सुरक्षित नहीं है तो पृथ्वी पर जीवन भी सुरक्षित नहीं रहेगा। हम सभी को ये बात समझनी होगी।
1: जी हाँ, और हमारे निरंतर प्रयासों से हम इतनी बड़ी बायोडायवर्सिटी को बचा सकते हैं, इसलिए मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस। और हमें अपने कर्तव्य को समझते हुए इसका ध्यान रखना होगा।
0: बिल्कुल आदित्य, और चलिए अब आपको सुनवाते हैं।

0: ब्रह्मास्त्र से गीत अभी आपने सुना रिजी सिंह की आवाज में, गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य और संगीतकार प्रीतम। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कार पूलिंग की। हाल ही में पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना, कार पूलिंग करना, ये बातों पर जोर दिया जा रहा है। रोज रोज अगर चार व्यक्ति एक ही एरिया से ऑफिस जाते हैं तो वो कार पूलिंग कर सकते हैं। ऐसे में वो पैसे भी बचा सकते हैं और प्रदूषण ना होने में भी योगदान दे सकते हैं।
1: बिल्कुल सान्या, इससे ट्रैफिक से भी राहत मिलेगी और स्ट्रेस फ्री राइड भी रहेगी। और अब तो आप ऐप के द्वारा भी कार पूलिंग कर सकते हैं। कार पूलिंग का सीधा और सरल अर्थ है एक ही दिशा या एक ही ऑफिस कॉलेज जाने की ओर जाने वाले दो या दो से अधिक लोगों द्वारा एक ही कार का इस्तेमाल करना।
0: जी, कार पूलिंग एक विकल्प नहीं बल्कि एक स्मार्ट चॉइस है। बहुत सारे लोग अपनी डेली लाइफ में कार पूलिंग का उपयोग कर रहे हैं। यदि हम सब मिलकर स्मार्ट समाधान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें तो हमें आने वाली पीढ़ी को एक स्वच्छ, शांत और प्रदूषण मुक्त भविष्य सौंप सकेंगे। तो हम यही कहेंगे, सफर साझा कीजिए और पर्यावरण बचाइए।
1: सान्या, हम आशा करते हैं कि कार पूलिंग के महत्व को हम सभी समझेंगे और इसे अपनाएंगे।
0: बिल्कुल आदित्य। दोस्तों अब कार्यक्रम में वक्त हो गया है आकाशवाणी के स्वर्णिम 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पॉलिटेक्निक कॉलेज में 5

0: जून को आयोजित तत्कालिक भाषण प्रतियोगिता के संपादित अंश का। तो आइए सुनते हैं तत्कालिक भाषण प्रतियोगिता के संपादित अंश।
1: सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नमन शर्मा है और मैं डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल का छात्र हूँ और मैं अपना आखिरी वर्ष में हूँ मेरे डिप्लोमा में। और आज मैं भारतीय त्यौहार और संस्कृति मूल्यों के प्रचार में आकाशवाणी पे बोलना चाहूँगा। भारत एक ऐसा देश है जिसमें अनेक अनेक त्यौहार, अनेक अनेक संस्कृति मनाई जाती हैं। खासकर ऐसा देश जिसमें अनेक अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, जिसमें 140 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं, वहाँ पे त्यौहारों की संख्या, संस्कृति संख्या का लेखन करना असंभव है। और जैसे कि हमारे ज़्यादातर देश में ग्रामीण लोग ज़्यादा रहते हैं, वहाँ तक अलग अलग संस्कृति पहुँचाने के लिए हमें एक माध्यम चाहिए। आकाशवाणी हमारे ग्रामीण देशों में अलग अलग जगह पे अनेक अनेक संस्कृतियों के संदर्भ में बोलने के लिए, लोगों को उनके बारे में बताने के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम है। जैसे कि हमारे देश में ईद, दिवाली, पोंगल, क्रिसमस जैसे और भी अनेक त्यौहार हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं रहता, पर वो हमारे देश में कहीं ना कहीं कोई ना कोई हिस्से में मनाए जाते हैं। उनके बारे में हमको बताने के लिए आकाशवाणी एक अच्छा माध्यम है। और अंततः एक देश जिसमें इतनी सारी संस्कृति हैं, रेडियो एक ऐसा माध्यम है जिससे सिर्फ लोग सुन के ही चीज़ों के बारे में जान सकते हैं, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग त्यौहार के माध्यम में अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। आकाशवाणी एक ऐसा माध्यम है जिससे अलग अलग क्षेत्र हैं उनमें ये सारी चीज़ें पहुँचाने बहुत अच्छा माध्यम है। धन्यवाद।
2: फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ आदित्य कुमार पटेल एंड मैं डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ एसवी पॉलिटेक्निक कॉलेज से। और मेरा आज का टॉपिक है भारतीय संस्कृति के संरक्षण में आकाशवाणी की भूमिका। जिस तरह किसी राष्ट्र की संस्कृति जो होती है वो उसकी आत्मा होती है, उसी तरह एक आकाशवाणी जो है जो हमारे राष्ट्र की उस आत्मा की मधुर आवाज़ है। आकाशवाणी एक वो चैनल है जो हमारी भारतीय संस्कृति को लोगों तक पहुंचाने की सेवा प्रदान करती है। आकाशवाणी एक रेडियो नहीं वो माध्यम है जो जन जन तक भारतीय संस्कृति को पहुंचाता है। और जो आकाशवाणी है वो भारतीय संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ाने का काम करता है। जिस तरह एक पेड़ अपनी जड़ से जुड़ा रहता है, उस तरह आकाशवाणी अपनी भारतीय संस्कृति को लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आकाशवाणी में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि मॉर्निंग में 8 AM पे समाचार है, फिर उसके बाद इवनिंग में कुछ लोकनीतियाँ होती हैं और आफ्टरनून में कुछ संस्कृति गतिविधियों के बारे में बताते हैं। इससे ये रहता है कि जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हैं उनको ये पता चलता है कि हमारे राष्ट्र में क्या प्रोग्राम चल रहे हैं, कौन से कल्चर से कौन सा स्टेट बिलोंग करता है। उससे ये रहता है कि हमारी जो अभी नई पीढ़ी है उनको पता चलता है कि हमारे भारत की संस्कृति कितनी ज़रूरी है और कितनी सक्षम है। थैंक यू।
3: आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पुष्पा गांधी है और मैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। मेरा आज का टॉपिक है लोक संस्कृति और आकाशवाणी। भारत की असली झलक महानगरों की चकाचौंध में नहीं दिखती है, इनको हम हमारी ग्रामीण क्षेत्रों में देखे जाते हैं। और यहाँ उपस्थित जितने भी लोग हैं उनकी जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों से ही जुड़ी हैं, तो आप सबको ही पता होगा कि जो लोक संस्कृति है, जैसे लोक नृत्य हुआ, लोक संगीत हुआ। और देखा जाए तो मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ और मैंने ये बखूबी देखा है कि वहाँ के जो लोग हैं, जो संस्कृति हैं, हमारे जो पूर्वज हैं वो बखूबी उनको निभाते आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। और हमारा भी कर्तव्य है कि हम हमारी जो लोक संस्कृति हैं उन्हें आगे, हमारी आगे वाली जनरेशन है उस तक पहुँचाएँ। और आकाशवाणी ये काम बखूबी कर रहे हैं। मैं इस जनरेशन की होके भी आप मानेंगे नहीं कि मुझे भी मतलब आकाशवाणी बहुत पसंद है। जब मेरी मम्मी, मेरी नानी जैसे कि सदाबहार आते हैं, अभी भी आते हैं, तो उनके लिए मतलब वेट करते थे कि आज ये आना है, तो सब काम छोड़कर वो वेट करते थे। आकाशवाणी की बात करें तो मन में एक गहरे जुड़ाव का एहसास होता है। दशकों से विशेष ग्रामीण भारत में आकाशवाणी मनोरंजन, समाचार, और कहा जाए तो आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो सेवा नहीं है, ये हमारे देश की आवाज़ है और एक सशक्त संचार है। धन्यवाद।
4: नमस्ते सर, टीचर, मेरा नाम मयंक है फ्रॉम IIT ब्रांच। मुझे टॉपिक मिला है युवा पीढ़ी को भारतीय संस्कृति से जोड़ने में आकाशवाणी की क्या भूमिका है। आज के टाइम पे हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो युवा हैं वो ऐसे नॉर्मली

0: प्लेटफॉर्म्स पे म्यूज़िक सुनते हैं। आकाशवाणी हमें म्यूज़िक के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बताता है। जैसे कहने को देख लिया जाए तो हमें काफ़ी सारी संस्कृतियों के बारे में जानकारी देता है, और आकाशवाणी से हमें ये सुनने को मिलता है जैसे कौन से कल्चर क्या क्या होता है, ये सब जानने को मिलता है, कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। हर स्टेट में अलग अलग कल्चर्स होते हैं, तो कौन सी स्टेट में कौन सा त्यौहार किस तरह से मना जाता है, ये सब हमें आकाशवाणी पर सुनने के लिए मिलता है। थैंक यू सर।
1: दोस्तों, अभी आपने सुना आकाशवाणी के स्वर्णिम 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पॉलिटेक्निक कॉलेज भोपाल में 5 जून को आयोजित तत्कालिक भाषण प्रतियोगिता के संपादित अंश को। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण आज पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। इसके प्रति और जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मिशन लाइफ यानी कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की शुरुआत की है। ये मिशन वैश्विक स्तर पर पर्यावरण को बचाने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर जीवन शैली में बदलाव लाने का एक जन आंदोलन है।
2: यह मिशन हमें अपनी रोजमर्रा की आदतों में छोटे छोटे बदलाव करने की प्रेरणा देता है, ताकि हम पृथ्वी के संसाधनों का दोहन करने के बजाय उनका संरक्षण कर सकें।
1: बिल्कुल, यदि आज हम अपनी आदतें नहीं बदलेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संकटग्रस्त पृथ्वी छोड़कर जाएंगे। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये हम सभी ने सुना है। इसी की तर्ज पर हमारे द्वारा उठाया गया एक छोटा सा कदम भी पर्यावरण को बचाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आइए हम सब मिलकर प्रो प्लैनेट पीपल बने और इस धरती को हरा भरा और सुरक्षित बनाए। और अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है आज की महत्वपूर्ण रोजगार सूचना का। NALCO यानी कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ने नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ने नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 जून 2026 है। अधिक जानकारी के लिए आप नेल्को की ऑफिशियल साइट यानी कि NALCO.com पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ने नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 जून है। अधिक जानकारी के लिए आप NALCO.com पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब सुनवाते हैं अगला गीत यमला पगला दीवाना से सोनू निगम की आवाज में।

दोस्तों भी आपने गीत सुना सोनू निगम की आवाज में, और जैसे कि आज आकाशवाणी ने 90 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, तो चलिए जाते जाते आपको सुनाते हैं ये गीत गुड न्यूज से दिलजीत दोसांझ, ध्वनि वाणी शाली और सुखबीर की आवाजों में।

0: श्रोताओं, आशा करते हैं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा और एक बार आप सभी को आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर बहुत बहुत बधाई।
1: हम यही उम्मीद करते हैं कि आपको और हमारा साथ यूं ही बना रहे। आपके रेडियो दोस्त आदित्य कुमार पटेल
0: और मैं आपकी रेडियो

0: अभी आप सुन रहे थे युवाओं का कार्यक्रम युववाणी, प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल केंद्र की थी।
1: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हुए हैं। हमारा अगला प्रसारण अब से कुछ ही पलों बाद।

0: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
1: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
0: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
2: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूँगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुँचते पहुँचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
1: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
3: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
1: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
0: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
2: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूँगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुँचते पहुँचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
1: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
3: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: मीडियम वेब पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:33 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

डॉक्टर कमलेश अवस्थी, सुमन कल्याणपुर और अनवर की आवाज़ में अभी आपने नसीब फिल्म का गीत सुना। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लोफर लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत, आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की। एक बार फिर गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए अगला गीत। फिल्म का नाम है सनी, आवाज़ है लता मंगेशकर की, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार आर डी परमन।

0: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
1: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
0: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
2: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूँगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुँचते पहुँचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
1: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
3: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: हमारे आज के प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। शाम 6 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, 6:30 पर लोक संगीत में कलाकार हैं राम गोपाल दीक्षित। 6:40 पर सुनिए आजकल और 6:45 पर प्रादेशिक समाचार दर्शन। ये दोनों कार्यक्रम क्षेत्रीय समाचार एकांश भोपाल का योगदान है, इसे आप आकाशवाणी भोपाल से सुनेंगे। 7:21 पर कृषि जगत में आप सुनेंगे भेंटवार्ता, उड़द और मूंग की उन्नत खेती, जानकारी देंगे डॉक्टर अजय जायसवाल। रात 8 बजे सुर्खियों में 8:35 पर फिल्म संगीत, और आज रात 10 बजे काव्य अंजुमन में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हिंदी और उर्दू काव्य रचनाओं की गोष्ठी। प्रतिभागी हैं सर्वश्री अंबर ठाकरे, प्रियदर्शी, अनिता श्रीवास्तव तमन्ना, सूरज राय सूरज, मिनहाज कुरेशी, सुरेश मित्र विचित्र, यूनस अदीप, वंदना सोनी विनम्र और नवनीता दुबे नुपुर। ये थे हमारे आज के प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में जानकारी। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें न्यूज़ हेडलाइन में।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए पेश हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज चंडीगढ़ स्थित हरियाणा विधानसभा में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन किया। 3 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में देशभर के विधानसभा अध्यक्ष तथा कई राज्यों के विधानसभा प्रतिनिधि महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कल से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर देशभर में विशेष कार्यक्रम शुरू करेगा। ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक इंदौर में कल से 13 जून तक होगी। बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि और ऋण बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी। महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ किए गए देशव्यापी टीकाकरण अभियान में मध्य प्रदेश शीर्ष राज्यों में शामिल हो गया है। प्रदेश में 7,63,000 से अधिक पात्र बालिकाओं का सफलतापूर्वक HPV टीकाकरण किया जा चुका है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, LPG और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य बनी हुई है। भारत ने एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में अफगानिस्तान को पारी और 300 रन से हरा दिया है। न्यू चंडीगढ़ में खेले गए मुकाबले में भारत ने पहली पारी 8 विकेट पर 564 रन बनाकर घोषित कर दी थी। और मौसम विभाग ने प्रदेश के ग्वालियर, सागर, शहडोल, जबलपुर, नर्मदापुरम, इंदौर और भोपाल संभागों के कई जिलों में आंधी, गरज चमक और बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। शाम के 6 बजे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सब दंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो आइए श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे और नयन पांडे जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी चाहे कितनी भी खूबसूरत हो, अपनों के बिना अधूरी लगती है।
3: बहुत सुंदर संदेश आपका, इसके लिए हमारा आभार स्वीकार कीजिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है भाटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। लिखते हैं,
2: ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत समयानुकूल विषय गर्मी के मौसम में अपनी देखभाल कैसे करें पर लगातार 4 दिनों तक जीवन उपयोगी मालूमात प्रदान की गई। इस बात की जानकारी को बहुत ही सरल और सहज ढंग से बताया गया। हमने व्यक्तिगत रूप से इन बातों पर अमल करना शुरू कर दिया है। उमंग की पूरी टीम को हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें जागरूक कर दिया।
3: कृष्ण कुमार गुप्ता जी आगे लिखते हैं, करगिल के वीर योद्धाओं के अदम्य साहस की शौर्य गाथा को बखान करने वाले ऑपरेशन विजय पर 13 मई को विस्तृत जानकारी हासिल हुई। इस अप्रतिम प्रस्तुति के लिए उमंग की संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है। धन्यवाद।
2: धन्यवाद कृष्ण कुमार जी, आपकी प्रतिक्रियाओं से हमारा उत्साह बढ़ता है।
3: साथ ही साथ हम अन्य सभी श्रोताओं से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर भेजें, सिर्फ सुविचार भेजकर ही संतुष्ट ना हो जाएं।
2: जी, और अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू का।
3: लिखते हैं, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं, सोमवार से शुक्रवार तक हम रोज सुनते हैं, हमारे साथ हमारे बच्चे भी सुनते हैं
2: जी।
3: एक सुझाव है कि यदि सब्जी, फूल, फल व मोटे अनाज पर भी जानकारी सुनवाई जाए तो हम सबों को बड़ा लाभ होगा।
2: दिनांक 12 मई को भीषण गर्मी के उपाय, बचाव, नवतपा, थर्मल लैग जैसी बेहद उम्दा जानकारी हमने सुनी, परिवार के सभी को बेहद पसंद आई। अब उमंग कार्यक्रम में 17 सदस्य और जुड़ गए हैं। दिन पे दिन संख्या बढ़ रही है, कार्यक्रम की उपयोगिता सबको जोड़ती जा रही है। ये ज्ञान का भंडार है, इसलिए हम हृदय से उमंग टीम को आभार, धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल, अंजलि जंघेल, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का।
2: गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर से कानाराम चौहान जी का।
3: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का नाम क्या था?
2: इसका उत्तर है साथियों, 9 नवंबर 1989 को पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था। इसे बर्लिन वॉल कहा जाता है।
3: जी, हमारा दूसरा प्रश्न था, अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का नाम है दक्षिण गंगोत्री। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी।
3: और अब सुनिए हमारे द्वारा पूछा गया तीसरा प्रश्न और उसका उत्तर। हमारा प्रश्न था, गोबी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकते हैं?
2: गोबी के शीत मरुस्थल में बनाए जाने वाले मोबाइल घरों को यर्ट कहते हैं।
3: जी, और अब हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं।
2: इसका उत्तर है साथियों, लद्दाख क्षेत्र में बहुत अधिक संख्या में पाए जाने वाले पेड़ को विलोवुड ट्री कहते हैं, जिनसे क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं।
3: और हमारा अंतिम प्रश्न था, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर भारत के किस गांव में पड़ता है?
2: इसका उत्तर है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर भारत के स्पीति घाटी के हिक्किम गांव में पड़ता है।
3: तो श्रोताओं, ये थे हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। उन सभी श्रोताओं को हमारा शुक्रिया जिन्होंने भाग लिया और उत्तर भेजे। अब सुनिए आज का प्रश्न। तो हमारा आज का प्रश्न है,
2: भारत की किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
3: भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? श्रोताओं, आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आईडी यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं और साथ ही साथ हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भी।
2: प्रश्न एक बार मैं दोबारा दोहरा देती हूँ, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप कृपया CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए।
3: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं कार्यक्रम चालाक लोमड़ी।
2: एक चिर परिचित लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि यदि कोई प्रशंसा करे तो हमें तुरंत प्रभावित नहीं होना चाहिए, हमें तथ्यों की जांच करनी चाहिए कि कहीं प्रशंसा किसी स्वार्थ के कारण तो नहीं की जा रही है।
3: जी,
4: प्यारे बच्चों नमस्ते। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक कहानी। कहानी का नाम है चालाक लोमड़ी। इस कहानी में लोमड़ी एक कौवे से रोटी का टुकड़ा छीन लेती है। कैसे छीनती है? बात यूं है कि एक बार एक कौवे को रोटी का टुकड़ा मिला। रोटी का टुकड़ा उसने अपनी चोंच में दबा लिया। एक लोमड़ी ने रोटी का टुकड़ा जब कौवे के मुंह में देखा तो सोचा, यदि ये रोटी मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। जानते हो फिर लोमड़ी ने क्या किया? नहीं भाई, आगे क्या हुआ ये तो मैं नहीं बताऊंगी। तो सुनो ये पूरी कहानी इस गीत में।

0: बेचारा कौवा अपनी रोटी गंवा बैठा ना।
1: क्यों भला?
0: क्योंकि उसने लोमड़ी से जब अपनी झूठी प्रशंसा सुनी तो वो घमंड में आकर गाने लगा और रोटी मुंह से गिर गई।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम चालाक लोमड़ी।
3: जनजातीय समुदाय की प्रगति, आकांक्षा और विकसित भारत की यात्रा के जनजातीय गरिमा उत्सव में आइए, हम सब साथ जुड़ें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से प्रेरित होकर जनजातीय समुदाय आशा, सम्मान और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 10 मई से 9 जून तक हर पीढ़ी की प्रगति को प्रदर्शित करता ये आयोजन एक सशक्त, समावेशी, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की ओर अग्रसर है।
4: और अब सुनते हैं एक और खूबसूरत कार्यक्रम,
2: राजा रवि वर्मा।
4: ये कार्यक्रम भारत के महान चित्रकार राजा रवि वर्मा की जीवनी को एक नाटक के रूप में प्रस्तुत करता है और बताता है कि किस तरह से उन्होंने कैनवस पर अपने पेंट ब्रश से भारतीय चित्रकला को एक नया आयाम दिया, जिसका शाश्वत प्रभाव आज भी उसी प्रकार से बना हुआ है।

0: अरे
1: अरे तुम लोगों ने ये क्या किया? कोचू मंगला, तुमने तो मंदिर की दीवारी गंदी कर दी। कोयले से ये क्या चील बिलाऊ बना दिए? अभी तो मंदिर सफेदी से पुतवाया था, तुमने उसे भी गंदा कर दिया। ठहरो ठहरो, मैं अभी राजा साहब से तुम्हारी शिकायत करता हूँ।
2: लगभग 150 साल पुरानी बात है। उस समय देश पर अंग्रेजों का राज्य था और छोटी बड़ी ढेर सारी रियासतें थीं जिनके राजा हुआ करते थे। ऐसी ही एक रियासत थी त्रावणकोर और उसकी राजधानी थी त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम को अब तिरुवनंतपुरम कहा जाता है और अब ये केरल राज्य की राजधानी है। उस समय त्रिवेंद्रम के राजा थे आयिल्यम तिरुनाल। उनकी ही रियासत में एक गांव था किलिमानूर, जहां का प्रबंध राजवर्मा देखते थे और उन्हें भी राजा कहा जाता था।
3: उनका एक हरे भरे बाग में मंदिर था। मंदिर को अभी हाल ही में सफेदी से पुतवाया गया था। राजा राजवर्मा की बहन थी उमा अंबाबाई, उनके बड़े बेटे थे कोच्चू। कोच्चू उनका घर का नाम था। वैसे उनका नाम रवि वर्मा था। रवि वर्मा की बहन थी मंगला। दोनों एक दिन बगीचे में खेल रहे

0: रहे थे। खेल खेल में कोच्चू ने कहा,
1: मंगला
2: हाँ
1: आ देख, मैं तुझे इस सफेद दीवार पर घोड़ा बनाकर दिखाता हूँ।
2: ठीक है।
1: अच्छा देख, वो कोयले का टुकड़ा पड़ा है ना,
2: हाँ हाँ,
1: उठाकर मुझे दे।
2: अच्छा ये लो कोयले का टुकड़ा।
1: हाँ
2: अब बनाकर दिखाओ घोड़ा।
3: कोच्चू ने कोयले से लकीरें खींचनी शुरू की और देखते ही देखते घोड़े का चित्र बना दिया।
1: ये हाँ ऐसे ये मैंने बना दी घोड़े की टांग।
2: अरे वाह।
1: और ये इसकी पूंछ।
2: अरे तुमने तो बिल्कुल सही घोड़े का चित्र बना दिया। पूंछ उठाकर भागते हुए घोड़े का चित्र बहुत सुंदर है।
1: अच्छा ले कोयला ले, और अब तू भी बना सुंदर सा चित्र।
2: लेकिन मुझे तो ले, अरे मगर
1: अब बना तो सही। ले पकड़ कोयला पकड़।
2: ठीक है।
1: अब बना।
0: मंगला चित्र बनाने जा ही रही थी कि उधर से गुजरते हुए माली की निगाह उन पर पड़ गई। माली ने डांटा, तुमने दीवार खराब कर दी, और फिर राजा साहब से शिकायत करने चला गया। इस पर मंगला बोली,
2: भाई
1: हा?
2: अब क्या होगा, माली गया है शिकायत करने, मामा देखेंगे तो बहुत नाराज हो जाएंगे।
1: तू चिंता मत कर। अच्छा चल हम दोनों झाड़ियों में छिप जाते हैं।
2: ठीक है।
1: चल चल चल चल चल हम दोनों झाड़ियों में छिप जाते हैं।
2: ठीक है।
3: कोच्चू और मंगला झाड़ियों के पीछे छिप गए और तभी माली राजा साहब को लिए हुए वहां पहुंचा।
4: अरे ये तो घोड़े का हूबहू चित्र बना दिया है कोच्चू ने। देखो तो सही, पूंछ उठाए घोड़ा कैसा भाग रहा है।
0: माली परेशान, राजा तो चित्र की तारीफ कर रहे हैं, मंदिर की दीवार खराब कर दी इस बारे में कुछ कह ही नहीं रहे।
5: कहाँ है कोच्चू और मंगला है?
6: मालिक मैं अभी तो उन्हें छोड़कर गया था, आप उन पर नाराज होंगे ये सोचकर कहीं इधर उधर भाग गए होंगे।

राजा साहब ने पहचान लिया कि कोच्चू में चित्रकार बनने की क्षमता है। राजा साहब स्वयं एक अच्छे चित्रकार थे, विद्या प्रेमी थे। उन्होंने कोच्चू को प्रोत्साहित किया, उसे चित्र बनाना सिखाने लगे। लेकिन कोच्चू के पिता नीलकांतन भट्टा तिरपड़ को यह पसंद नहीं था कि उनका बड़ा बेटा कोच्चू बड़ा होकर एक चित्रकार बने। नीलकांतन वेदों के ज्ञाता, संस्कृत के विद्वान थे। वो चाहते थे कि कोच्चू उनकी तरह संस्कृत का विद्वान बने। केरल की अपनी एक प्रथा रही है कि शादी के बाद दुल्हन दूल्हे के घर रहने के लिए नहीं जाती, बल्कि दूल्हा ही दुल्हन के परिवार में रहने के लिए आता है। नीलकांतन भी अंबाबाई के भाई राजा साहब के यहां रहते थे। उन्हें राजा साहब की बात माननी पड़ी, लेकिन यह भी तय रहा कि कोच्चू संस्कृत भी सीखेंगे। कोच्चू अपने पिता से संस्कृत भी सीखने लगे, मां से संगीत और मामा राजा साहब से चित्रकला। इस प्रकार साहित्य, कला और संस्कृति के धार्मिक और कलात्मक परिवेश में उनका पालन पोषण हुआ। तरुणावस्था आते आते वो सभी में सिद्धहस्त होते चले गए। तभी त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया।

0: बहन अम्बा
1: जी,
0: त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया है। उन्होंने कहला भेजा है कि घराने में कोई अच्छा सा विवाह योग्य युवक हो तो उसे भी साथ लेते आए।
1: फिर
0: क्या, राजा का बुलावा आया है तो मुझे जाना तो पड़ेगा ही। सोचता हूँ कोचू को साथ ले जाऊं। यहाँ वो जो कुछ लिख पढ़ सकता था, जितना कुछ सीख सकता था
1: जी,
0: सीख ही चुका है। आगे सीखने के लिए उसका त्रिवेंद्रम जाना ही ठीक रहेगा।
1: तो फिर
0: तुम कहो तो उसे त्रिवेंद्रम ले जाऊं।
1: ले जाओ, मैं क्या मना करती हूँ। हाँ, उसके पिताजी से भी पूछ लो।

पिता नीलकांतन ने भी स्वीकृति दे दी। भला उन्हें क्या आपत्ति होती? त्रिवेंद्रम जाकर कोच्चू आगे ही बढ़ेगा, वहां के विद्वानों, गुणियों और कलाकारों से उच्च शिक्षा पाएगा, और सबसे बड़ी बात कि त्रिवेंद्रम के राजा का उसे आश्रय मिलेगा। और इस प्रकार कोच्चू त्रिवेंद्रम के राज दरबार में पहुंच गए।

0: राजा राजवर्मा, हमारा संदेशा पाकर आप आए, अच्छा किया जो आप आए। आपका स्वागत है। आपके यहां सब कुशल क्षेम तो है?
1: जी हां, ईश्वर की कृपा से सब ठीक है।
0: आपके साथ ये नवयुवक कौन है?
1: महाराज, ये रवि है, मेरी बहन अंबाबाई और बहनोई विद्वान नीलकांतन भट्टा तिरुपद का बड़ा बेटा। इसे भी मैं आपके दर्शनों के लिए अपने साथ ले आया हूँ। इसने तमिल और संस्कृत का अध्ययन किया है महाराज। गायन, वादन और कथकली में निपुण है और चित्रकला का अभ्यास करता है।
0: अरे, तब तो ये नवयुवक बहुत अच्छा है, बहुत गुणवान है।
1: महाराज, इसमें आगे बढ़ने की बहुत ललक है, लेकिन हम किलिमानूर में रहकर इसे जितना सिखा सकते थे उतना सिखा दिया है। आगे की शिक्षा तो उसे आपके आश्रय में ही मिल सकती है।
0: इसमें क्या परेशानी है? इसकी उच्च शिक्षा की व्यवस्था हम यहीं करा देंगे। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े गुणी और ज्ञानी विद्वान हैं। राज चित्रकार रामास्वामी नायकर हैं। हम इसे चित्रकला की शिक्षा रामास्वामी नायकर से दिला देंगे।
1: आप ऐसी व्यवस्था करा दें तो बड़ी कृपा होगी।
0: आप निश्चिंत हो जाएं। समझ लीजिए कि इसकी व्यवस्था हो गई।

0: राजा तिरुनाल ने दरबार में उपस्थित राज चित्रकार रामस्वामी नायकर को संबोधित करते हुए कहा,
1: नायकर जी, आज से ये नवयुवक आपका शिष्य है। इसे आप राजकीय रंगशाला में चित्रकला की उच्च शिक्षा दें। यह हमारे राजा राजवर्मा का भांजा है और होनहार नवयुवक है, और अब ये हमारे संरक्षण में है।
2: रामस्वामी नायकर ने देखा कि नव युवक का हाथ तो उनसे भी कहीं अधिक सधा हुआ है। ऐसे में इसे कुछ सिखाने का मतलब होगा अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना। इसलिए उन्होंने उसे कुछ नहीं सिखाया, बल्कि उसे डांटता फटकारता रहा। तिरुनाल को पता चला कि रामस्वामी उसे कुछ नहीं सिखा रहे, तो उन्होंने रवि को रंग दिए, विदेशी चित्रकारों के चित्रों के एल्बम दिए और कहा,
1: रवि
3: जी,
1: तुम इन चित्रों को देख देख कर चित्र बनाना और रंग भरना सीखो, बराबर अभ्यास करो।
3: जी।
0: रवि वर्मा यही करने लगे। तभी दरबार में राज परिवार के लोगों के चित्र बनाने के लिए एक विदेशी चित्रकार आया। नाम था उसका थियोडोर जेंसन। राजा तिरुनाल ने उससे कहा कि वो रवि वर्मा को अपनी कला सिखाए, लेकिन उसने साफ मना कर दिया।

0: दिया। इस पर राजा तिरुनाल ने कहा,
1: मिस्टर जेनसन,
2: यस,
1: जब आप चित्र बना रहे हों तब इसे अपने पास खड़ा रहने दें।
2: नहीं नहीं, ऐसा करने से मेरा ध्यान भंग होगा, मैं इसे अपने पास भी खड़ा रहने नहीं दे सकता।
1: तो फिर हमें आपसे चित्र नहीं बनवाने हैं, आप जा सकते हैं।
3: राजा तिरुनाल की ये बात सुनकर जेनसन घबरा गया। घबराता क्यों ना, इससे उसे मिलने वाले भरपूर धन और मान सम्मान खोने का डर जो पैदा हो गया। वो सोचने लगा,
2: राजा साहब की बात तो मुझे माननी ही पड़ेगी, अगर नहीं मानता तो मेरी इज्जत और मान खत्म हो जाने का डर है। अच्छा, सिखाऊंगा उसे चित्र बनाना। ऐसा सिखाऊंगा कि उसे कभी कुछ समझ नहीं आएगा। पर मैं राजा साहब को ना क्यों करूं?
3: इस तरह हार कर उसने राजा तिरुनाल की बात मान ली। लेकिन उसने भी यही कोशिश की कि रवि वर्मा उसे काम करता देखकर भी कुछ न सीख सके। लेकिन रवि वर्मा तो उसके कुछ ना सिखाते हुए भी बहुत कुछ सीख गए। वो बराबर चित्र बनाते रहे। उन्हीं दिनों मद्रास में आयोजित चित्र प्रदर्शनी में उन्होंने अपना एक चित्र भेजा। इस चित्र को सर्वश्रेष्ठ माना गया और उन्हें मद्रास के गवर्नर की ओर से स्वर्ण पदक पुरस्कार में दिया गया। इस स्वर्ण पदक से शुरू हुआ उन्हें सम्मान और पुरस्कारों के मिलने का सिलसिला, जो बराबर जारी रहा। उन्हें देश और विदेश के अनेक सम्मान मिले। अंग्रेजों ने उन्हें हिंद केसरी सम्मान और राजा की उपाधि दी। उन्होंने अनेक राजा महाराजाओं और बड़े बड़े लोगों के व्यक्ति चित्र बनाए, जो अंग्रेज चित्रकारों द्वारा बनाए चित्रों से कहीं अधिक उत्तम थे। उन्हें अनेक राजा महाराजाओं ने आमंत्रित किया और अपने महलों में लगाने के लिए चित्र बनवाए। इन चित्रों के बदले में उन्होंने रवि वर्मा को खूब धन मान सम्मान दिया। यहां तक कि मैसूर के महाराज ने तो उन्हें इनाम में दो हाथी तक दिए।
0: राजा रवि वर्मा ने केवल राजा महाराजाओं के चित्र ही नहीं बनाए, बल्कि आम लोगों के चित्र भी बनाए और सबसे अधिक चित्र बनाए देवी देवताओं के, भागवत और पुराणों के। कवि कालिदास की कृति शाकुंतलम पर आधारित उन्होंने कई चित्र बनाए, जिनमें से एक चित्र को तो विदेशों में भी खूब प्रशंसा मिली। ये चित्र था राजा दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का। इस चित्र को अंग्रेज विद्वान सर मोनियर विलियम्स ने देखा तो वो बहुत प्रभावित हुए। सर मोनियर विलियम्स ने कवि कालिदास के नाटक शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। वो इस चित्र को अपने अनुवाद के मुख पृष्ठ पर छापना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने रवि वर्मा से अनुरोध किया कि इस चित्र को छापने की उन्हें अनुमति दें। रवि वर्मा ने अनुमति दे दी। इस चित्र के मुख पृष्ठ पर छपने से इसकी देश विदेश में खूब प्रशंसा हुई और किताब भी खूब बिकी।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राजा रवि वर्मा, और अब इसी के साथ हम आज के उमंग कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग।
7: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है।
8: रमा, 9 तारीख को

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत, ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। शाम के 6:40 हुए हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे क्षेत्रीय समाचार एकांश भोपाल का योगदान कार्यक्रम आजकल। इसे हम आकाशवाणी भोपाल से रिले कर रहे हैं।

पर्यावरण संरक्षण एक युग का संकल्प, जल की हर बूंद में भविष्य की धड़कन। आलेख है श्री प्रहलाद सिंह पटेल का। आप मध्य प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री हैं। वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। विश्व पर्यावरण दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं बल्कि आत्ममंथन और संकल्प का अवसर है। यह वह क्षण है जब हमें प्रकृति के प्रति अपने दायित्वों को याद करते हुए एक ऐसे भविष्य की कल्पना करनी चाहिए जहां जल, जंगल और जमीन सुरक्षित हों। आज आवश्यकता केवल एक दिन के संकल्प की नहीं बल्कि आने वाले युगों तक चलने वाले जन संकल्प की है। पीढ़ियों से हम सुनते आए हैं जल ही जीवन है, किंतु विडंबना यह है कि इस सत्य को समझने में हमें एक गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ा। आज यह संकट किसी एक मोहल्ले, शहर या राज्य और देश तक सीमित नहीं है बल्कि संपूर्ण पृथ्वी के अस्तित्व से जुड़ा एक वैश्विक प्रश्न बन चुका है। भारत भी इस चुनौती से अछूता नहीं है। बढ़ती जनसंख्या, अनियंत्रित शहरीकरण, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन ने प्राकृतिक जल स्रोतों को तेजी से क्षीण करना शुरू कर दिया है। ऐसे समय में पानी की प्रत्येक बूंद को सहेजना मानवता का सबसे बड़ा दायित्व बन गया है। जल संकट की गंभीरता केवल पानी की कमी तक ही सीमित नहीं है। भूजल स्तर का निरंतर गिरना, नदियों का प्रदूषित होना, पारंपरिक जल स्रोतों का लुप्त होना और वर्षा जल का व्यर्थ बह जाना इस संकट के प्रमुख कारण हैं। गांवों और नगरों की जीवन रेखा रहे तालाब, बावड़ियां और कुएं आज उपेक्षा, अतिक्रमण और कचरे के बोझ तले दम तोड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कृषि और उद्योगों में भूजल के अंधाधुंध दोहन ने स्थिति को और अधिक विकट बना दिया है। ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थितियों में जलगंगा संवर्धन अभियान आशा की एक सशक्त किरण बनकर उभरा है। यह अभियान केवल सरकारी योजना नहीं बल्कि जन भागीदारी पर आधारित एक सामाजिक आंदोलन है जिसका मूल मंत्र है जन सहयोग से जल संरक्षण और संवर्धन। इसका उद्देश्य जल संकट के मूल कारणों का समाधान करते हुए समाज को जल संरक्षण के लिए प्रेरित करना है। वास्तव में नदी का उद्गम स्थल ऊर्जा का केंद्र होता है और जहां नदियों का संगम होता है वहां जीवन की नई संभावनाएं जन्म लेती हैं। इसलिए नदियों के उद्गम और उनके प्राकृतिक स्वरूप की रक्षा करना हमारा सामूहिक दायित्व है। जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत पुराने तालाबों, कुओं, बावड़ियों और नदियों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि बारिश का पानी धरती में समाहित होकर भूजल स्तर को पुनर्जीवित कर सके। जल स्रोतों के आसपास व्यापक वृक्षारोपण किया जा रहा है जिससे जल संरक्षण की प्राकृतिक प्रक्रिया मजबूत हो सके। इसके साथ ही नदियों में प्रदूषण रोकने और गंदे नालों के प्रवाह को नियंत्रित करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। इस अभियान के परिणाम उत्साहवर्धक हैं। जल संरचनाओं की सफाई और गहरीकरण से भूजल स्तर में सुधार हुआ है। अनेक ऐतिहासिक तालाबों और बावड़ियों का पुनर्जीवन हुआ है जिससे स्थानीय स्तर पर जल उपलब्धता बढ़ी है। पानी चौपाल जैसे कार्यक्रमों ने लोगों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा की है और जल बचाने की संस्कृति को पुनर्जीवित किया है। कृषि क्षेत्र में भी इस अभियान ने सकारात्मक प्रभाव डाला है। किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी आधुनिक तकनीकों के उपयोग के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए जिससे कम पानी में अधिक उत्पादन संभव हो सके। यह न केवल जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है बल्कि किसानों की आर्थिक समृद्धि का भी आधार बन रहा है। जल संकट के स्थायी समाधान के लिए कुछ अतिरिक्त प्रयास भी आवश्यक है। शहरों में अपशिष्ट जल का शोधन कर पुनः उपयोग किया जाना चाहिए। औद्योगिक प्रदूषण पर कठोर नियंत्रण आवश्यक है और व्यक्तिगत स्तर पर भी हमें पानी की बर्बादी रोकने की आदत विकसित करनी होगी। जब तक समाज का प्रत्येक व्यक्ति इस जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं करेगा तब तक कोई भी अभियान पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। तो आइए इस विश्व पर्यावरण दिवस पर हम सब मिलकर यह संकल्प लें। रिपीट, तो आइए इस विश्व पर्यावरण दिवस पर हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि जल की प्रत्येक बूंद को बचाएंगे और जल स्रोतों का संरक्षण करेंगे, प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे, क्योंकि सच यही है, पानी को सहेजना ही आने वाली पीढ़ियों को बचाना है और जल का संरक्षण ही जीवन का संरक्षण है। भारत की भूमि और मौसम दोनों हमें संदेश दे रहे हैं। पौधरोपण की तैयारी करें। वर्षा प्रारंभ होने पर पौधरोपण से विश्व पर्यावरण दिवस सफल और सफल होगा। आजकल में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय समाचार एकांश का कार्यक्रम आजकल, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है क्षेत्रीय समाचार एकांश का कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन और मैं रत्नेश सोनी। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर अपनी विशेष रिपोर्ट। इस बार हमारा प्रादेशिक समाचार दर्शन एनडीए सरकार के 12 साल की उपलब्धियों और पर्यावरण पर केंद्रित है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन की। समाचार दर्शन के लिए हमारी पहली रिपोर्ट है बैतूल जिले से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल में बैतूल जिले में आधारभूत संरचना, सड़क, रेल, आवास, स्वास्थ्य, पेयजल, कृषि एवं आदिवासी विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिला है। पेश है बैतूल से हमारे संवाददाता मयंक भार्गव की यह रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल में बैतूल जिले में आधारभूत संरचना, सड़क, रेल, आवास, स्वास्थ्य, पेयजल, कृषि एवं आदिवासी विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिला है। केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं ने लाखों नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बैतूल जिले की पहचान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में रही है। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 46 के उन्नयन एवं 4-लेन निर्माण कार्यों को प्राथमिकता दी गई। इटारसी बैतूल नागपुर कॉरिडोर के विकास से जिले की कनेक्टिविटी में बड़ा सुधार हुआ है। हाल ही में इटारसी बैतूल खंड के लगभग 22 किलोमीटर 4-लेन निर्माण के लिए 758 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जिले के सैकड़ों गाँवों में को सार्वमौसमी सड़कों से जोड़ा गया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं बाजार तक पहुंच आसान हुई है। केंद्र सरकार ने इटारसी नागपुर चौथी रेल लाइन परियोजना को मंजूरी प्रदान की। लगभग 297 किलोमीटर लंबी इस परियोजना का सीधा लाभ बैतूल जिले को मिलेगा। परियोजना के पूर्ण होने पर माल परिवहन, यात्री सुविधाओं तथा औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। बैतूल घोड़ाडोंगरी, आमला एवं मुलताई क्षेत्र की रेल कनेक्टिविटी और अधिक मजबूत होगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बैतूल से मयंक भार्गव।
0: हमारी दूसरी खबर राजधानी भोपाल से, जहां विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक पेड़ माह के नाम अभियान 2.0 का शुभारंभ पौधारोपण कर किया। अधिक जानकारी दे रहे हैं भोपाल से हमारे संवाददाता मोहम्मद ताहिर खान।
2: भोपाल जिले में विश्व पर्यावरण दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शहर के कुशाभाव ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान का शुभारंभ पौधारोपण कर किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने अपेक्स बैंक मुख्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में भी सहभागिता की और हरित सहकार अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने राज्य स्तरीय समारोह में कहा कि प्रकृति का संरक्षण केवल हमारा दायित्व तो नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि
3: यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी 5 जून से लगाकर 21 जून तक का ये जो पखवाड़ा मनाने का बड़ा अभियान प्रारंभ हुआ, ये उनके सफलतम 12 वर्ष के शासनकाल के बलबूते पर जन कल्याणकारी सभी योजनाओं को धरातल पर उतारते हुए लोकतंत्र को गौरवान्वित करने का जो निर्णय, और ऐसे में पर्यावरण के प्रति तो उनकी प्रतिबद्धता मध्य प्रदेश में और ज्यादा उल्लेखनीय। हम सबको मालूम है कि चिंता प्रोजेक्ट की शुरुआत भी अगर शुरुआत करने में माननीय प्रधानमंत्री का आशीर्वाद सफल हुआ, उसके बलबूते पर उस समय के छोड़े गए चीते धीरे धीरे करके विश्व के सामने एक आदर्श रूप में एक तरह से एशिया महाद्वीप पर पुनर्वसाहट का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनकर के निकल के आए।
2: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए भोपाल से मोहम्मद ताहिर खान।
0: हमारी अगली खबर है भिंड से, जहां विश्व पर्यावरण दिवस के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत जिले भर में व्यापक पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे भिंड संवाददाता अनिल शर्मा।
4: भिंड जिले में पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम जिले भर में व्यापक पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में कलेक्टर भिंड ने शासकीय महाविद्यालय मेघा परिसर में लगभग 700 पौधे तथा नवीन तहसील परिसर मेघाव में लगभग 200 पौधे का रोपण किया। कलेक्टर ने कहा, पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधा लगाना जितना महत्वपूर्ण है उससे बड़ा करना ही उतना ही आवश्यक है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए भिंड से अनिल शर्मा।
0: अब हम चलते हैं बालाघाट जिले की तरफ, जहां पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण एवं उत्कृष्ट पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में जिले की संस्थाओं को 3 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे बालाघाट संवाददाता श्रीनिवास चौधरी।
5: बालाघाट जिले की 3 संस्थाओं का प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करना जिले के पर्यावरणीय जागरूकता, औद्योगिक उत्कृष्टता तथा सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। प्रदेश के कुल 11 पुरस्कारों में से 3 प्रथम पुरस्कार बालाघाट जिले को मिलना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, जिसने जिले का नाम पूरे मध्य प्रदेश में गौरवान्वित किया है। प्रदेश की लगभग 3000 से अधिक बड़ी औद्योगिक इकाइयों के बीच अति प्रदूषणकारी उद्योग श्रेणी में संचालित बालाघाट जिले के वारासिमनी विकास खंड अंतर्गत ग्राम खापा स्थित विशाग बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड इस ग्रेन आधारित एथेनॉल संयंत्र को उत्कृष्ट पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण तथा सर्वोत्तम पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रदेश का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। इसी प्रकार खनन क्षेत्र में बालाघाट जिले की रमरमा खदान को भी पर्यावरण प्रबंधन तथा सतत खनन गतिविधियों के लिए प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ खदान के रूप में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। वहीं लघु उद्योग श्रेणी में बालाघाट जिले की केसर एग्रोटेक को उत्कृष्ट पर्यावरण प्रबंधन एवं पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए प्रदेश स्तर पर प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सभी सम्मान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार द्वारा भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में प्रदान किए गए। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बालाघाट से मैं श्रीनिवास चौधरी।
0: हमारी अगली खबर है अनूपपुर जिले से, जहां विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अमरकंटक के शंभूधारा में 5 राज्यों से आए एनसीसी कैडेट्स के द्वारा वृक्षारोपण किया गया। अधिक जानकारी दे रहे अनूपपुर से हमारे संवाददाता अजीत कुमार मिश्र।
6: 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अनूपपुर जिले के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। एक और जिला स्तरीय आयोजन पवित्र नगरी अमरकंटक के शंभूधारा में वन विभाग द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें 5 राज्यों से आए एनसीसी कैडेट ने वृक्षारोपण किया। तो दूसरी तरफ बिजरी में मध्य प्रदेश सरकार के लघु एवं कुटीर उद्योग राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल की उपस्थिति में पौधरोपण का कार्यक्रम बिजरी नगर पालिका द्वारा आयोजित किया गया। तो राजेंद्रग्राम के झूला नदी में शहडोल सांसद हिमाद्री सिंह की उपस्थिति में स्वच्छता अभियान चलाया गया। तो विभिन्न ग्राम पंचायतों में तालाब, प्राकृतिक जल स्रोतों में भी सफाई अभियान चलाया गया। वहीं नगरीय निकायों में वृहद वृक्षारोपण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार के लघु एवं कुटीर उद्योग राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल अपने संदेश में कहा कि
7: विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर बिजुरी नगर के सरस्वती शिशु मंदिर व नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत ही कुर्जा हनुमान मंदिर रोड में नव निर्मित पार्क में व कपिल धारा कॉलोनी के शिव मंदिर प्रांगण में मेरे द्वारा व नगर पालिका अध्यक्ष व परिषद के सभी सदस्यों के साथ वृक्ष रोपण किया गया।
6: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए अनूपपुर से मैं अजीत मिश्रा।
0: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए अब हम रुख करते हैं आगर मालवा जिले की तरफ, जहां स्वच्छ गांव सुरक्षित जलवायु अभियान थीम पर विविध कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे आगर मालवा संवाददाता महेश शर्मा।
8: जिले में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून तक पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार, सामुदायिक सहभागिता, स्वास्थ्य जागरूकता, वृक्षारोपण, जल कल्याण शिविर, साइकिल राइडिंग, जैविक खेती एवं योग गतिविधियों से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के आयोजन किए जा रहे हैं। जिला मुख्यालय स्थित नमो वन में 500 पौधों का रोपण हुआ। वहीं जिला जेल, न्यायालय परिसर, महाविद्यालयों के साथ ही ब्लॉक स्तर पर वृक्षारोपण, स्वच्छता गतिविधियां एवं विशेष ग्राम सभाओं के आयोजन भी हुए। 7 जून को जिले के सभी विकास खंडों में साइकिल राइड एवं पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर पर्यावरण संरक्षण, स्वस्थ जीवन शैली का संदेश दिया गया। वहीं 12 से 18 जून तक जिले के ग्रामीण क्षेत्रों एवं नगरीय क्षेत्रों में विशेष जन कल्याण शिविर आयोजित किए जाकर सीएम हेल्पलाइन एवं लोक सेवा गारंटी के लंबित प्रकरणों का निराकरण, नागरिकों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों का निस्तारण तथा केंद्र एवं राज्य शासन की हितग्राही मूलक योजनाओं के प्रकरणों की स्वीकृति की जाएगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए आगर मालवा से मैं महेश शर्मा।
0: और अगली खबर है छतरपुर से। जिले में 586 ग्राम पंचायत में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने नौगांव सटई में पौधारोपण किया और प्रधानमंत्री श्री मोदी के 12 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। पेश है छतरपुर से हमारे संवाददाता सुनील पांडे की यह रिपोर्ट।
9: छतरपुर जिले में विश्व पर्यावरण दिवस एक बृहद अभियान के रूप में मनाया गया। छतरपुर जिला कलेक्टर पार्थ जायसवाल के निर्देशन में जिले के सभी नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायत में पर्यावरण के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें वृक्षारोपण किया गया और आम जनमानस को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का संदेश भी दिया गया। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भी पर्यावरण दिवस पर छतरपुर जिले के

0: पौधारोपण किया गया। अधिक जानकारी दे रहे बड़वानी से हमारे संवाददाता शिवपाल सिंह सिसोदिया।
1: पर्यावरण दिवस के अवसर पर नगर वन बड़वानी तथा विधिक सेवा प्राधिकरण बड़वानी के संयुक्त तत्वाधान में पंचायत योजना के तहत वृक्षारोपण किया गया। नगर वन बड़वानी तथा पांचेमल के अंतर्गत भी वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत श्रमदान कर वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर बड़वानी, DFO बड़वानी तथा सेंधवा सहित अधिकारीगण, सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस संबंध में बड़वानी कलेक्टर जयती सिंह ने बताया कि
2: हमारे जिले में भी इसी क्रम में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिला मुख्यालय नगर वन में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसकी जानकारी आपको है। और दूसरा कार्यक्रम हम लोग पांचसेमल जनपद में आयोजित कर रहे हैं, जिसमें पर्यावरण दिवस का संदेश देने के लिए हम लोग श्रमदान और गड्ढे खोदना और वृक्षारोपण इत्यादि का काम करेंगे।
1: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बड़वानी से मैं शिवपाल सिंह सिसोदिया।
0: हमारी अगली खबर है बुरहानपुर जिले से, जहां विश्व पर्यावरण दिवस के तहत साप्ताहिक अभियान की शुरुआत की गई। नेहरू नगर स्थित सद्भावना मंडपम परिसर में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। ज्यादा जानकारी दे रहे बुरहानपुर से हमारे संवाददाता गणेश कुमार बाविस्कर।
3: विश्व पर्यावरण दिवस के तहत बुरहानपुर जिले में साप्ताहिक अभियान शुरू है। नेहरू नगर स्थित सद्भावना मंडपम परिसर में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान जामुन, त्रिवेणी, आम, नीम, गुड़हल, अशोक और पीपल सहित विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए तथा हरियाली बढ़ाने का संकल्प लिया गया। विधायक अर्चना चिटनिस ने कहा कि वृक्ष पर्यावरण संतुलन और भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का आधार है तथा नागरिकों से पौधारोपण के साथ पौधों के संरक्षण का आह्वान किया गया। महापौर माधुरी पटेल ने वर्षा जल संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए समाज की सहभागिता को जरूरी बताया। कलेक्टर हर्ष सिंह ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक दिन का अभियान नहीं बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी है, जिसके लिए निरंतर प्रयास आवश्यक है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बुरहानपुर से गणेश कुमार बाविस्कर।
0: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी अंतिम खबर है अशोकनगर जिले से, जहां लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जन्मदिवस पर और कार्यक्रमों में पुरस्कार के रूप में पौधे दिए जा रहे हैं तथा उन्हें रोपने और संरक्षित करने का संकल्प लिया जा रहा है। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं अशोकनगर से हमारे संवाददाता डॉक्टर नीरज शुक्ला।
4: अशोकनगर जिले में लोग पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशील हो गए हैं। शासन स्तर पर पर्यावरण को बचाने के कार्य किए जा रहे हैं। शासन द्वारा योजना बनाकर जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जल संरक्षण करने को लेकर जल संरचना बनाने तथा बहते हुए पानी को रोकने के प्रयास मानसून आने से पूर्व कर लिए गए हैं। वहीं कई सामाजिक संस्थाएं इस पर कार्य कर रही हैं तथा पौधरोपण करने के उपरांत उसके संरक्षण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। विगत दिनों विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अशोकनगर कलेक्टर साकेत मालवी के नेतृत्व में कई पंचायतों में पौधरोपण किया गया। जिले में लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जन्म दिवस पर और कार्यक्रमों में पुरस्कार वितरण पर पुरस्कार के रूप में पौधे दिए जा रहे हैं तथा उन्हें रोपने और संरक्षित करने का संकल्प लिया जा रहा है। अशोकनगर से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए डॉक्टर नीरज शुक्ला की रिपोर्ट।
0: तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। दीजिए अनुमति, नमस्कार।

0: शाम के 7 बजने वाले हैं। अब हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर, लेफ्टिनेंट कर्नल नीतीश भारती शुक्ला, मेजर आदित्य प्रताप सिंह, इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और रामेश्वर दुर्गा देशमुख को शौर्य चक्र से सम्मानित

0: किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना है तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा।
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज देशभर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव को कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खन्नूजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा ने कहा है कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायालय की खंडपीठ ने याचिका पर केंद्र और सीबीएसई से जवाब मांगा है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 719 अंक गिरकर 73,524 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 244 अंक की गिरावट के साथ 23,123 पर आ गया। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। President Draupadi Murmu today conferred gallantry awards to the personnel of the Armed Forces, Central Armed Police Forces and State and Union Territory Police. The awards were conferred during the Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Lieutenant Commander Suraj Parashar, Lieutenant Colonel Nitish Bharti Shukla, Major Aditya Pratap Singh, Inspector Lakshman Kewat and Rameshwar Durga Deshmukh were awarded Shaurya Chakra. Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra

0: बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे।
1: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
2: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री।
1: चलो
3: कहाँ
1: एडमिशन कराने,
2: खाता हुआ एक्टिव।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज रक्षा अलंकरण समारोह में प्रदान किए वीरता पुरस्कार। इंदौर में कल से शुरू होगा ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और कृषि मंत्रियों का सम्मेलन। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर कल से देश भर में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन। और प्रदेश से राज्यसभा की तीसरी सीट के लिए बीजेपी के महेश केवट और कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन ने दाखिल किया नामांकन। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए, जिसके तहत लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पाराशर, लेफ्टिनेंट कर्नल नीतीश भारती शुक्ला, मेजर आदित्य प्रताप सिंह, इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और रामेश्वर दुर्गा देशमुख को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठकें इंदौर में कल से शुरू होंगी, जो 13 जून तक चलेंगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में जानकारी दी कि खाद्य हानि और अपव्यय आज पूरी दुनिया के सामने एक गंभीर चुनौती है, जिससे निपटने के प्रयासों समेत कई अन्य विषयों पर इस सम्मेलन में चर्चा की जाएगी।
7: खाद्य हानि और अपव्यय, जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से 1 अरब टन तक खाद्यान्न बर्बाद हो जाता है, उस पर एक चिंता का विषय है। इस पर चर्चा होगी, इसको कैसे रोकें। छोटे किसान अगर फायदे की खेती करे, अनाज के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, मछली पालन, ये आय बढ़ाने के लिए वैकल्पिक उपायों पर भी विचार करना पड़ेगा। और फूड स्टोरेज, खाद्य भंडारण की व्यवस्था कैसे सुधारें ताकि सुरक्षित रहे फूड। इसमें जो देश अलग अलग प्रयास कर रहे हैं, आपस में अपने अनुभव भी साझा करेंगे और विचार विमर्श भी करेंगे।
6: आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था और 1956 में इसे आकाशवाणी नाम दिया गया। पेश है एक रिपोर्ट।
8: आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश के 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए विश्व के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। अमन यादव के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
6: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कल से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर देश भर में विशेष कार्यक्रम शुरू करेगा। इसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और अच्छी गुणवत्ता वाली प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर प्रदेश के सभी जिलों में भी विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश से राज्यसभा की तीसरी सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा घोषित उम्मीदवार मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश केवट और इसी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। भाजपा के 2 उम्मीदवार तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल शनिवार को पहले ही राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित होकर भारत में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। सरकार के पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों पर पेश है एक रिपोर्ट।
9: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2004

0: 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
1: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
0: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
2: हमने जो पौधा लगाया है उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं, ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
0: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि ईंधन की निर्बाध आपूर्ति और ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। वहीं रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अर्पणा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किए गए देशव्यापी टीकाकरण अभियान में मध्य प्रदेश शीर्ष राज्यों में शामिल हो गया है। उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में 7,63,000 से अधिक पात्र बालिकाओं का सफलतापूर्वक एचपीवी टीकाकरण किया जा चुका है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश के कई जिलों में प्री मानसूनी गतिविधियां जोर पकड़ चुकी हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में प्रदेश के ग्वालियर, सागर, शहडोल, जबलपुर, नर्मदापुरम, इंदौर और भोपाल संभागों के कई जिलों में आंधी, गरज चमक और बारिश का अलर्ट जारी किया है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि प्रदेश में मानसून 15 से 18 जून के बीच प्रवेश कर सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश के 1,00,000 से अधिक संविदा अधिकारी और कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी। वित्त विभाग ने आज इसके आदेश जारी कर दिए, जिसके तहत 1 अप्रैल 2026 से उनके पारिश्रमिक में 4.46% की वृद्धि लागू होगी। नीमच में 11 जून को ITI पंजीयन मेला एवं करियर काउंसलिंग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सीहोर के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में कल युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। सतना कलेक्टर ने आज CM हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों सहित विभागीय कार्यों की समीक्षा में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अमर शहीद बिरसा मुंडा बलिदान दिवस स्मरणोत्सव के तहत कल शहीद भवन भोपाल में निमाड़ी लोकगीतों की प्रस्तुति दी जाएगी। नर्मदापुरम जिले में जल जीवन मिशन के तहत ग्राम बिछुआ में नल जल योजना का हस्तांतरण ग्राम पंचायत को किया गया। शिवपुरी जिले की समस्त शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में 17 अगस्त 2026 की प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। और बैतूल के सारणी और घोड़ा डोंगरी के पूर्व सैनिकों की बैठक कल सतपुड़ा ताप विद्युत ग्रह सारणी में आयोजित की जाएगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: बड़ी बहू
1: ये तुम्हारे नाम।
2: इतनी भी क्या जल्दी थी?
1: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम
3: और ये
4: मेरी बुढ़िया के नाम।
5: पर दादी
1: हाँ
5: आपके नाम?
6: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
1: शुभ शुभ बोलो
5: क्या

0: आरबीआई कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण कुछ ही देर।
3: हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए, प्रस्तुत है किसानों का कार्यक्रम कृषि जगत।

को है। सो कक्का बोले, कायरे भुनसारे से काया खो करो फार रहो। अभी मोहल्ला वाले जुड़ जाए हैं, जा बायरे से साइकिल धरी सो तनक पहुँच पाँच देना, नहीं तो पानी से धो देना। और सो रामू बोले, कक्का हम तो जा के रहे हते के बेवजह अपन और रखो पानी की बर्बादी नहीं करना है। पानी की हर बूंद बचाओ चाहिए और जा कोशिश करो चाहिए कि पानी बिना फालतू में अपन और ना मैना फेंक वे, कैसे एक एक बूंद से सोई घड़ा भर जात। सो कक्का बोले, बड़ो भारी समझदारी दिखा रहो, बताओ तो कौन सो घड़ा भरने हम बाहरे जावे और भल ले आवे। सो रामू बोले, हे भगवान कक्का तुम्हें को समझावे। उत्तई में बड़े भज्जा बोले, कक्का महासागर अपन औरों से कोसों दूर है, अकेले मौसम और जीवन उन्हीं से जुड़ो। कक्का बोले, हम घड़ा भरवे के काजें महासागर जाने पड़े, समुद्र जाने पर है का, और गांव में रविवारों को समुद्र से काले न देने, और हमने सुनी उतें एन पानी भरू रात, तनक अपन ले भी ले हैं तो का फर्क पड़ जाए है। सो मासब बोले, हमारी सुनो एक बात बताओ, अपन और खेती टाइम पे जोई सोचत कि खेत के टाइम पे बारे सो जावे, सूखा ना पड़वे, बाढ़ ना आवे, सो जो तो सब कछु जब ही संभव हो सकत, जब अपन और गांव को और गांव के आसपास को पानी साफ सुथरो रखें। इसे कहो जो कक्का कि अपनो पर्यावरण भी साफ रहे और फिर बारिश भी टाइम पे होत रहे। अब बताओ कक्का, समझ में आई कि नहीं आई कि पानी अपन को जरूरत के हिसाब से खर्च करना है। सो कक्का बोले, माँ साहब जा बात तो सही कह रहे हैं कि जब गांव को पानी गांव में रहे है, अपने खेत की माटी खेत में रहे है, तो पर्यावरण तो संतुलित रहे है ही, संगे संगे सूखा बाढ़ जैसी मुसीबतों को सामना अपन और को न करने पर है। लो आज से हमाओ नहावो बंद और पानी बचावो शुरू। सो सब इसने बैठे होते हंसन लगे। रामू हमने तो देखो, रामू बोले, हमने तो वहाँ सब पहले कही थी कि इनसे कछु कह बो कछु समझावो, मतलब अपने मूड में पत्थरा मारवे के बराबर है। अब जे नहावो बंद कर दें और दूसरे दिन बीमार हो जाए, कैसे नहावो भी तो जरूरी है। सो कक्का तनक का की खुशोई समझा देने, जब देखो जब दोरो धोत रहती उन्न लत्ता धोत रहती, ऐसे धोती जैसे दूसरे गांव से धोबे ले आई हूँ मैं, संगे संगे घर को कचरा सोई कचरा वारी गाड़ी में डार में। देखो सवेरे ही से आ जा तू गाड़ी वारो, इन चिल्लाउत भी है गाड़ी वारो आ गो घर से कचरा आने कार। सो कक्का बोले, भज्जा मैंने सब कछु सुन लई, जान लई, समझ लई, अबई घरे जाके सबई को समझाए भी देत, संगे संगे तुम जे अपनी नर्सरी से तनक हमें पेड़ पौधे दे दो, सो हम सोई अपने घरे लगा लें, वृक्षारोपण कर लें, हमारे घरे सोई तनक हरियाली से दिखाने लगे। कैसे पेड़ लगाओ, धरती सजाओ, महा

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI

0: के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
2: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
1: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
3: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूँगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुँचते पहुँचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
2: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
4: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: मौसम और जलवायु, यह यूनेस्को का संदेश है। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? आइए हम मौसम और जलवायु के बीच अंतर के बारे में जानते हैं। मौसम होता है रोजमर्रा की स्थिति, जैसे आज बारिश हो रही है या कल धूप निकलेगी। लेकिन जलवायु का दायरा बड़ा होता है, यह 30 सालों में मौसम का सामान्य स्तर होता है। मौसम और जलवायु दोनों को मापने के लिए एक ही उपकरण का उपयोग किया जाता है, तापमान, बारिश, हवा, आर्द्रता और दबाव। लेकिन हम मौसम का अनुमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही लगा सकते हैं, जबकि जलवायु हमें दीर्घकालिक रुझान देखने में मदद करती है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। दुनिया का सबसे पुराना तापमान रिकॉर्ड नेदरलैंड्स में बना, वो भी सन 1700 में।

0: मौसम और जलवायु, यह यूनेस्को का संदेश है। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? आइए हम मौसम और जलवायु के बीच अंतर के बारे में जानते हैं। मौसम होता है रोजमर्रा की स्थिति, जैसे आज बारिश हो रही है या कल धूप निकलेगी। लेकिन जलवायु का दायरा बड़ा होता है, यह 30 सालों में मौसम का सामान्य स्तर होता है। मौसम और जलवायु दोनों को मापने के लिए एक ही उपकरण का उपयोग किया जाता है, तापमान, बारिश, हवा, आर्द्रता और दबाव। लेकिन हम मौसम का अनुमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही लगा सकते हैं, जबकि जलवायु हमें दीर्घकालिक रुझान देखने में मदद करती है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। दुनिया का सबसे पुराना तापमान रिकॉर्ड नेदरलैंड्स में बना, वो भी सन 1700 में।
1: चौपाल पे ही हमारे कक्का और मां साहब ने हेमराज चढ़ार से सुनो जो उमदा लोकगीत और बतकाव करन लगे। बोले, मां साहब तनक जा बताओ कि ई बेरे हम उड़द और मूंग की उन्नत खेती के बारे में सोच रहे थे, अकेले फायदा हुज्जे कि ना हुज्जे तनक जा चिंता सता रही। सो मां साहब बोले, कक्का देखो ऐसा है, जिते मेहनत, लगन, दृढ़ संकल्प और भरोसा होबे उतै पथरा में भगवान दिखान लगत। बताओ सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है? और जहाँ तक हम जाना था तो सुनी तो हमने भी है कि पैदावार ज़्यादा हो तो बीमारी फसलन में तनक कम होती और बाजार में दाम भी उमदा मिलत, संगे संगे मिट्टी की उर्वरता भी बढ़त जात। अगर तुम्हें और ज़्यादा जानकारी चाहने तो हमारे संगे चलो। सो ऐसे हम और पहुँचे डॉक्टर अजय जायसवाल भैया के घर है और उनसे लई उड़द और मूंग की उन्नत खेती के बारे में पूरी जानकारी।
2: किसान भाइयों, राम राम। वर्तमान समय में हमारे किसान भाइयों को उड़द एवं

0: उनकी उन्नत खेती एवं कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं, ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आए हैं डॉक्टर अजय जायसवाल, जो कि वैज्ञानिक हैं प्रक्षेत्र संचालनालय जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में। डॉक्टर अजय जायसवाल, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब। उड़द मूंग की उन्नत खेती की बात करते हैं या उनकी उन्नत किस्मों की बात करते हैं, तो उड़द मूंग का क्या महत्व है वर्तमान खेती में?
1: जैसा कि किसान भाई जानते हैं कि उड़द और मूंग की जो पोषक तत्व की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा इसमें अधिकता होती है। और प्रोटीन लगभग इसमें उड़द में 26% और मूंग में 24% तक पाया जाता है, और कार्बोहाइड्रेट इन दोनों फसलों में लगभग 56% तक होती है।
0: तो जब हम उड़द या मूंग की खेती करते हैं तो ऐसा कौन सा मौसम है या ऋतु कह सकते हैं हम जिसमें खेती करना चाहिए?
1: उड़द और मूंग एक ऐसी फसल है जिसे खरीफ ऋतु और ग्रीष्म ऋतु दोनों में उसका उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन जो मध्य प्रदेश या अपने भारतवर्ष में ये दोनों खरीफ में ज़्यादा उगाई जाती हैं।
0: जी हाँ।
1: और जहाँ पे अगर पानी की व्यवस्था है, किसानों के पास सुविधा है पानी की, जिसमें 4 या 5 पानी दे सकते हो, वहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में भी उत्पादन इसका कर सकते हैं।
0: तो बीज की जब बात करते हैं तो ऐसा कोई बीज की श्रेणी होती है ताकि वो किसान भाई उसको समझ सकें, और किस श्रेणी का बीज किसान भाइयों को प्रयोग करना चाहिए?
1: बीज की श्रेणी की बात करें तो मुख्यतः 3 तरह की इसमें श्रेणियां होती हैं, प्रजनक बीज, उसके बाद आधार बीज एवं प्रमाणित बीज। तो जो बीज उत्पादन में होता है प्रयोग, उसमें केवल प्रजनक बीज और आधार बीज का प्रयोग होता है, लेकिन किसान भाइयों के लिए प्रमाणित बीज का उपयोग करना चाहिए। और इसकी उपलब्धता लगभग अपने मध्य प्रदेश में बीज निगम या अपनी बीज उत्पादक सहकारी समितियां हैं, बहुत सारी अपने मध्य प्रदेश में डेवलप हुई हैं, जो किसान के रूप में ही ग्रुप बना के उनका बीज का उत्पादन किया जाता है। तो उनके माध्यम से ये प्रमुख प्रजातियां जो हैं अपना प्राप्त कर उसका उत्पादन प्राप्त
0: जी हाँ, मतलब प्रमाणित बीज के लिए किसान भाइयों को एक सही स्थान या सही जगह जहाँ पे ऑथेंटिक हो, जहाँ से आपको सही गुणवत्ता का बीज प्राप्त हो, ऐसी जगह से आप पहले से संपर्क कर लें और अपनी खेती के लिए आवश्यकता अनुसार बीज की उपलब्धता को सुनिश्चित कर लें। जी हाँ। अब हमने बीज प्राप्त कर लिया, बीज प्राप्त कर लिया हमारे किसान भाई, लेकिन बुआई के पहले क्या बीजोपचार करना चाहिए?
1: बिल्कुल, बीजोपचार एक महत्वपूर्ण अंग है। अगर उसका उत्पादन करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले उसको बोने के पहले बीजोपचार अवश्य कर लें। उसके लिए 10 ग्राम टाइकोडर्मा, ये 1 किलोग्राम बीज के लिए उपयुक्त होता है, और इसको उपचारित करने के पश्चात राइजोबियम जो 250 ग्राम का पैकेट आता है वो लगभग 10 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होता है। उसको गुड़ के साथ मिला लें 0.5 लीटर पानी में, उसके बाद 2 घंटे तक छाया में उसको सुखाने के पश्चात तब बुआई करें, तो उससे बीज जनित रोग जो उकटा रोग है या फिर जड़ गलन रोग है उससे मुक्ति मिल जाएगी।
0: डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें इनकी महत्वपूर्ण किस्मों के बारे में, तो ऐसी कौन कौन सी उड़द की किस्म है जो हमारे किसान भाइयों को अच्छा उत्पादन देती है, उनकी अवधि कम से कम हो और अच्छा लाभ प्राप्त करती है?
1: उड़द और मूंग में बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो अभी मध्य प्रदेश या पूरे भारतवर्ष में उनका उत्पादन किया जा रहा है। और जैसे उड़द की बात करें तो उड़द में T9 एक प्रजाति है जो कि दोनों मौसम में आप जैसे खरीफ ऋतु या फिर आप समर सीजन में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। और दूसरी एक प्रजाति है IPU 2-43, इसका उपयोग भी दोनों सीजन में आप कर सकते हैं। और तीसरी प्रजाति है आपका अभी जो 10 साल के अंदर की प्रजातियां हैं, जैसे इंदिरा उड़द वन जो कृषि विश्वविद्यालय रायपुर से निकली हुई है, तो इसका भी उपयोग आप कर सकते हैं। और ये लगभग प्रजातियां 65 से 70 के दिनों में पक जाती हैं, और जिसका उत्पादन भी लगभग मान के चले कि 15 से 18 कुंटल पर हेक्टेयर तक इसका उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।
0: अच्छा।
1: और मूंग की बात करें
0: जी हाँ।
1: मूंग में एक अपनी प्रजाति है PDM 139, जिसको सम्राट भी कहते हैं। उस प्रजाति का एक महत्वपूर्ण बात है कि वो एक साथ मेच्योर होती है, सिंक्रोनस मेच्योरिटी उसमें आती है। तो जो किसान भाई बहुत सी ऐसी प्रजातियां देखे होंगे जो एक साथ मेच्योर नहीं होती हैं, लेकिन PDM-139 या शिखा और विराट करके एक प्रजाति है जो अभी अंदर 10 साल के अंदर की प्रजातियां हैं, उनका भी उत्पादन ले सकते हैं और काफ़ी अच्छा उत्पादन है, लगभग 15 से 17 क्विंटल या 18 क्विंटल का उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, ये तीनों जो आपने मूंग की किस्में बताई, इनकी अवधि क्या है, लगभग कितने दिनों में पक जाती हैं?
1: ये लगभग जो शिखा वेराइटी है सर, ये लगभग 70 दिनों में इसका उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। जो विराट है ये लगभग 65 से 70 दिन के बीच में आ जाती है।
0: और PDM जो
1: PDM-139 ये हालांकि पुरानी प्रजाति है, लेकिन किसानों के बीच में बहुत ही ज़्यादा ये प्रचलित है, क्योंकि इसमें वही इसकी एक खास बात है कि ये एक साथ पक जाती है।
0: जी हाँ,
1: तो ये लगभग ये भी 70 दिन में इसकी उपज प्राप्त की जा सकती
0: है। जी अहमद, तो ये तो बहुत अच्छी किस्में हैं, अच्छा उत्पादन भी देती हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम इनका अधिक उत्पादन लेते हैं तो ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें जिनका ध्यान रखें तो अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सकता है?
1: डॉक्टर साहब, जैसे उड़द और मूंग की प्रजाति हैं, ये थोड़ी सी सेंसिटिव क्रॉप होती है, मतलब बारिश के प्रति। तो अगर खरीफ में अगर इसका उत्पादन ले रहे हैं तो सबसे पहली बात है कि इसकी जल निकास की व्यवस्था अवश्य करें। सिंचाई से ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसका जल निकास।
0: जी
1: तो सिंचाई तो उसको खरीफ के मौसम में लगभग नहीं देनी पड़ती है, लेकिन अगर दो अवस्था ऐसी है जैसे आपका फूल बनने की अवस्था में अगर उसको सिंचाई नहीं मिली तो उसका उत्पादन घट सकता है।
0: जी
1: हाँ, तो सबसे पहली बात उसका ध्यान रखें कि सिंचाई में फूल बनते वक्त सिंचाई अवश्य हो जाए। अगर बारिश है तो उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर पानी नहीं मिल पाता है तो आप उसकी सिंचाई फूल की अवस्था पे करें। दूसरा, जब उसका फलियां बनती हैं उसमें, तो उस समय ये पानी देना आवश्यक होता है, जिससे कि अगर समय से पानी उसको फूल बनते वक्त
0: मतलब
1: फल बनते वक्त अगर
0: अवस्था या मिल्किंग स्टेज को कहते हैं, या उस वक्त दाने में नमी नहीं बना होना चाहिए।
1: हाँ,
0: जी हाँ, ये तो बहुत अच्छी जानकारी है हमारे किसान भाई, ध्यान रखें ये दो विशेष अवस्था है, फूल आने के समय और जब दाने आपके दूध बन रहा है दानों में, उस समय पानी की कमी नहीं होना चाहिए। अगर हम बुआई की समय की बात करें या बीज दर की बात करें तो ये हमारे किसान भाइयों को जानकारी होना चाहिए, तो इस विषय में थोड़ा बताएं।
1: इसकी जो उड़द और मूंग का लगभग बीज की मात्रा लगभग बराबर होती है, तो 25 से 30 किलोग्राम ये प्रति हेक्टेयर इसका बीज की जो बीज दर है वो रख सकते हैं। लेकिन जब समर का सीजन होता है सर, तो उसमें लगभग 30 के ऊपर भी जा सकते हैं, लगभग 35 किलोग्राम के आसपास 2.5 एकड़ में।
0: जी हाँ, और बुआई का समय सबसे महत्वपूर्ण समय
1: बुआई का समय, जैसे आप खरीफ सीजन में आप इसका बुआई करना चाहते हैं तो जून के तीसरे पखवाड़े से लेके जुलाई के प्रथम सप्ताह तक
0: जी हाँ,
1: इसकी बुआई कर सकते हैं।
0: मतलब अभी जो जून और जुलाई का समय है ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे किसान भाइयों को उड़द और मूंग की खेती करने के लिए,
1: मानसून के पहले इसकी बुआई
0: जी हाँ हो जाना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी बेहतरीन जानकारी हमारे उड़द और मूंग की जो खेती है या उसकी उन्नत किस्में हैं उसके विषय में हमारे किसान भाइयों को दी। तो हमारे किसान भाई, आपको आज हमारे डॉक्टर अजय जायसवाल जी ने जानकारी दी उड़द मूंग की उन्नत खेती एवं उन्नत किस्मों के बारे में। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: कृषि विश्वविद्यालय से खेतों तक के अंतर्गत डॉक्टर अजय जायसवाल भैया से मासा और कक्का ने लाई उड़द और मूंग की उन्नत खेती विषय पे पूरी जानकारी। फिर कक्का बोले, मासा चलो घर है, चलो होता ही बैठ के बढ़िया सत्तू अत्तू खज्जो के बाद ही जाइयो तुम अपने घर है।
3: बदलो बदलो आदत बदलो,
4: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
3: बदलो बदलो आदत बदलो, अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
6: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
5: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
7: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूँगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुंचते पहुंचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
6: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
8: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

घरे पहुंच के कक्का ने इकबाल को टेरू और कही के जाओ बढ़िया सो सत्तू ले आओ। और उ में सुनो शक्कर न डारी हो कि जंगा गोड़ डार दज चुका है, माँ साहब को शक्कर अच्छी नहीं लगा था। सो माँ साहब बोले कक्का तुम इकबाल से दिन भरे काम करा उतरा तनक पढ़ा लिखा देव करे। कक्का बोले भैया देखो हम पर गए किसान आदमी, बस खाबे के काजे ही पैसा जोर पाऊत। सो माँ साहब बोले तुम्हारा लड़का है होशियार, सो पढ़ाई कराओ। अब तो देखो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों की सहायता शासन भी कर रहे। अजय की बात यह बता रहा है, हमारे दोस्त ने हमें अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के बारे में बताओ तो इमें देखो का होत कि कई बेरे पैसों की कमी की वजह से या तो अपन और बच्चों को स्कूल नहीं पहुँचाऊत या फिर बीच में पढ़ाई छुड़वा देत। एक एक आज जाई योजना शुरू करी गई, इमें बच्चों की फीस ड्रेस किताबें सवाई कछु मुफ्त रहती हैं, मानो पंजी खर्च नहीं होत। सो कक्का बोले माँ साहब तुमने उमदा बात बताई है, हमें इससे ज़्यादा कछु चाहने ही नहीं है। हम कह रहे हैं कि पढ़ लिख कह रहे हैं इकबाल आप ही की जैसो मास्टर बन जावे, इससे ज़्यादा हमें का चाहना है। आ जाए से हम एक काज पढ़वे पहुँचाऊ थे, बाल बच्चा पढ़ लिख जावे अपनों कमाउन खान लग में, अपन औरों को का है बस इसे अपन औरों को तो इखो सोने पे सुहागा मान लो जो काम हो जाए है। सो भज्जा मास्टर बोले देखो कक्का जो सब कछु पढ़ाई करा के ही संभव हो सका, तुम सोचो कि तुम सत्तू बनवा लो खेत पे भेज दो या फिर उसे दुनिया भरे के काम करा लो फिर सोचो कि मास्टर बन जाए, ऐसा नहीं होत। पहले शिक्षा उके बाद तुम्हारे घर के सबरे काम, सबरे बाल बच्चे पढ़वें लिखवें कोनो अनपढ़ रह ही ना जावे। और शासन की योजना यही कि काजें तो आती हैं कि सब जने उपयोग करो अपना भविष्य बनाओ, एक ही काजें शुरू भी करी गई अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना। कक्का एक बात और जान लियो कि शिक्षा को दीप जब घर घर में जल है अज्ञानता को अंधियारो अपने आप मिट जाए है। योजनाओं को लाभ जो भी ले है वही बच्चा अपने सपने को सच कर दिखे है। शिक्षा और जल दो होत हैं अनमोल, इन्हीं से होत है जीवन अपनो गोलमोल।

डॉक्टर उमा शंकर तिवारी भैया से सुनो बनना जो उम्दा लोकगीत। और भैया रो देखो, शिक्षित हो बो जरूरी है, कैसे मनुष्य के जीवन को आधार कहा उठे। शिक्षा हमें ज्ञान समझ और सही गलत की पहचान भी करा उठे। अकेले कही गई के पढ़ लिखवो जरूरी है, उके संगे संगे संस्कार और अपने माता पिता के प्रति सम्मान जो सब कछु भी अपन को आओ चाहिए। कैसे माता पिता अपने जीवन के प्रथम गुरु कहावत हैं, वे हमें जन्म देत, हमें पालत पोसत हैं और हमारे एक अच्छे भविष्य के लाने अपने जीवन के जाने कितने सुखमय पलों को त्याग कर देत। यही से अपन सबको सबरे बाल बच्चों को जो कर्तव्य होत है कि वे अपने माता पिता को, अपने कक्का काकी हरों को, संगे संगे अपने बड़ों को आदर करवें, उनकी सेवा करवें। कैसे शिक्षा हमें विनम्र, अनुशासित और कर्तव्य निष्ठा को पाठ पढ़ाऊत है। एक शिक्षित व्यक्ति अपने माता पिता की भावनाओं को समझत है और उनकी सहायता करवे को प्रयास भी करत, संगे संगे घर के कार्यों में सहयोग करत, उनकी बातों को मान रखत, सम्मान रखत और उनकी देखभाल भी करत। और भैया रो देखो, जैसो आज को टाइम चल रहा हो, सो सभी जने अपने अपने कामों में व्यस्त रहत। अकेले अब अपने माता पिता तो सोई बुजुर्ग हो रहे, हमें उनके लाने टाइम निकालो चाहिए, उनकी सेवा करो चाहिए और उनके प्रति हमारा सम्मान रखो चाहिए। कैसे जाई हमारी संस्कृति की, संस्कारों की पहचान होत है। कैसे जब हम हल्के हते सो उन औरों ने अपनो टाइम हमें दाओ, अब अपन औरों की बारी है कि उनने जो हमें दाओ उतनों तो हम उन्हें वापस कर नहीं सकत। कम से कम हम जितनों कर सकत वो इतनों है कि हम अपनों थोड़ी सो टाइम निकाल के अपने माता पिता को देवें। सबेरे से शाम के जौन बिरिया परोक लो टाइम है, अपने माता पिता लो बैठो, उनसे तनक बातें करो, उनके दुख दर्द बांटो और उनसे अपने दिन भरे की बातें करो। अपने माता पिता को बस इतना ही जाने। कैसे शिक्षा के संगे संस्कार रखो, माता पिता को मान रखो, जिनके दम पे देखी हमने दुनिया उनको सदा सम्मान रखो।

तो किसान भैया रहो अब अपन और सुन रहे थे भवानी दास अहरवार भैया को गाव भाव जोम द लोकगीत। और देखो अब हो गई है चलवे की टेम। सो सबई भैया रहो के काजे आकांक्षा बिन्नू की राम राम। जय जवान जय किसान।

अभी आप सुन रहे थे कृषि जगत, हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी भोपाल से सुर्खियों में।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष के अंतर्गत किसान सशक्तिकरण का प्रसारण।
1: This is Akashwani. In the special series, now we bring you a discussion on 12 years of the Modi government, initiatives for empowering farmers and achievements in agriculture sector. Participants are Binod Anand, member of the High Power Committee on MSP and Agricultural Reforms, Government of India, KV Prasad and Prabhudat Mishra, senior journalists. Moderator is Sonu Sood.
2: Ye Akashwani hai. Prastut hai vishesh shrinkhla. Iske antargat aaj suniye. मोदी सरकार के 12 साल किसानों के सशक्तिकरण और कृषि क्षेत्र के उत्थान के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत सरकार में एमएसपी और कृषि सुधारों पर उच्च स्तरीय समिति के सदस्य विनोद आनंद और वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद व प्रभुदत्त मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
3: Over the past 12 years, empowering India's Andatas, agricultural policy has widened its scope beyond welfare support to focus on structural and sustainable reforms which have strengthened productivity, income security, market access, modern infrastructure,

0: 60% of population is in this sector. It is showing contribution, and the farmers of this country have worked hard through the ages to make India food secure. In fact, just recently I was talking to High Commissioner of African Nation, South Africa. He was mentioning in the context of the India-Africa Forum Summit, which of course could not help place, that the entire India, the kind of food basket India has, that not only it produces for its own 1.4 billion, but also exports. So he said it's much more what the population of Africa, I mean, so they said we're looking to countries like India, which have, so this tells you the long journey our farmers have made in this country, and in the last decade, how much of extra effort is being put in by the government or across the pillars Mr. Anand mentioned in particular, because they are multi-pronged. As far as you said, what are the three takeaways? I mean, there could be many for different people, but I think some of the logistical issues that have been problematic for this country is to ensure irrigation. We are largely still rain-fed irrigation. So the government has been addressing this in multiple, including micro-irrigation. And one of the things is per drop more crop, which is talking of micro-irrigation drip. And this has been, again, going on for almost a little over two decades, because I remember way back in the year 2000, when Mr. Atal Bihari Vajpayee was the Prime Minister, he sent a mission under then, I think, Mr. Chandrababu Naidu to work on this. So it has been a constant work in progress that there. I think that one of the technological-driven aspect is the Namo Drone DV, which is now using modern technology, as Mr. Anand mentioned about ENAM, using the technology for market access. Yes. Now you're using the drone technology by training women to operate as a pesticides, help them in modern farming.
1: Yes.
0: Lowering the cost, because agriculture, we know, remains a labor-intensive sector.
1: Yes.
0: And increasingly, the hands get costly, because when you employ more people, obviously the farm cost goes. So government is mix and match kind of a thing, how to use technology and how to bring a better thing. So I think these are a couple of issues, but I also believe the larger aspect is the Agriculture Infrastructure Fund, which has a massive outlay to catalyze the creation of post-harvest management infrastructure, cold chains, community farming. So these are still progresses, but these are sectoral reforms, I mean, reforms within the sector that the government is looking at the large, the problems that have been affecting of this particular sector.
1: ओके मिस्टर मिश्रा, आपके पास आते हैं. जो मैंने अभी मिस्टर आनंद, मिस्टर प्रसाद से पूछा, वही प्रश्न मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि पिछले 12 वर्षों में जिस तरह से किसानों का सशक्तिकरण हुआ है, हमारा जो कृषि क्षेत्र है उसका मजबूतीकरण हुआ है, जो हम देख रहे हैं प्रोडक्शन में, प्रोडक्टिविटी फिगर्स में, आप हमें बता सकते हैं कि कौन से आप ऐसे प्रमुख 2-3 इनिशिएटिव्स जिनको आप सबसे महत्वपूर्ण आते हैं, जो उठाए गए हैं इस दौरान एग्रीकल्चरल पॉलिसी के डायरेक्शन?
2: एक तो सबसे बड़ा मुझे लगता है जो 12 साल में सरकार ने उठाया था, वो है एमएसपी का फिक्सेशन. पहले एमएसपी का फिक्सेशन सारे फैक्टर्स को आधार करके लिया जाता था, जिसमें इंटरनेशनल प्राइसेस क्या है, डोमेस्टिक प्राइसेस क्या है, उसमें इन्फ्लेशन कितना है, उसका डिमांड सप्लाई सब कुछ देखा जाता था. आज भी वही फैक्टर जरूर है, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया 2018 में कि एमएसपी जो होगा वो मिनिमम 50% प्रॉफिट बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा. और 2018 से पहले आप देख लीजिए, बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे जो लोग बताते थे कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा गवर्नमेंट फिक्स कर ही नहीं सकता
1: जी,
2: क्योंकि पूरा बोझ सरकार के ऊपर आएगा, सरकार को खरीदना पड़ेगा. लेकिन 2018 में जब लिया, आज देख लीजिए पॉसिबल है, सबके सामने 8 साल हो गया, सरकार हर साल मिनिमम 50% इंश्योर करके एमएसपी डिक्लेयर कर रही है. शुरुआत में जरूर जो मार्केट प्राइस था थोड़ा सा ज्यादा एमएसपी से नीचे बिका, लेकिन आज जो देखिएगा, ये खरीफ और रबी सीजन गया है, इसमें जो एमएसपी से नीचे बिक भी रहा है वो ज्यादा डिफरेंस नहीं है. पहले तो 30% तक शुरुआत में थी, क्योंकि मार्केट प्राइस को एडजस्ट होने में टाइम लगता है, लेकिन आज मार्केट प्राइस भी एडजस्ट हो चुका है, फार्मर को बेटर प्राइस मिला है, उसमें कोई दो राय नहीं है. कुछ कुछ चीजों में एमएसपी नहीं मिल रहा है, ज्यादातर इस साल की बात करूं तो कई सारे फसल में एमएसपी से ऊपर मिला है. और मस्टर्ड का देख लीजिए, अभी मस्टर्ड का सीजन है, एमएसपी से ऊपर है. चना का देख लीजिए, चना ऊपर है. व्हीट का तो सरकार खुद ही 40-45% प्रोक्योरमेंट कर रही है एमएसपी पे, तो मार्केट प्राइस हमेशा ऊपर रहता है. इस साल कुछ कुछ स्टेट में थोड़ा थोड़ा, मतलब 50-100 रुपये नीचे बिकने की रिपोर्ट आई थी, लेकिन आज वहाँ पे भी ऊपर आ गया है प्राइस, मार्केट प्राइस. तो लगभग सारे जो रवि क्रॉप्स है वो एमएसपी से ऊपर है या एमएसपी के बराबर के पोजीशन में है,
1: तो एक फेयर प्राइस मिल रहा है फार्मर्स को।
2: बिल्कुल, बढ़ोतरी हुई है, काफी अच्छी बढ़ोतरी, क्योंकि 50% जब A2 प्लस FL के आधार पे दिए हैं वो एक बहुत बड़ा कदम था उस समय की देखा जाएगा तो जी। और उसके अलावा जो मैं गिनाऊंगा तो इन्होंने फसल बीमा योजना शुरू की है, इन्होंने अभी 2 साल पहले एडिबल ऑयल मिशन लॉन्च किया, पल्सेस मिशन लॉन्च किए और बहुत सारे चीज़ें इन्होंने रिफॉर्म करने की कोशिश की है। एक रिफॉर्म जरूर है कि इन्होंने कोशिश किए थे जो तीन फार्म लॉज लेके आए थे कृषि कानून, जो कहीं ना कहीं वो सफल नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने उस टाइम भी फार्मर को साथ लेते हुए, ऐसा नहीं है कि हम ले आए तो उसको करना है, फार्मर ने प्रोटेस्ट किया, नहीं माने तो फार्मर जबरदस्ती थोप नहीं दिया, जो भी चीजें हैं फार्मर जो चीज यस करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सक्सेस तभी होगा जब आप फार्मर को साथ लेके चलेंगे
1: जी,
2: कोई भी स्कीम हो।
1: मिस्टर विनोद आनंद, कमिंग टू यू, आप जिस कमिटी के मेंबर हैं सरकार की, उसमें एमएसपी पर फैसले होते हैं, उस पर बातचीत होती है, थोड़ा आप हमें बता सकते हैं कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो टूल है सरकार के पास, इसका ज्यादा से ज्यादा यूज जो किया गया है और इन 12 वर्षों में किस तरह से आर्थिक रूप से सशक्त किया गया है किसानों को एमएसपी के माध्यम से, और बाकी भी जो आर्थिक सशक्तिकरण के जो पहलू है उन पर भी हम आपका विचार चाहेंगे।
3: जी देखिए, 3.5 गुना वृद्धि हुई है टोटल एमएसपी वैल्यू में, अर्थात मेरे कहने का अर्थ यह है कि जहां 2004 से 14 तक 7.4 लाख करोड़ रुपए खर्च होते थे, 2014-26 तक वो 26.3 लाख करोड़ रुपए हो गए। तो मैं फिर से आपको बता दूं कि 10 वर्षों में जो 2014 के पहले जहां 7.4 लाख करोड़ हुए थे, 26.3 यानी कि लगभग 3.5 गुना जो है वो खर्च सरकार ने एमएसपी के ऊपर किया है। मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा कि ये खर्च हुआ कहां, किस तरफ हुआ है। प्रधानमंत्री जी का सपना था कि हम स्वस्थ नेशन बने, न्यूट्रिएंट हमारा अच्छा हो, एनवायरमेंटल चैलेंजेज हैं उसको हम मीट कर पाए, इसलिए जैसे मैं आप मोटा अनाज जो है जैसे ज्वार है और बाजरा है, आपको जान के आश्चर्य होगा 163% यानी 163% 1530 रुपए जो ज्वार की एमएसपी थी अब वो 4023 रुपए हो गई। ये दुनिया के किसी भी कोने में इस प्रकार से वृद्धि नहीं हुई है। सोयाबीन के ऊपर भी 123%, मतलब आप जिसमें भी देखेंगे अमूनन 5 से 10 फसलें ऐसी है जो खरीफ के मार्केटिंग सीजन में जिसमें 100% से भी ज्यादा खर्च हुआ है, 100% ज्यादा वृद्धि हुई है। तो ये वृद्धि अपने आप में दर्शाती है कि एमएसपी को लेकर के और किसानों को समर्थन देने में और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की सिर्फ बात नहीं की जा रही बल्कि उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य कहीं कहीं पे 179% बढ़ाया गया जिससे वो उन फसलों के प्रति जा सके। आपको यह जान के आश्चर्य होगा इसके साथ साथ जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है, जैसे अभी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी, किसानों के लिए जो सबसे बड़ा इंफ्रा होता है वो उनकी क्रेडिट की व्यवस्था होती है
1: जी।
3: क्रेडिट की व्यवस्था में केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड के जो अकाउंट्स थे वो 6.4 करोड़ थे, लगभग 6.5 लाख करोड़ के आसपास किसानों के पास केसीसी अकाउंट है। आज की तारीख में ये 10.2 लाख करोड़ है यानी कि लगभग 2 गुना हो गया, लगभग 90% इसमें इजाफा हुआ है। तो ये अपने आप में कल्टीवेशन एक्सपेंसेस में खास करके पोस्ट हार्वेस्ट रिक्वायरमेंट और मार्केटिंग में इसमें अमूलचूल परिवर्तन हुई है। और जहां तक कृषि की बजट की बात है कि जितना बजट पहले हुआ करता था उतना तो आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी किसानों को डीबीटी कर देते हैं, हमारे पास डीबीटी का बजट ही 70,000 करोड़ रुपए का है। तो कृषि में जो ये इन्वेस्टमेंट हुआ है इससे यह दर्शाता है कि ये सरकार पूरी की पूरी विलेज लेड और फार्मर सेंट्रिक डेवलपमेंट के लिए ही बनी थी और इसी आधार पे ये सारा कुछ हो रहा है। और उसके साथ साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेज हुए खास करके कोऑपरेशन मिनिस्ट्री को बनने के बाद और उसमें जो पंचायतों में 2.5 लाख वेयर हाउसेज बनाने की बात, आज तक इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया में वेयर हाउसिंग में कहीं भी किसी भी समय में भी कभी नहीं हुआ जितना अभी हो रहा है। तो सारे पैक्सों को वेयर हाउस में कन्वर्ट करना और वेयर हाउस वो नीली छत और पीली दीवार वाले नहीं हो करके स्मार्ट वेयर हाउसेस कैसे हो जो ब्लॉकचेन से लिंक्ड हैं, एवरी ग्रेन इज ट्रेसेबल, ऐसा सिस्टम बनाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो फूड सिक्योरिटी के जो ऑब्जेक्टिव थे वो तो पूरे के पूरे हो रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है उसको हाँ। लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल रिजिलियंस एग्रीकल्चर के लिए और खास करके जो मार्केट एक्सेस जो पहले नहीं था एमएसपी को कैसे ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव बनाई जाए, इसके लिए 26 लोगों की कमेटी बनाई गई जिसका मैं भी सदस्य हूं, जो 5 इसमें सचिव महोदय भी इसके सदस्य हैं। तो इतनी बड़ी कमेटी के द्वारा जो कुछ भी रिकमेंडेशन पिछले 4 वर्षों से जा रहा है उसका अक्षरशः पालन किया जा रहा है, और आप आमूलचूल परिवर्तन देख रहे हैं कि किस

0: कार सीखना सिर्फ केसीसी अकाउंट और प्रोक्यूरमेंट में और एमएसपी में एक गुणोत्तर वृद्धि में, बल्कि जो सबसे ज्यादा सुविधाएं लोगों को मिल रही है वो डीबीटी हो या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, इन सब में एक आमूलचूल परिवर्तन किया जा रहा है। और खास करके हम बड़े सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसी दुनिया के तरफ बढ़ रहे हैं जहां हमारा किसान सिर्फ बीज बोना और उगाना नहीं जानता था,
1: जी
0: बल्कि वो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर की जो पूरी एक वैल्यू चेन थी, उस पूरे मूल्य श्रृंखला में किसान किस प्रकार से कहाँ खड़ा है और कैसे वो किसान उसका हिस्सेदार हो, प्रत्येक मूल्य श्रृंखला के हर भाग में ऐसी
1: हाँ
0: नीति बनाई जा रही है और उसको एग्जीक्यूट भी किया जा रहा है।
1: सो मिस्टर प्रसाद, जैसा कि मिस्टर प्रधान ने बहुत ही खूबसूरती से समझाया कि जो एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन है उसके हर कदम पर जो सरकार है वो समर्थन प्रोवाइड कर रही है, एक कोलैबोरेटिव वे में जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो हमारे फार्मर्स हैं उनको सशक्त किया जा रहा है। डीबीटी की उन्होंने बात की, ये दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा डीबीटी इनिशिएटिव यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इनिशिएटिव माना जा रहा है किसानों के लिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसके बारे में बता सकते हैं कि इसका जो शुरुआत होती है जब एक क्रॉप साइकिल की, क्या इसका महत्व है किसानों के लिए और जिस लेवल पर इसका जो यूज हो रहा है, 9.44 करोड़ फैमिलीज से ज्यादा बेनिफिट करे हैं इसमें और 4.2 लाख करोड़ रुपीज से ज्यादा डिसबर्स किए जा चुके हैं 22 इंस्टॉलमेंट्स में, इसका जमीनी तौर पर जो किसान है उनके लिए क्या महत्व है?
2: सुनो जी, हम सब जानते हैं कि भारत में किसान जब भी परेशान रहा है और उनकी दिक्कतें बड़ी हैं, तो एक चीज जो सरकार के अलग अलग स्टडीज ने बताया है कि खर्चा सिर्फ किसान और कृषि के काम के लिए नहीं, उनके घर के खर्चे के लिए भी काफी कुछ उनके समस्याएं आती है। तो वो पारंपरिक जो तरीके हैं, गैर पारंपरिक तरीके से वो क्रेडिट पाते थे, यानी कि पैसा लेते थे ब्याज पे, तो काफी परेशानी ज्यादा बढ़ जाती थी। तो छोटा सा इसके लिए एक मदद के लिए कि जैसे आपने साल में 6,000 मिलते हैं, 2,000 के डीबीटी यानी कि सीधा पैसा का हस्तांतरण बैंक अकाउंट में होता है, तो इसमें सबसे बड़ा है कि छोटे खर्चे के लिए किसान को इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, उसके खाते में पैसे हैं,
1: जी
2: अपने रोजमर्रा जिंदगी में छोटी मोटी जो उनके खर्चे हैं वो निकल जाते हैं। तो एक उनको तसल्ली होती है, हर आदमी को मतलब एक सुरक्षा महसूस होता है कि भाई हाँ, मेरे खाते में पैसे हैं, कभी जरूरत हो तो मैं उसको और जैसे आंकड़े आपने बताए हैं, जिस तरह से 2026 तक जब भी बात हुई है तो 9.44 करोड़ किसान
1: जी
2: परिवार को मिला और इसमें 25% से ज्यादा महिलाओं को सीधा साथ इसका बेनिफिट मिल रहा है इसका। तो
1: हाँ
2: ये एक जिसे कहते हैं छोटा कदम है लेकिन महत्वपूर्ण कदम है।
1: और इसी कड़ी में जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है या जो किसान क्रेडिट कार्ड्स हैं, ये सभी जो आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक कड़ी है पूरे जो एक साइकिल होती है एग्रीकल्चरल साइकिल। अगर आपको कहीं भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो पहले ये था कि आपको मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ता था जो बहुत ही डिफिकल्ट टर्म्स पे आपको हाई इंटरेस्ट रेट पे आपको देते थे और ये सब जानते हैं कि किस तरह से वो उसके चंगुल में फंस जाते थे। तो ये जो सारी सुविधाएं प्राप्त हुई, आपको लगता है ये एक तरह से फ्रीडम प्राप्त हुई है फार्मर्स को और उनके सशक्तिकरण के लिए, चाहे वो फसल बीमा योजना हो जिसमें इवन वाइल्ड एनिमल्स अगर आपकी क्रॉप को खराब करते हैं तो उसके लिए भी आपको मुआवजा मिलता है, ये सभी बहुत छोटे दिखने वाले लेकिन अगर हम इनको मिलाकर देखें तो बहुत बड़े कदम है आर्थिक सशक्तिकरण के लिए।
2: जी सुनिए, सबसे बड़ी बात है ये दिखाता है सरकार कितना संवेदनशील है कि अलग अलग जो समस्याएं किसानों को आती हैं उस पर ध्यान उनका गया ही नहीं, उसके निवारण के लिए अलग अलग काम किए। जैसे आपने कहा पशुओं का, खासकर जो जंगली जानवर हैं वो खेत में घुस के खड़ी फसल को खराब कर देते, तो अब उसमें किसान की तो कोई गलती नहीं है, बाड़ लगाया भी होगा लेकिन रात भर निगरानी भी रखे होंगे, लेकिन कभी ना कभी कुछ इस तरह की आकस्मिक कोई घटना घटती है या जैसे हम जानते हैं कि बेमौसम बरसात आए या बेमौसम आंधी तूफान आए तो उनको नुकसान होता है। अभी हाल फिलहाल दिल्ली के आसपास जो बारिश हुई है उसमें कई खड़ी फसल में नुकसान हुआ है, तो ऐसे में एक किसान बीमा योजना जो है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये काफी सारा व्यापक है और इसमें सरकार की जो इसके पीछे सोच है, वन नेशन वन क्रॉप वन प्रीमियम, यानी कि एक ही जैसा आप बीमा कंपनी को अपना प्रीमियम राशि जमा करें और उसके बदले में आकस्मिक कोई घटना घटती है आपका जो बीमा कंपनी है उनकी तरफ से आपको मुआवजा दिया जाएगा। तो आंकड़े बताते हैं कि 2016-17 से तो करीब करीब 93 करोड़ या 92.5 करोड़ कृषक इस तरह के और करीब 2 लाख करोड़ रुपए तक लोगों ने दिसंबर 25 तक इसमें फायदा उठाया है। सोनू जी
1: जी बिल्कुल. एंड मिस्टर आनंद, कमिंग टू यू, यू नो द काइंड ऑफ एक्सपेंशन, टू एंड अ हाफ टाइम्स इंक्रीज इन द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड्स व्हिच हैज टेकन प्लेस, इज इट नॉट ओनली द क्वांटिटी, द क्वालिटी ऑल्सो, द फिशरीज, द एलाइड सेक्टर्स, दे हैव ऑल्सो बीन इंक्लूडेड. एंड इनफैक्ट फॉर द एलाइड सेक्टर्स दिस गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड अ स्पेशल मिनिस्ट्री, एंड देयर इज अ मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन.

0: So you think that enhancing the income of farmers, these allied sectors are playing a very major role?
1: देखिए, जो फूड प्रोडक्शन होता है हमारे यहाँ और फूड सिक्योरिटी, इसके बीच में जो कुछ भी समस्याएं होती थी और उसका कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री से बहुत लेना देना था, तो सबसे पहले सरकार ने अपनी मंशा क्लियर कर दी कि हम मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाएंगे। मैं फिर से बताता हूँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव नहीं है,
0: जी
1: ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है। ये शब्द स्वयं बहुत कुछ बयां करती है सरकार की नीयत के बारे में। नीतियां तो बाद में बनती है और एग्जीक्यूट होती है, तो सरकार की नीति बहुत क्लियर है कि हम मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाएंगे और सारे कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स उसके तहत लेके आएंगे जो किसानों के भले के लिए हो। तो सबसे पहले कि कोऑपरेटिव का डेटाबेस आज तक हमारे पास नहीं था कि कितने पैक्स हैं, कहाँ हैं, क्या बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें कौन अच्छा काम कर रहे हैं, किनको बहुत कुछ अच्छा करना है, किनको हम बहुत लिक्विडेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहला काम तो ये किया गया कि ये अपेक्स टू पैक्स का अप्रोच कोऑपरेशन में नहीं रहा, ये
0: पैक्स जो कह रहे हैं कि प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज
1: जी बिल्कुल, तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी से ऊपर हम लेके जा रहे हैं अपेक्स तक, जो एनसीडीसी और नाफेड और जो आप बड़े बड़े जो कोऑपरेटिव मल्टी स्टेट हैं उसकी तरफ। 25 बिजनेस एक्टिविटीज पैक्स अपने आप में कैसे रिसोर्सेज जनरेट कर पाए, जो इनपुट का बिजनेस है उसमें कैसे भागीदारी ले पाए, इसके लिए उनको 25 बिजनेस एक्टिविटीज से उनको जोड़ा गया। यहां तक कि आपको पेट्रोल पंप, एलपीजी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप, जन औषधि केंद्र, इस प्रकार से जो प्रॉफिटेबल बिजनेसेज हैं वो भी कोऑपरेटिव को पैक्स को दिए गए। 79,630 यानी कि लगभग 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइज किया गया 31 राज्यों और यूनियन टेरिटरी में। 61,886 पैक्स को ऑनबोर्ड किया गया ईआरपी के माध्यम से, यानी कि हर समय शाम के 5 बजे तक एक क्लिक में, अब ये कंप्यूटराइज हो गई, ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि आप एक क्लिक में वहां पे क्या एक्टिविटी हो रही है उसकी मॉनिटरिंग यहाँ की जा सकती है। वो रजिस्टर पे एंट्री सारी बंद हो चुकी है जिसमें बहुत बड़ी समस्याएं थी। तो कहां 1947 से हम बातचीत तो कर रहे थे, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में, उसमें जो ट्रांसपेरेंसी लानी थी, उससे हम कहीं दूर, बहुत दूर बैठे थे। तो एक तो ये सबसे पहला सुधार किया गया। आपके माध्यम से मैं कुछ और बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पहले ये कहा गया था कि पीडीएस में बहुत सारे लीकेजेस होते हैं, सभी लोग 15% और 100% की बातचीत कहते हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया था। हमारे यहाँ अब है वन नेशन वन राशन कार्ड, और वो भी डिजिटाइज्ड है, यानी कि अगर मैं बिहार का किसान हूं और दिल्ली में किसी कारणवश रह रहा हूं तो मैं दिल्ली के फेयर प्राइस से अपना अनाज जो भी एलोकेट है मैं विड्रॉ कर सकता हूं। तो ऐसा डेटाबेस करना, ऐसा बनाना और उसको एग्जीक्यूट करना, ये अपने आप में एक बड़ा मील का पत्थर है। अब मैं आता हूं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्ट्रेंथन किए गए, वो फार्म गेट से मार्केट तक कैसे जाए, यानी कि किसान के खेत से बाजार तक वो जो जाने वाली बात है उसमें किसान का भाग कैसे हो, उसमें बीच में जो व्यापारी वर्ग है सिर्फ वही फायदा ना ले जाएं, बल्कि व्यापारियों के साथ हमारे किसान कैसे काम कर सके और मूल्य श्रृंखला में कैसे अपनी बात कह पाए। तो जैसे कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ई नाम की बात मैंने आपसे पहले बताई थी, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र जो पहले नहीं थी, आज की तारीख में 1.8 लाख ऐसे केंद्र बनाए गए जहां पे इनपुट और वन स्टॉप सेंटर हैं इनपुट और एडवाइजरी सर्विसेज के। तो एक्सटेंशन के लिए एक नया, एक पूरा ओपन मार्केट सिस्टम बन गया जहां से सारी चीजें हो रही है। मेगा फूड पार्क स्कीम जहां किताबों में थी, सिर्फ गाइडलाइंस में थी, आज सैकड़ों मेगा फूड पार्क बनाए जा रहे हैं। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को फूड प्रोसेसिंग के साथ जोड़ करके और इस पूरे मूल्य श्रृंखला में किस प्रकार से किसानों के पास आप आ पाए, लगभग 11,000 करोड़ रुपए उसमें खर्च किए गए और वो फार्मर्स के माध्यम से खर्च किए गए, ना कि बीच में जो लोग होते हैं उनके माध्यम से खर्च किया जाए।
0: तो उनकी जरूरत
1: कुछ ऐसे चैलेंजिंग प्लेसेज हैं जहां पे, जैसे मान के चलिए 100 जिले थे, तो उन 100 जिलों को आइडेंटिफाई किया गया कि यहाँ पे क्या कारण है। भाई 75 साल हो गए, जहां एक जिले में प्रोडक्शन एक्स हो रहा है, इन जिलों में x/8 हो रहा है, आखिर क्या कारण है। तो उनको लेकर के और उन जिलों के लिए अलग से स्कीमें बनाई गई, उसके ऊपर सरकार की अलग ओवरसाइट है, एडिशनल सिक्योरिटी रैंक ऑफिसर उसकी मंथली देखरेख करते हैं, और उन अमुक जिलों में कैसे प्रोडक्शन बढ़े इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, इसके ऊपर एक पूरी नायाब नीति बनाई जा रही है। तो मुझे लगता है ये सारा जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया जा रहा है और इस प्रकार से जो प्रधानमंत्री का विशेष ध्यान है एलाइड एक्टिविटीज पे, खास करके फिशरीज में और जो डेयरी में, आज आप देख रहे हैं लद्दाख में भी एनडीडीबी ने जाकर के वहां का भी एक डेयरी शुरू किया है, जिस प्रकार से दिल्ली में मदर डेयरी है तो लद्दाख की मदर डेयरी कैसे शुरू हो, या जम्मू कश्मीर में डेयरी से फार्मर्स कैसे जुड़े, या वहां के जो लोकल जो हमारा ह्यूमन रेजिलियंस है उसको कैसे हम इंटीग्रेट कर पाए।

0: एग्रीकल्चर के साथ में, तो एक बड़ा बदलाव लाइव स्टॉक डेयरी के सेक्टर में हो रहा है।
1: जी
0: चौथी बात मैं आपके माध्यम से बताऊंगा कि जो बायो इथेनॉल में और जो सीबीजी में सरकार का ध्यान है, कंप्रेस बायोगैस में,
1: जी
0: और ये कंप्रेस बायोगैस का बड़ा बाजार जो पूरी दुनिया में निकल रहा था एविएशन टरबाइन फ्यूल, यानी कि सस्टेनेबल एविएशन टरबाइन फ्यूल के माध्यम से, उसमें गांव की हिस्सेदारी कैसे बढ़े, उसके लिए सैकड़ों सीबीजी प्लांट लगाए जा रहे हैं, कंप्रेस बायोगैस प्लांट लगाए जा रहे हैं, और ये
1: जी
0: तेल की कंपनियां उसको खरीद करके और एविएशन टरबाइन फ्यूल में मिला करके और उसको वो बेच रही है। तो ये इसका सीधा सीधा डिविडेंड जो है वो फार्मर्स के पास जा रहा है। तो इन सारी स्कीमों में फार्मर सेंट्रिसिटी की बात यह है कि अगर मान के चलिए कोई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव व्यापार करती है तो उसका प्राइस तो किसानों को मिलता है क्योंकि रॉ मटेरियल उनसे वो प्रोक्योर कर रहे हैं, इसके साथ साथ में जो फायदा होता है उसका डिविडेंड किसानों के पास कैसे जाए, ये
1: जी
0: फार्मर सेंट्रिक एग्रीकल्चर सिस्टम जो डाइवर्सिफाइड है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, वो बनाई जा रही है। तो ये अपने आप में एक मील का पत्थर है। पिछले 12 वर्षों में हम जहां तक चल के आ पाए, हमें ऐसा लगता है कि 2047 तक एग्रीकल्चर के वैल्यू चेन में फार्मर्स की जो भागीदारी बढ़ेगी और उससे एक असमानता कमेगी, ऐसा प्रधानमंत्री जी का ध्यान है और पूरा देश उस ओर अग्रसर है।
1: मिस्टर मिश्रा, आपके पास आते हैं, आप बताएं हमें, एक जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन 2021 में बनाई गई, अलग से एक सहकारिता मंत्रालय बनाया गया, और जिस तरह से कोऑपरेशन जो मॉडल है उसका सक्सेस कृषि क्षेत्र में देखा गया है, अगर हम दूध जो सेक्टर है उसकी बात करें, और ये जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं 10,000, ये कैसे कोऑपरेटिव मॉडल को यूज करके ये कैसे फार्मर्स को लाभान्वित करती हैं, इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं, इस मंत्रालय के महत्व के बारे में कृषि क्षेत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जो बनाई गई हैं ये खासकर छोटे और सीमांत किसान हैं उनके लिए इनका क्या महत्व है?
2: ये जो एफपीओ का कंसेप्ट लेके आए, पहले भी एफपीओ बनते थे लेकिन सरकार ने जब अनाउंस किया कि 10,000 हम एफपीओ बनाएंगे विद इन ए डेडलाइन, वो डेडलाइन से पहले ही बन गए
1: जी
2: 10,000। उन्होंने बनवाए क्या, उन्होंने फैसिलिटेट किया, उसमें उन्होंने स्कीम लेके आए कि हम आपको 50% इक्विटी पार्टिसिपेशन देंगे। कोई भी कंपनी वो जो एफपीओ है उसमें या तो आप कोऑपरेटिव बना सकते हैं या एक प्राइवेट कंपनी बना के आप एफपीओ का जो स्ट्रक्चर है उसके तहत आप काम कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए किसी भी कंपनी में जब 50% इक्विटी कोई देता है उसका वोटिंग राइट होता है, वो डिसीजन लेता है, वहाँ पे उस क्षमता में रहता है, डिसीजन वही डिसाइड करे। लेकिन इस मॉडल में सरकार ने बोला कि हम इक्विटी जरूर देंगे आपको 50% ग्रांट के तहत, लेकिन डिसीजन आपकी होगी, कोई हमारा इंटरफियरेंस नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक जो बोलते हैं कि स्वयं शासित कर देना, कि आप खुद ही गवर्न करो एफपीओ को और गाइड करते रहना कि भाई आप ऐसे करोगे, उसमें हेल्प करना। हर बृहस्पतिवार को एक वेबिनार होती है जिसमें सारे एफपीओ जोड़ते हैं और दो दो कंपनीज को बुलाते हैं गवर्नमेंट, और ये कई चीज जो लाइमलाइट में नहीं आती है उसमें लेकिन एफपीओ का जरूर फायदा हुआ है। कई एफपीओ करोड़पति बन गए हैं और गवर्नमेंट का प्लान है कि 2030 तक शायद 10,000 में से 5,000 को करोड़पति में ले आएंगे।
1: तो किस तरह के निर्णय लेते हैं मिलकर जो एफपीओज होते हैं, किस किस क्षेत्र में?
2: इन्होंने पूरी फ्रीडम दे रखी है एफपीओस को, जो चाहे वो कर सकते हैं एज ए बिजनेस एंटिटी। उनको बिजनेस बढ़ाना है और कृषि के आसपास जितने भी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने इनपुट बेच रहा है तो वो डायरेक्टली कंपनी से सोर्स करते हैं और अपने फार्मर के अलावा जो आसपास के लोग हैं उनको देते हैं, सब्सिडाइज नहीं, चीपर रेट पे, क्योंकि वो डायरेक्टली सोर्स करते हैं। गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करता है। किसी एफपीओ को मान लीजिए पता नहीं है कहाँ से सोर्स करना है, क्या सोर्स करना है, उसमें गवर्नमेंट उनको मदद करता है, बताता है कि इस कंपनी से आप जुड़ सकते हैं। तो ऐसे जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है उससे कई एफपीओ को बहुत फायदा हुआ है।
1: तो इनपुट्स उनकी कॉस्ट कम होती है और उनको जो प्राइसेस है वो बेटर मिलती है और उनका जो है प्रॉफिट बढ़ता है।
2: बिल्कुल, जो बीच में जितने भी मिडिल मैन इन्वॉल्व होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। तो वो जो भी कंपनी जो उनको कॉस्ट में देती है, सप्लाई करती है, वो थोड़ा सा मुनाफा करके प्रॉफिट रख के वो बेचते हैं।
1: जी
2: और अपने फार्मर को कई एफपीओ तो ऐसे हैं जो कॉस्ट जितने लाते हैं उतने में अपने मेंबर को दे देते हैं, तो जो कहीं नहीं मिलेगा उस प्राइस में आपको, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम हो जाता है किसी फार्मर का तो उसका प्रॉफिट भी तो बढ़ता है। जब मार्केट प्राइस दूसरे फार्मर के कंपेरिजन

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। समाचार संध्या अब से कुछ ही पलों बाद हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। भारत ने इसराइल और ईरान के बीच ताज़ा हमलों के बाद तनाव को तत्काल कम करने को कहा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए।

0: इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। एक रिपोर्ट।
1: इस समारोह में राष्ट्रपति ने 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र प्रदान किए। छत्तीसगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान उनके असाधारण साहस के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में विद्रोहियों के एक बड़े हमले को नाकाम करने में असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र दिया गया। लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए को उनके अदम्य साहस के कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया था। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए चुने गए 4 गगन यात्रियों में से एक ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना अब पूरे देश में लागू हो गई है। योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
2: 2015 में भारत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का चेयरपर्सनशिप भारत को मिली थी। 2017 में इस पर कार्य शुरू किया और 9 महीने के अंदर 2018 में हम जब रांची में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत, और यह विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा, वर्ल्ड शुड नो हाउ इंडिया हैज डन दिस आयुष्मान भारत।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से पश्चिम बंगाल के लोगों को लाभ होगा, भले ही वे राज्य के बाहर रहते हों।
3: हमारी इस साल आयुष्मान भारत का एग्रीमेंट आज हो गया। 1,43,00,000 फैमिली बेनिफिटेड होगा। जमीन में काम को किस तरीके से उतारना चाहिए, मोदी जी का नेतृत्व में भारत सरकार एक सब काम कर रहा है।
0: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में आज एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हुए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से काशी तीर्थ यात्रा के लिए जा रही एक निजी बस बिहार में एक लॉरी से टकरा गई। इस दुर्घटना में 3 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मृतक तीर्थयात्रियों के परिवारों को 5,500,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने गंभीर रूप से घायलों को 2,00,000 रुपए और मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 1,00,000 रुपए देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉकेट टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। यूरोपीय संघ के संशोधित नियामक ढांचे के अंतर्गत भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद शहद, अंडे और जल जनित खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए यूरोपीय संघ के बाजार उपलब्ध रहेगा। कीटनाशकों से संबंधित चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से बनाए गए नए नियमों के बाद यूरोपीय संघ ने भारत को इन उत्पादों के निर्यात के लिए पात्र अधिकृत देशों की सूची में शामिल कर लिया है। इससे भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय बाजार में निर्बाध पहुंच सुनिश्चित होगी और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा, देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि दोपहर में जहाज एमटी मैरीवैक्स में आग की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार जहाज पर मौजूद सभी 24 भारतीय कर्मचारी सुरक्षित हैं। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए पोर्टल भव्य का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा।
2: टू डेवलप द इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम,
3: औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और पूरे भारत में बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से बड़े स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हमने भव्य योजना शुरू की है। भव्य योजना के अंतर्गत विभिन्न आकारों के 100 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस बार हम संभवतः स्टार्टअप्स, डीप टेक या तकनीक उन्मुख व्यवसायों, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार उन्मुख व्यवसायों के लिए अधिक क्षेत्र निर्धारित करने पर भी विचार कर रहे हैं।
2: R&D and innovation oriented businesses.
1: इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके के पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के प्रति विश्वसनीयता कम हो गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों की।
5: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
6: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
5: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 800,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम

अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत

0: भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33 से 35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। यह दिवस देश के सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। इस अवसर पर आकाशवाणी दिल्ली में स्पेक्ट्रम नामक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि 9 दशकों की निरंतर सेवा एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।
2: आज से 90 साल पहले ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना होने के बाद से हर दिन हर पल आकाशवाणी श्रोताओं की और देश की धड़कन बन के रहा है। टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ती रही, पहले मीडियम वेव, उसके आगे शॉर्ट वेव, फिर FM, अब डिजिटल स्ट्रीमिंग। हर माध्यम से देश के कोने कोने में बसे हुए लोगों को उनकी आवाज में समाचार, सूचनाएं और मनोरंजन आकाशवाणी देती रही।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में खेत बचाओ अभियान, रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग रोक पर टिकाऊ खेती की ओर एक महत्वपूर्ण पहल परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मुझे महान अभिनेता और फिल्मकार मनोज कुमार की प्रसिद्ध फिल्म उपकार का ये गीत याद आ रहा है कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। ये गीत केवल एक फिल्मी गीत नहीं बल्कि हमारे किसानों की मेहनत, उसकी लगन और हमारी उपजाऊ धरती की समृद्धि का जीवंत प्रतीक है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारी खेती की असली ताकत हमारी मिट्टी है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में रासायनिक उर्वरकों के बढ़ते और असंतुलित उपयोग ने मिट्टी के स्वास्थ्य, उसकी उर्वरकता और पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव डाला है। इसी समस्या को समझते हुए सरकार ने अभी खेत बचाओ अभियान शुरू किया है, जिसमें 9,42,000 से अधिक किसान जुड़ चुके हैं। इसकी अहमियत को समझते हुए हमने भी आज पब्लिक स्पीक में इसी विषय को चुना है। खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा पोषक तत्वों को बढ़ावा। हमारे साथ चर्चा के लिए हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के जो प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर महेश चंद मीणा और इसी संस्थान के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं, हमारी फोन लाइंस भी खुली हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देंगे हमारे विशेषज्ञ। आप कॉल कर सकते हैं 011 जो दिल्ली का कोड है, उसके अलावा 2331-0481, 2371-7117, या 2371-7106 और 2331-4444। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। इस पर भी आप हमारे जो अपने प्रश्न हैं वो भेज सकते हैं। तो कार्यक्रम का आगाज करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर दाबास, आपसे ही जानना चाहूंगी कि ये खेत बचाओ अभियान जो शुरू किया गया है, इसकी अवधारणा क्या है और आज के समय में इसकी क्या प्रासंगिकता है?
1: प्रियंका जी, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना काल में भी केवल कृषि क्षेत्र ऐसा क्षेत्र था कि हमने प्रगति की थी, उसमें उस समय भी हमें काफ़ी ग्रोथ मिली थी और हमारा देश उसमें काफ़ी आगे था। केवल किसानों की मेहनत की वजह से और किसी अनाज की, धन के, उसकी सब्जी की, फल की या किसी किस्म के दूध और वगैरह की हमें कमी महसूस नहीं हुई और हमारा काल बहुत अच्छा निकला और कृषि ने हमेशा इस देश का साथ दिया है
0: जी।
1: तो अगर कृषि को हमें आगे जारी रखना है, चित्र रखना है, तो किसानों को नई से नई तकनीक समय पर पहुंचनी चाहिए, किसानों को उत्तम गुणवत्ता के इनपुट मिलने चाहिए और सबसे बड़ी बात जो है, किसानों को सही ज्ञान सही समय पर मिलना चाहिए जो कि कृषि वैज्ञानिक दे सकते हैं। इसी के सिलसिले में भारत सरकार ने वैसे तो सभी जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र खोले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम हर सीजन में एक प्रोग्राम चलाना चाहते हैं जिससे किसानों को नई नई तकनीक के बारे में पूरी जानकारी जाए और वैज्ञानिक किसानों को हर सही तरह से खेत पे उसको ट्रेनिंग दे और सहयोग करे और जैसी सिचुएशन हो उसमें कैसे हमें टैकल करना है। जैसे मान लें कहीं बारिश ज़्यादा होने की संभावना रहती है तो हमें कौन सी फसल लगानी है, कौन सी किस्म लगानी है, पानी का कैसे उपयोग करना है या पानी की निकासी कौन सी होनी चाहिए और हमें किस किस्म का प्रयोग करना है, वो सारी की सारी जानकारी हमारे कृषि वैज्ञानिक किसानों को उस टाइम पे उपलब्ध करवाते हैं। इसी तरह से वर्षा की कमी हो जाती है तो हम कौन सी फसल लगाएं, कौन सी किस्म लगाएं जो पानी की कमी बर्दाश्त करते हुए अच्छी पैदावार देगी। और सबसे बड़ी बात जो है, हमारी सॉयल हेल्थ, मिट्टी का स्वास्थ्य कैसे बना रहे, हमें इनपुट्स का कैसे यूज़ करना है, कौन कौन से इनपुट्स का यूज़ करना है। अक्सर किसान भाई किसी एक खास किस्म के खाद का ज़्यादा प्रयोग करते हैं जो असंतुलित खाद की वजह से मिट्टी का उर्वरा शक्ति घटती जा रही है। तो हमें किसानों को ज्ञान ये समझाना है कि मिट्टी की जाँच के आधार पर ही हम इनके पोषक तत्वों का सही से उपयोग करें और संतुलित मात्रा में करें और खाली हमें रासायनिक खादों पर डिपेंड ना करके हमें इसको समेकित किया जो पोषक तत्व प्रबंधन करना चाहिए, यानी कि हमें सूक्ष्म जो हमारे नैनो फर्टिलाइजर के साथ साथ में दूसरी बताना चाहूंगा कि जो हमारे देसी खाद हैं, रासायनिक खाद हैं, इसके साथ में जो जीवाणु खाद हैं, इन सबको साथ लेना चाहिए और किसानों को अपने जो नेचुरल रिसोर्स हैं उनको भी रिसाइकिल करना चाहिए और हमें फसल चक्र इस प्रकार से अपनाना चाहिए कि हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य भी बना रहे, किसान को अच्छा उत्पादन मिले, उसकी लागत भी कम हो और हमारे देश की जो आवश्यकता वो भी पूरी हो
0: जी। आगे भी इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे श्रोता जुड़ गए हैं दिल्ली के मंगोलपुरी से ब्रह्मदत्त जी। हेलो।
2: हेलो,
0: नमस्कार।
2: नमस्ते मैडम जी, प्रणाम
0: जी।
1: नमस्कार, नमस्कार जी।
2: सब जी, मेरे कुछ जिज्ञासाएं, उत्सुकताएं हैं, उत्कंठाएं हैं। मैं मंगोलपुरी दिल्ली ब्रह्मदत्त बोल रहा हूँ। ये जो हम बात करते हैं फसल चक्रों की, क्रॉप रोटेशन की, उर्वरक प्रबंधन किस प्रकार सहायक है? यदि हम धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, दलहन, तिलहन आदि जो फसलें होती हैं हमारी रवि, खरीफ और जायद कालीन, इनमें हम फसल चक्रों में उर्वरक प्रबंधनों को किस प्रकार से कर सकते हैं?
1: ब्रह्मजीत जी, जो हमारे फसल चक्कर है उसमें हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि पहले एक फसल अगर ज्यादा खाद लेने वाली है तो दूसरी फसल ऐसी हो जो कम खाद लेती हो। कुछ फसलों की जड़ें गहराई से खाद लेती हैं, कुछ ऊपर से खाद लेती हैं, और साथ साथ में जैसे जितनी भी हमारी दलहनी फसलें हैं उन न केवल अपने पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं बल्कि जमीन में अगली फसल के लिए भी कुछ पोषक तत्व छोड़ जाती हैं। तो ये हमारी पहले से अवधारणा रही है कि जैसे पहले हम कोई धान्य फसल के साथ साथ में दूसरी अगर फसल लेते हैं तो एक दलहन फसल लेते हैं तो उसे दोनों फायदे हैं कि एक तो हमारे देश में दालों का काफ़ी मात्रा में आयात होता है तो उसके आयात का सब्स्टिट्यूशन होता है तो विदेशी मुद्रा बचती है, दूसरी बात यह है कि हमारे खेत की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है, और तीसरी बात है जितनी भी दलहनी और तिलहनी फसलें हैं इनमें कम पानी की आवश्यकता होती है तो कम पानी में भी अच्छा हम पैदावार कर सकते हैं, और आजकल मोटे अनाजों की भी काफ़ी जिज्ञासा बढ़ रही है और इनके अच्छे पैसे भी मिल रहे हैं किसानों को, और हम काफ़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करने की इसमें काफ़ी संभावना है, और ये जितने भी मोटे अनाज हैं ये भी कम संसाधन में यानी कम उपजाऊ जमीन में भी अच्छी पैदावार दे सकते हैं और कम खर्चे पर भी पैदावार दे सकते हैं। तो हमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे पानी अगर कहीं ज़्यादा तो वहाँ केले की खेती कर सकते हैं, गन्ने की खेती कर सकते हैं, और धान की खेती में भी हमारे पास कई किस्म की खेती है यानी कि हम पानी के साथ भी कर सकते हैं, ट्रांसप्लांटिंग भी कर सकते हैं, डायरेक्ट सीडिंग भी कर सकते हैं, और आजकल कुछ ऐसी किस्में भी आ गई हैं जिसमें कि खरपतवार उसमें अगर एक पर्टिकुलर दवाई का प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें किसी प्रकार के खरपतवार प्रबंधन बहुत आसान हो जाता है जिससे हमारी उत्पादन लागत भी बढ़ती है और साथ साथ में किसान का फायदा भी होता है। तो हमें इन सब चीज़ों को देखना है जो भी हम फसल चक्र अपनाते हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखते हैं कि हमारी मिट्टी पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े और किसान को कम खर्चे में ज़्यादा आमदनी मिल सके।
0: जी, आप मिट्टी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मीरा, तो जैसे आप बात कर रहे हैं जो सॉइल हेल्थ की बात करते हैं तो वो मिट्टी के पोषक तत्वों की बात करें तो इसका वास्तविक अभिप्राय क्या है और खेती की उत्पादकता को ये किस तरह प्रभावित करता है?
3: बिल्कुल मैडम, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब जैसे बता रहे थे कि हमारी खेती हम लगातार करते आ रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, ज्यादातर किसान भाई एक या दो या ज्यादातर बहुत अच्छे किसान हैं तो तीन उर्वरक का प्रयोग कर रहा है, लेकिन क्या है ना पौधों को कुल मिला के 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आप मिट्टी में डालिए या नहीं डालिए लेकिन वो मिट्टी से लेगा, लेकिन मिट्टी का भी एक अपना एक कैपेसिटी है, वो जब तक देगा जब तक उसके पास रिजर्व में कितना है, और वो धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया। अभी क्या है ना हमारी ज़्यादातर मिट्टियों में जहाँ पे किसान भाई जैसे ऑर्गेनिक मेन्योर या ऑर्गेनिक बेस कुछ भी उपयोग नहीं कर रहे तो वहाँ पे क्या है ना एट ए टाइम आप देखेंगे 5 से 6 पोषक तत्वों की कमी है और उसके कारण हमारी मिट्टी की जो कैपेसिटी है वो घटती जा रही है।
0: डॉक्टर आपसे बात जारी रखेंगे, पहले हमारे श्रोता जुड़ गए हैं शिमला से, राकेश जी।
4: जी नमस्कार, मैं राकेश
0: जी
4: राकेश बात कर रहा हूँ कोट खाई शिमला हिमाचल प्रदेश। और सबसे पहले तो आपको पूरी आकाशवाणी टीम को आकाशवाणी की 90 स्थापना की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: धन्यवाद
4: जी। तो मेरा डॉक्टर साहब से एक सवाल है कि हमारे एप्पल के पेड़ लगे हुए हैं, एप्पल के बाग, तो मैं इसमें ये जानना चाहता हूँ कि जब हम खाद डालते हैं तो इसमें क्या क्या किस तरह से हम काबू किया जाए, कितनी हमें मात्रा में खाद डालनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम ज्यादा खाद का उपयोग कर लेते तो हमारे जो है एप्पल की जड़ें खराब हो जाती है, ये मेरा प्रश्न है।
0: डॉक्टर मीना।
3: तो राकेश जी जैसे आप बता रहे हैं कि देखो एप्पल का भी जितना हमारा जो एक्सपीरियंस है किसानों से जो चर्चा में आया वो क्या है ना ज्यादातर आपकी मिट्टियां अम्लीयता हैं और अम्लीयता लगातार जैसे आप कहना कभी मिट्टी परीक्षण नहीं करवा रहे, कई बार क्या है ना मिट्टी की जैसे कई कई जगह थोड़ी गहराई का भी एक इश्यू आता है, और आप मिट्टी का जब टेस्ट कराएंगे तो आपके यहाँ जैसे देखा गया है कि कैल्शियम वगैरह की भी बहुत कमी पाई जा रही है और उसके कारण जो एप्पल का जो पौधा है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा क्योंकि एसिडिटी ज़्यादा हो गई, तो उस कारण से आपका जैसे और भी पोषक तत्व हैं जैसे बोरोन है, जिंक है, ये कई बार क्या होता है ना कहीं कहीं जगह बहुत अधिक हो जाता है, कई बार डेफिशिएंट भी होता है, मतलब कई बार किसान भाई सोचते हैं कि हमारी तो अम्लीय मिट्टी है तो यहाँ पे सूक्ष्म पोषक तत्वों की पर्याप्तता है, ऐसा नहीं है। बोरोन है, बोरोन एक नंबर वन जो मतलब कैल्शियम और बोरोन ये दोनों जो एप्पल का जो हम अभी तक पाए हैं कि ये दोनों का बहुत ज्यादा रोल है और इसकी कमी बहुत ज्यादा है, किसान भाई कभी भी कैल्शियम और बोरोन कभी नहीं डाल रहा तो
0: सॉइल टेस्टिंग समय समय पर बहुत जरूरी
3: है,
0: किसान कराते रहें। छत्तीसगढ़ से एक हमारे श्रोता जुड़े हैं योगेश झांगड़े जी।
5: जी नमस्ते।
0: नमस्ते।
5: जी हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: जी जी
5: हम ये जानना चाहते हैं विशेष रूप से जो हम लोग फसल काटने के बाद जो हमारे अवशेष बचते हैं फसल के, तो उनके लिए हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्थाएं क्या क्या हो सकता है उसको सही प्रबंधन करने के लिए।
0: डॉक्टर डबा
1: योगेश जी, जो भी हमारे फसल अवशेष बचते हैं इनको हम खाद के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने एक पूसा संस्था ने एक अलग से एक वो बनाया है जिसको वेस्ट डिकम्पोजर कहते हैं, उसका स्प्रे करके और पानी लगा के इसको अगर इन अवशेषों को मिट्टी में मिला देते हैं तो ये खाद में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे मिट्टी का जो ऑर्गेनिक कार्बन उसको भी बढ़ाते हैं और साथ साथ में पोषक तत्व भी सप्लाई करते हैं और ये मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाते हैं। एक्चुअली मिट्टी में तीन प्रकार के गुण होते हैं, एक रासायनिक, भौतिक और जैविक। जब तक तीनों में सुधार नहीं होगा हमारी खेती अच्छी नहीं हो सकती। अगर हम रासायनिक खाद प्रयोग करते हैं तो एक गुण में तो सुधार होता है और वो भी एक या दो पोषक तत्वों के लिए, लेकिन बाकी गुणों का ह्रास होता है। तो हमें जो हमारे देसी खाद हैं इन पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, खासकर बायोगैस सलरी, वर्मी कंपोस्टिंग और उसके बाद अच्छी सड़ी गली खाद। अभी हमारे एक सेब वाले भाई का सवाल था कि उनकी जड़ों में कई बार दिक्कत आती है, तो जड़ों में कई बार अगर किसान भाई कच्चे खाद का प्रयोग करते हैं तो उसमें भी फंगस लगने की वजह से पेड़ को नुकसान हो सकता है। तो मैं उन किसानों को कहूँगा कि अपने खाद के अंदर या तो ट्राइकोडर्मा बिल्डी या सुडोमोनास, ये जैविक चीज़ें हैं, इनका अगर प्रयोग करते हैं तो उससे जो नुकसानदायक फंगस है, फफूंदी है, ये उसके नुकसान को कम कर देते हैं और उसको सही खाद में परिवर्तित करने के साथ साथ में उसकी उपयोगिता को और बढ़ा देते हैं। तो हमें उस बात का ध्यान रखना है और जितनी भी फसल अवशेष है उनका अगर हम उपयोग करते हैं तो उससे मिट्टी को ज़्यादा लाभ होता है। तो मैं सभी किसानों को कहूँगा कि वो अपने फसल अवशेषों को मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दें और इस तरह से मिलाएं कि वो अपनी अगली फसल के काम आ जाए।
0: डॉक्टर दबास, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि जैसे पराली जलाने की जो समस्या हम देख रहे हैं, बल्कि अगर ये जो अवशेष बचते हैं उसको हम मिट्टी में ही मिलाएं, उसको वहीं प्रबंधित करें तो पर्यावरण को भी कम नुकसान होगा। इंदौर से जुड़े हैं हमारे साथ अनिल जी। हेलो जी अनिल जी।
6: मैम हमारा सवाल ये है कि जैसे कि हर वर्ष किसानों को कभी ठंड के मौसम में, कभी बारिश के मौसम में हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है और सरकार तो भरपूर कोशिश करती है उनके खेतों में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की, लेकिन जरूरी नहीं कि हजारों लाखों किसानों के पास सरकार बिल्कुल एक एक किसान के पास पहुंचे जो उनके नुकसान की भरपाई करे। तो जो राज्य स्तर के स्तर पर या नगर निगम के स्तर पर क्या क्या उपाय किया जा सकते हैं किसानों के खेत बचाने के लिए?
1: मैं अनिल जी को ये बताना चाहूंगा कि कृषि जो है एक राज्यों का विषय है और राज्यों का विषय होने के नाते राज्य सरकारों का सबसे बड़ा रोल होता है, इवन आपकी जो क्रॉप इंश्योरेंस है उसको भी दिलवाने में। तो जगह हमारे राज्य का कृषि विभाग मजबूत है तो एक तो आपको अच्छी किस्म के सभी इनपुट मिलेंगे, उनकी क्वालिटी अच्छी रहेगी, साथ साथ में उनकी उपलब्धता भी समय पर बनी रहेगी और इस किस्म की कोई विपदा आएगी तो उसमें भी वो ज़्यादा अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। तो हमारे राज्य में जो कृषि विभाग है वो अगर एक्टिव है तो वो सेंटर की भी मदद उसमें आपके किसानों को ज़्यादा जल्दी मिलती है। तो हमारे राज्य स्तर पर ये होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें अपने कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग और बागवानी विभाग या पशुपालन विभाग, इन सब के संपर्क में रहना चाहिए। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे उस केंद्र की हो या राज्यों की हो, वो इन्हीं के माध्यम से लागू होती हैं। तो इन योजनाओं का सही लाभ उठाना है तो हमें इन विभागों से बहुत ही अच्छी तरह संपर्क रखना है और अच्छा कोऑर्डिनेशन करते हुए इन सभी योजनाओं का लाभ उठाना है। सरकार काफ़ी कुछ काम कर रही है केवल किसानों की मदद के लिए, लेकिन मदद तभी हो पाएगी जब किसान भी जागरूक हो और किसानों के जो संगठन बने आजकल किसान उत्पादन संगठन, ये उसमें और अच्छा योगदान कर सकते हैं। तो इनके माध्यम से भी हम इन विभागों के साथ कोऑर्डिनेट करके अपने किसानों को लाभ दिलवा सकते हैं।
0: उत्तर प्रदेश के मथुरा से जुड़े हैं चौधरी महेंद्र सिंह जी। नमस्कार महेंद्र जी, स्वागत है कार्यक्रम में।
7: जी नमस्कार। नमस्कार आदरणीय कृषि विशेषज्ञ महोदय को भी नमस्कार।
1: नमस्कार जी।
7: सर मैं ये जानना चाहता हूँ हर किसान अच्छे उत्पादन हेतु ज्यादा से ज्यादा उर्वरक खेत में डालता है छोड़ता है, लेकिन उससे पहले और मिट्टी का परीक्षण कराना बहुत जरूरी है। तो खेत के चारों कोने से मिट्टी ली जाए और कितनी गहरी ली जाए?
0: जी डॉक्टर मीना।
3: हाँ महेंद्र जी, जो आप बोल रहे हैं ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जब भी हम सैंपल लेते हैं तो चारों कॉर्नर को टारगेट नहीं करना है हमारा जो, क्योंकि आप देखेंगे खेत के चारों तरफ यदि दो दो मीटर का एरिया देखेंगे वो सबसे अच्छा और फर्टाइल होता है। तो आपको बॉर्डर पहले दो मीटर छोड़ना है और जितना ओपन है, इवन पेड़ और बिल्डिंग, कुएं, जो भी आपकी स्ट्रक्चर है उसके पास से भी नहीं लेना। लेकिन जितना खुला जगह है वहां से आपसे 15 से 20 जगह से मिट्टी लेना है, और मिट्टी की गहराई जैसे जो आपकी सीजनल फसल है जो एक सीजन में खत्म होती है उनके लिए 0 से 15 सेंटीमीटर की गहराई का सैंपल चाहिए। यदि आपको बाग या मेडिसिनल प्लांट जो पेरिनियल जो कई वर्षों तक चलती हैं ऐसी फसल उगानी है तो आपको प्रोफाइल सैंपल लेना है, और वो सैंपल लेके आपको जैसे मतलब लैब के लिए आपको 300 से 500 ग्राम मिट्टी आपको भेजनी है। ऐसा नहीं कि आपने 15 से 20 जगह से 3 किलो 4 किलो मिट्टी ले लिया और सबको फिर कैरी करें, तो वो नहीं है। लेकिन आप ये जो आपने मैं बोला है ये बिल्कुल सही नहीं है, चारों कॉर्नर को कभी भी आपको सैंपल में मतलब ऐसा जो लेते हैं वो गलत सैंपल है। तो आपको यही है कि बॉर्डर इफेक्ट छोड़िए और जितना ओपन एरिया है वहां से 15 से 20 जगह से मिट्टी उठाइए और उसको अच्छे से मिक्स करके और उसमें से 300 से 500 ग्राम अपनी लैब को सैंपल चाहिए होता है।
0: जी हाँ, ये बहुत जरूरी है। समय समय पर श्रोताओं जो हमारे किसान भाई सुन रहे हैं, समय समय पर सॉइल टेस्टिंग कराते रहनी चाहिए, और सरकार ने इसके लिए योजना भी मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी शुरू की है, तो उसका लाभ जरूर ले। व्हाट्सएप पे भी हमारे पास एक प्रश्न आया है मध्य प्रदेश के पन्ना से हर्षवर्धन पांडे जी का। उन्होंने पूछा है कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत किसानों को कौन सी खेती करनी चाहिए।
3: देखो सबसे बड़ी बात है कि खेत बचाओ जो अभियान है वो विशेषकर जो हमारी मिट्टियाँ हैं धीरे धीरे जो मतलब उनकी उपजाऊता घटती जा रही है, उत्पादकता घटती जा रही है तो और बैरन होती जा रही है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। जैसे कि ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं या कभी हम ऑर्गेनिक मैन्योर जैविक खादों का कभी उपयोग नहीं कर रहे, फसल चक्र नहीं अपना रहे, कभी भी हमने दलहनी फसलें नहीं उगाते, तो इनसे क्या है ना धीरे

0: नकारात्मक प्रभाव पड़ता जा रहा है। तो हमारा जो इसमें जो फसल खेत बचाओ अभियान, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम कैसे मिट्टी की उत्पादकता और उसकी उर्वरकता हम कैसे बढ़ाएं। और इसमें सबसे बढ़िया है कि आप समय समय पे, जैसे मान लो आप वर्मी कंपोस्ट और आप कंपोस्ट गोबर की खाद नहीं कर सकते तो हरी खाद आप जरूर कीजिए, वो नहीं कर सकते तो अभी जैसे हम अब एक श्रोता ने हमसे पूछा था कि क्रॉप रेसिड्यू का जो फसल अवशेष हैं उनको आप वहीं पे, जैसे पूसा डिकम्पोजर है, ऐसे बहुत सारे डिकम्पोजर हैं, उनका उपयोग करके उनको वहीं गलन करके, मतलब अल्टीमेट ये है कि हमको मिट्टी को कार्बन देना है और कार्बन देंगे तो वो जैसे हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन, तो वो उसका सॉइल का हीमोग्लोबिन है, यदि जैसे जैसे कार्बन घटता जाता है मिट्टी की अपनी शक्ति है वो कम होती जाती है। तो किसान भाइयों को यही है कि ऐसी फसलें अपनाएं जिसके द्वारा हम ज्यादा से ज्यादा अवशेष या हम ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल मिट्टी को दे पाएं और उसकी उर्वरकता हम बढ़ा पाएं।
1: डॉक्टर, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं जैविक खेत, गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट के बारे में, हरी खाद, मतलब इन तकनीकों को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है मृदा जो पोषक तत्वों को बढ़ाने में? डॉक्टर,
2: जैसा कि आप जानते हैं कि हमें जितने भी खादों के बारे में डॉक्टर साहब मीना ने जिक्र किया है, एक्चुअली जो हरी खाद है ये तो हमेशा सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के साथ साथ में उसका ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ाती है और साथ साथ में मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ में उसके जो भौतिक गुणों में उनमें भी काफी सुधार लाती है। तो हमें समय समय पर इसका उपयोग करना चाहिए और अगर हम वो उपयोग नहीं कर पाते हरी खाद का तो हमें दो फसलों के बीच में एक दलहनी फसल जरूर लेनी चाहिए। उसमें क्या होता है, दलहनी फसल काफी मात्रा में नाइट्रोजन भी फिक्स करती है और हमारा ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ाने में मदद करती है और उसमें हम केवल फली का उत्पादन ले लें यानी दाना का उत्पादन ले लें, बाकी पौधों को अगर सॉइल में इनकॉर्पोरेट कर देते तो हरी खाद का भी काम करता है। एक तो ये बात होगी, दूसरी बात है कि जितनी भी हमारे पास पशुओं की संख्या आजकल संसार में सबसे ज्यादा है और आज हम काफी बड़ी मात्रा में लगभग 2,00,000 करोड़ के करीब रुपए खर्च करते हैं विदेशों या तो खाद आयात करने में या उनके ऊपर सब्सिडी देने में, जबकि हमारे जो अपने संसाधन है वो वेस्ट हो रहे हैं जिनकी वजह से नदियां भी पोल्यूट हो रही हैं और साथ साथ में हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी बाहर से मंगाने पड़ते हैं तो उनका भी सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। अगर हम इन सबको बायोगैस के माध्यम से, एनारोबिक डाइजेशन के माध्यम से उनका खाद भी बनाए, साथ में उसका गैस का उपयोग भी करें तो ये हमारे मिट्टी के स्वास्थ्य को भी सुधारेगा, साथ साथ में हमारा पैसा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर जाता है उसकी भी बचत करेगा और हमारे गैस के माध्यम से भी हमें स्वावलंबी गांव बन सकते हैं। और आजकल इस गैस के माध्यम से हम गाड़ियां भी चला रहे हैं तो उसका भी काफी बड़ा लाभ हो सकता है और जबकि ये हमें बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ में मैं ये कहना चाहूंगा, जितने हमारे देसी खाद अगर बनाने का जैसे कंपोस्ट भी बनाते हैं तो उसमें भी आजकल बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, यानी कि कंपोस्ट बनाते समय उन चीजों को अगर हम इनकॉर्पोरेट लगा देंगे तो एक तो कंपोस्ट जल्दी बनेगा, कंपोस्ट की गुणवत्ता बेटर होगी, इसमें एक तो वेस्ट डिकम्पोजर होगा, इसके साथ साथ में हमारे पास कुछ जैविक खाद है जिनके माध्यम से दे सकते हैं या कुछ जैविक ऐसी भी चीजें हैं जो फफूंद नाशक है, जैसे ट्राइकोडर्मा वीडी का जिक्र किया था, सिडोमोनस का जिक्र किया था, उनका भी उपयोग कर सकते हैं। तीसरी बात है, हमें एक तो खरपतवारों का प्रबंधन बहुत अच्छी तरह करना है जिससे कि हम कीड़े के प्रकोप को या जो नुकसान को भी कम कर पाएं। एक पानी हमारे पास सीमित संसाधन है तो पानी का सदुपयोग होना या सही मात्रा में उपयोग होना बहुत जरूरी है। एक्सेस पानी हमारे न्यूट्रिएंट को भी लॉस करता है, खरपतवारों को भी बढ़ावा देता है, कीड़े और बीमारी को भी बढ़ावा देता है, तो इसका उपयोग ठीक से होना बहुत जरूरी है। और कई बार जब कम बारिश होती है तो उसमें और ज्यादा इसका महत्व बढ़ जाता है। तो इस साल हमारे किसानों को बहुत जागरूक रहना चाहिए कि बरसात से पहले ही अपने खेत की मेड़ मजबूत रखें और अधिक से अधिक पानी खेत के अंदर जाए और बह के ना जाए, क्योंकि जो पानी बह के जाता है वो न्यूट्रिएंट को भी लेके जाता है और नुकसान करता है। तो हमारे किसानों को उन सब बातों का विशेष ध्यान रखना है।
1: ये बहुत जरूरी बात आपने कही कि जल संरक्षण भी साथ साथ बहुत जरूरी है। उड़ीसा से हमारे साथ एक श्रोता जुड़े हैं, देशदीप दास जी। हेलो
3: जी, नमस्ते।
1: नमस्कार
3: जी, मेरा प्रश्न है
1: जी,
3: बीज उपचार करने से फसलों को बीमारियों से कैसे बचाया जा सकता है?
2: मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फसलों बीज उपचार करना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बीज के माध्यम से ही अगली फसल में जाती हैं, या अगर हम उसको बीज को उपचार कर देते तो मिट्टी में भी कुछ अगर फफूंद है तो उसका रोकथाम हो जाती है, जमाव भी अच्छा होता है, पौधा बहुत हेल्दी होता है। और बीज उपचार करने के लिए जितनी भी फसलें हैं उनके साथ साथ में दिया होता है हमें किस चीज़ से उपचार करना है। जैसे कि मैं छोटा एक एग्जांपल लेता हूँ कि हमारे यहाँ ब्लैक समेटिक गेहूँ में बीमार वो आती है और उससे बाली काली हो जाती है, उसमें दाना नहीं बनता है, और यही इसी किस्म के अगर बीज का हम बार बार उपयोग करेंगे तो काफ़ी बड़ा नुकसान होता है। लेकिन इसमें अगर हम सही से फफूंदनाशक दवाई से बीज उपचार कर देंगे तो इस बीमारी का स्वतः ही नियंत्रण हो जाएगा, तो आपके आगे फसल में भी नहीं जाएगा, बीज भी अच्छा पैदा कर पाओगे और बहुत अच्छा कर पाओगे। तो

0: बीज उपचार बहुत ही जरूरी है। बीज उपचार के लिए दोनों चीजें उपलब्ध हैं, रासायनिक भी उपलब्ध हैं और आजकल जैविक भी कई सारे ऐसे संसाधन हैं जो कि जिनकी रिकमेंडेशन की जाती है कि बीज बोने से पहले हम उसका उपचार कैसे करें। कई बार हमें जो हमारी प्योद होती है, जैसे हमने रुपाई करनी है, तो उसमें भी फफूंदनाशक दवाई भी काफी प्रयोग किया जाता है और साथ साथ में कुछ जीवाणु खाद के टीके भी होते हैं जिनका बीज के माध्यम से भी प्रयोग करते हैं और साथ साथ में इसको पौध को भी इसमें अगर उसको उपचारित करके लगाते हैं तो खाद की भी बचत होती है और किसान का उत्पादन लागत बढ़ती है। कुछ हमारे खाद के टीके ऐसे हैं, जैसे आपकी धान की फसल है उसमें ब्लूग्रीन एल्गी है या अजूला है, तो ये भी ऐसी चीजें हैं जो कम खर्चे में किसानों को ज्यादा लाभ देती है, इनका भी उपयोग कर सकते हैं।
1: छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं इंद्रभान सिंह जी।
2: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासिया कॉलेज जिला कुंजा छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ
1: जी।
2: प्रश्न यह है, मैदानी भागों में की जाने वाली खेतों में तो कृषि उपकरणों का उपयोग आज किया जाने लगा है, लेकिन ऊंची नीची जमीनों पर और सुदूर पहाड़ियों में की जाने वाली खेती में जनजातीय लोग नवीन उपकरणों का प्रयोग नहीं करते हैं, ऐसा क्यों?
1: डॉक्टर मीना आप क्या कहेंगे?
3: जैसे इंद्रमान जी जो पूछ रहे हैं कि जैसे ऊंचे नीचे जो एरिया है प्लेन में, तो देखो अभी मैकेनाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है और अभी हम बहुत सारे जैसे मेजोरिटी हमारे किसान भाई मतलब मशीनरी का उपयोग करते हैं, लेकिन जैसे ऊंचे नीचे भागे तो वहां पे क्या ना एक विशेष स्पेशल मशीनरी की जरूरत होती है, मतलब छोटी मशीनरियों की जरूरत होती है जो उसको हम आसानी से मतलब उन पे वहाँ पे एरिया में ले जा सकते हैं, कर सकते हैं। दूसरा उनका था कि जनजाति जो पीपल भाई हैं कि वो उनका उपयोग मतलब कम कर पा रहे हैं, तो देखो सबसे बड़ी बात वही है कि जैसे एक तो उनके अवेलेबलता मतलब वो ऐसी छोटी मशीनें अवेलेबल हैं कि नहीं है, दूसरी एक किसान की जागरूकता, जैसे हम जो जनजाति किसान भाई हैं अभी उनमें मतलब मशीनरी के बारे में अवेयरनेस नहीं है, बहुत कम लोग जान पाते हैं कि किसके लिए कौन सी मशीन उपलब्ध है, और जैसे छत्तीसगढ़ में है या एमपी में है अपने बहुत सारे जो इंजीनियरिंग मशीनरी के जो संस्थान हैं और वहाँ पे छोटी छोटी मशीनें अवेलेबल हैं, बस बात यही है कि उनको किसान तक पहुँच नहीं है और किसान को भी उनके बारे में मतलब नॉलेज नहीं है कि
1: कोई ऐसा हेल्पलाइन नंबर अगर जिसपे किसान कॉल कर सकते हो और जो उनकी जिज्ञासा है, जो अगर समस्या है वो पूछ सकते हो।
0: मैं इसमें दो बार ऐड करना चाहूंगा कि हमारा जो और भारत सरकार है उन्होंने एक अलग से हेल्पलाइन नंबर दे रखा है किसान कॉल सेंटर का, और वो पूरे देश में है और कहीं का किसान अगर वहां से कॉल करता है तो उसके राज्य के ही हेल्पलाइन सेंटर पर जाएगा और उसकी जिज्ञासा का समाधान होगा और जो भी जानकारी उसको मिलेगी। ये नंबर है 1800 1551 1551। तो ये हमारा किसान कॉल सेंटर का नंबर, इसी तरह पूसा संस्थान का भी कॉल सेंटर का नंबर है और वो है 1800118989, तो उसमें भी कर सकते हैं। पूसा में एक और भी नंबर है जिसमें आपका यहाँ का एसटीडी कोड लगाएंगे 0112584 1670, ये भी एक नंबर है जो पूसा संस्थान में जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार के जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हैं उनके भी नंबर हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ एक और जो भी हमारे एक साथी ने क्वेश्चन पूछा था ऊंची नीची जमीनों में, देखो जो ऊंची नीची जमीनों में जब टेक्नोलॉजी गई है तभी बहुत उत्पादन हुआ, खासकर अगर मिसार का हरियाणा का नंबर बात करें या राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे स्प्रिंकलर इरीगेशन और ड्रिप इरीगेशन से जहाँ पे कोई पैदावार नहीं होती थी आज वो एरिया बहुत ही उपजाऊ हो चुके हैं। तो ये टेक्नोलॉजी तो जा रही है, लेकिन हाँ क्योंकि जनजाति क्षेत्र में कम जा रही है उसको जाने के लिए उनके स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी भी वहाँ पे डेवलप हो रही है और प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन और भी प्रयास करने की आवश्यकता है
1: जी। हरियाणा के हिसार से जुड़े हैं राजेंद्र जी।
4: नमस्कार जी, प्रियंका जी और विशेषज्ञ जी को भी नमस्कार जी।
3: नमस्कार जी।
4: प्रियंका जी, आपने मनोज कुमार की फिल्म के बारे में वो गीत बताया, अच्छे बताए, और धरती कहे पुकार के ये भी
1: जी,
4: एक
1: जी राजेंद्र जी हमारे पास समय कम है, अपना प्रश्न पूछें।
4: जी, जो शहर का वेस्ट पानी होता है वो सीधा खेतों में जाता है, इसमें केमिकल तरह तरह के केमिकल मिले होते हैं, इसको सफाई करके अगर पानी को खेतों में डाले जाए तो बंजर होने से खेती को बचाया जा सकता है, और क्या किसी की खेती बंजर हो चुकी है तो क्या इस पे कोई लोन मिलना है?
1: जी डॉक्टर मीना।
3: हाँ, तो अभी राजेंद्र जी जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, देखो ऐसा नहीं है, और हमारे जो सरकारें हैं वो जितना भी हमारा वेस्ट आ रहा है उसको ट्रीट करके, जैसे हमारे स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं और ये सब ट्रीट करके ही उसको डिस्पोज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा यदि मान लो उनको देखने में आया है तो उसको क्या है ना, थोड़ा अपने लेवल पे भी किसान भाई इकट्ठा करके उसको ट्रीट कर सकते हैं। अब उसमें दो तरह की होता है, कभी कभी जैसे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, कभी कभी साल्ट की प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज़ को पहले हम उसका क्या है ना, जो भी वेस्ट आ रहा है उनके एरिया में उसको पहले जाँच करा लें, क्योंकि जाँच से ही हमें एग्जैक्ट पता लगेगा कि इसमें किस तरह की समस्या है, कोई केमिकल की समस्या है कि साल्ट की समस्या है या बायोलॉजिकल सिस्टम, क्योंकि अलग अलग तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। और उसका एक बार जब पता लग

0: गई, अम्लीयता हो गई, उस कारण से कभी कभी, क्योंकि एसिडिक नेचर का भी तो पीएच डाउन हो जाता है, तो उनको सुधार के लिए बहुत सारे प्रोग्राम हैं, तो उनकी मदद वो ले सकते हैं।
1: डॉक्टर दबास, आपसे अंत में ये सवाल जानना चाहूंगी, क्योंकि उर्वरक और का जो अत्यधिक उपयोग होता है उससे हमारे पर्यावरण को, हमारे स्वास्थ्य को, जो मानव स्वास्थ्य की बात करते हैं, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है?
2: देखो, एक्सेस उर्वरक, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कोई भी चीज हम अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं उसका बहुत ही नुकसान होता है, और यही उर्वरकों का हाल है। जब हम उसको सही, हम फसल से ज्यादा या संतुलित मात्रा में प्रयोग करते हैं तो उसमें से फसल तो उसका कम प्रयोग कर पाती है, लेकिन उसमें से अधिकतर भाग या तो वातावरण में जाता है जो उसको प्रदूषित करता है, या मिट्टी में या पानी के होते हुए हमारे पानी को भी प्रदूषित करता है, क्योंकि हमें सही मात्रा में उपयोग करना बहुत जरूरी है। और हमें यह भी देखना है कि हमारी मिट्टी कैसी है, उसमें कौन से किस्म के उर्वरक का और कब और कितना उपयोग करना है, तो ये जानकारी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से लग सकती है। तो हर किसान को अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में रहना चाहिए और अपने जिले के बारे में जाने, हमारी कौन सी समस्या, उनका समाधान क्या है, उनकी रिकमेंडेशन क्या है, क्योंकि यहाँ पे पूरे भारत सरकार के लेवल पे हमको एक रिकमेंडेशन नहीं बता सकते, वो जगह पे वेरी करेगी। और उसको अगर सही मात्रा में देखना तो हमें कृषि विज्ञान केंद्र से या कृषि विश्वविद्यालय से या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो संस्थान है उनके माध्यम से मिलकर उसको हम टैकल कर सकते हैं। किसानों को संगठित करके होके एक सामूहिक प्रयास करते हैं उसका ज्यादा लाभ मिलता है। पानी का भी हमें प्रॉपर सदुपयोग करना चाहिए और मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखना है, तो आपको समेकित पोषक तत्वों प्रबंध करना बहुत ही जरूरी है।
1: तो जो समय जो कह रहा है, जो आज की जरूरत है कि हम मृदा स्वास्थ्य को समझें, उर्वरकों का संतुलित और वैज्ञानिक उपयोग करें और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए खेतों को सुरक्षित रखें। डॉक्टर दबास, डॉक्टर मीणा, आप दोनों का धन्यवाद, आपने इस चर्चा में भाग लिया। अपने श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी पब्लिक स्पीक में एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार।
2: नमस्कार।

0: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है काव्य अंजुमन। आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हिंदी और उर्दू काव्य रचनाओं की गोष्ठी आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष आयोजित की गई। लीजिए सुनिए उस गोष्ठी के संपादित अंश। प्रतिभागी हैं डॉ अंबर प्रियदर्शी, अनिता श्रीवास्तव तमन्ना, सूरज राय सूरज, मिन्हास कुरैशी, सुरेश मिश्र विचित्र, यूनस अदीब, वंदना सोनी विनम्र और नवनीता दुबे नुपुर।
1: आप और हम सब जानते हैं कि 1936 से आकाशवाणी शुरू हुई थी और हम 90 वर्ष के गौरवशाली वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। उसी शुभ अवसर पर आप और हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हम लोगों को इस बेहतरीन महफिल में याद किया। और इस महफिल के शुरुआत में, चूँकि हमारी भारतीय परंपरा रही है कि हम कोई भी शुभ कार्य के लिए ज्ञान की देवी सरस्वती जी को याद करते हैं, तो मैं सरस्वती वंदना के लिए वंदना सोनी विनम्र को बड़ी विनम्रता के साथ आग्रह करता हूँ कि वो आएँ और ज्ञान की देवी सरस्वती माँ की आराधना में अपने उद्गार व्यक्त करें।
2: माँ बीड़ा पाणी के श्री चरणों में नमन करती हूँ। कुछ पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ। विश्व

0: ये थी वंदना सोनी। अब मैं बाकायदा काव्य अंजुमन का प्रोग्राम शुरू करता हूँ। कभी सरदार पंछी ने यूँ कहा था कि मैंने तुम्हारे नाम की तितली दबोच ली, मैंने तुम्हारे नाम की तितली दबोच ली, सब रंग कायनात के मुट्ठी में आ गए। तो आप यकीन जाने दुनिया के मुख्तलिफ रंग, समाज की बेपरवाही, तमाम रंगों को आप हमारे यहाँ पर जो भी साहित्यकार उपस्थित हैं उनकी ज़बानी उनके कलाम से सुनेंगे। मैं सबसे पहले यहाँ पर मंडला से आई हुई एक शायरा कवित्री डॉक्टर नवनीता नुपुर जी से आग्रह करता हूँ कि वो अपनी तख्लीकात से हम सबको नवाजें। उनका स्वागत है।
1: मंचासीन सभी सम्मानित गुणीजनों को नमस्कार, प्रणाम करती हुई सबसे पहले मैं माँ सरस्वती की वंदना के लिए चार पंक्तियाँ पढ़ रही हूँ। दोहे हैं वंदन

दो काट। और अंत में मेरी गजल है जो मनुष्य की प्रवृत्तियां हैं उस पर सुनिएगा। रूह में नफरतें बसी हैं मगर लब पे वो मुस्कान

खबर खुद की ही नहीं गैर की पीर से क्या लेना उन्हें गैर की

زہریلی جباں رکھتے ہیں.

वहीयों में जाने मेरे कत्ल का, जाने मेरे कत्ल का।

उनके हर गम में शरीक होते हैं, उनके हर गम में हम भी शरीक होते हैं। कहाँ किसी गैर का, कहाँ किसी गैर का हम एहसान रखते हैं, कहाँ किसी गैर का हम एहसान रखते हैं। अंतिम देखिए, जिनका अदना

0: महल अपना आलीशान रखते हैं।
1: अभी आप नूपुर की मधुर धुन में उनकी काव्य रचना समाप्त कर रहे थे। अब मैं एक ऐसे शायर को आपके रूबरू पेश कराना चाहता हूँ जो सिवनी से हमारे जबलपुर में तशरीफ़ लाए हैं। कैफ भोपाली किन चार मिसरों से उन्हें दावत कलाम देता हूँ कि निर्वाण घर में बैठ के होता नहीं कभी, निर्वाण घर में बैठ के होता नहीं कभी, बुद्ध की तरह कोई मुझे घर से निकाल दे और पीछे, बुद्ध की तरह कोई मुझे घर से निकाल दे, पीछे बंधे हैं हाथ मगर शर्त है सफ़र, किससे कहें के पाँव का कांटा निकाल दे। बड़े आदर और सम्मान के साथ मिन्हाज कुरैशी माइक पर।
2: चार पंक्ति समाप्त फरमाएं। वही तरतीब वही तर्ज़े बयां हैं अब भी, वही तरतीब वही तर्ज़े बयां हैं अब भी, नर्म लहजा है वही शीरी ज़ुबां है अब भी, नर्म लहजा है वही शीरी ज़ुबां है अब भी। उसने अल्फाज करीने से सजा कर हमको, उसने अल्फाज करीने से सजा कर हमको, ये बताया है कि तहजीब यहाँ है अब भी, ये बताया है कि तहजीब यहाँ है अब भी। और चार मिसरे और देख लें कि तुम इल्मो हुनर की हर शम्मा को जला लेना, तुम इल्मो हुनर की हर शम्मा को जला लेना, तहजीब के गुलशन को फिर खूब सजा लेना, तुम इल्मो हुनर की हर शम्मा को जला लेना, तहजीब के गुलशन को फिर खूब सजा लेना, देना है जो दुनिया को पैगाम मोहब्बत का, किरदार को तुम अपने आईना बना लेना, किरदार को तुम अपने आईना बना लेना। और ये चार मिसरे और देख लें कि तलख लहजे ने क्या असर डाला, तलख लहजे ने क्या असर डाला, दिल को ज़ख्मों से आज भर डाला, तलख लहजे ने क्या असर डाला, दिल को ज़ख्मों से आज भर डाला, करके इंसानियत को शर्मिंदा कितने रिश्तों का खून कर डाला, करके इंसानियत को शर्मिंदा कितने रिश्तों का खून कर डाला। और एक मतलब दो शेर देख लें कि हुक्म दूली करूं उसकी कहाँ हिम्मत मेरी, हुक्म दूली करूं उसकी कहाँ हिम्मत मेरी, जिसके कदमों के तले रखी है जन्नत मेरी, हुक्म दूली करूं उसकी कहाँ हिम्मत मेरी, जिसके कदमों के तले रखी है जन्नत मेरी। और बतौर खास ये शेर देख लें कि एक कमज़र्फ का एहसान लिया था मैंने, एक कमज़र्फ का एहसान लिया था मैंने, उम्र भर लानतें करती रही गैरत मेरी, एक कमज़र्फ का एहसान लिया था मैंने, उम्र भर लानतें करती रही गैरत मेरी। और ये शेर भी देख लें कि तोड़ दी मैंने हदें आज उसूलों की सभी, तोड़ दी मैंने हदें आज उसूलों की सभी, इस कदर

0: हुआ करंज मांस चरौंजी, इन्हें बेच पैसे भी पाए। तो अंतिम है कि वेद प्राण और ज्ञानी जन, वेद पुराण और ज्ञानी जन यही कहते आए हैं, सो गौ दान पुण्य पाया है जिसने पेड़ लगाए हैं। तो आओ मिलकर आज एक हम मन में बात बिठाएं, तो आओ मिलकर आज एक हम मन में बात बिठाएं, और छाया फल दे हमें हमेशा, हम ऐसे पेड़ लगाएं, हम ऐसे पेड़ लगाएं। अंतिम रचना और है, कुछ है तो कुछ नहीं है, कुछ है तो कुछ नहीं है, जो है सो सब सही है। कुछ है तो कुछ नहीं है, जो है तो सब सही है, हम सबकी हालत यही है, कहने वाले ने खूब कही है, जो है सो सब सही है। अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो अस्पताल नहीं है, दोनों हैं तो दवाई नहीं, दोनों हैं तो दवाई नहीं है, दवाई है तो सही नहीं है, सही है तो मिलती नहीं, सही है तो मिलती नहीं है, जो है सो सब सही है, कहने वाले ने सही कही है, कुछ है तो कुछ नहीं है। अंतिम है, मोटर है तो डीजल नहीं है, मोटर है तो डीजल नहीं है, डीजल है तो सवारी नहीं है, सवारी है तो जाति नहीं है, कुछ है तो कुछ नहीं है, जो है सो सब सही है। सब्जी है तो व्यापारी नहीं है, सब्जी है तो व्यापारी नहीं है, व्यापारी है तो खरीदते नहीं हैं, खरीदते हैं तो कीमत नहीं है, कीमत है तो मिलती नहीं है, कीमत है तो मिलती नहीं है, जो है सो सब सही है, कुछ है तो कुछ नहीं है, मजदूर है तो काम नहीं, मजदूर हैं तो काम नहीं है, काम है तो मिलता नहीं है, मिलता है तो करते नहीं हैं, करते हैं तो दाम नहीं है, दाम है तो सही नहीं है, जो है सब सही है तो कुछ नहीं है, जो है तो सब सही है।
1: इस खूबसूरत कार्यक्रम में आकाशवाणी के जो हम गौरवशाली 90 वर्ष मना रहे हैं, आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। अब मैं एक ऐसी कवित्री, ऐसी शायरा को आपके रूबरू पेश करना चाहता हूँ, जिन्होंने न सिर्फ जबलपुर में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जबलपुर का नाम अपने कलाम के जरिए रोशन किया हुआ है। एक कोहना मश्क शायरा जिनके कई किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं, जिन्हें आप और हम अनीता श्रीवास्तव तमन्न के नाम से जानते और पहचानते हैं, अब्बास ताबिश के इन चार मिसरों से उन्हें दावत कलाम देता हूँ कि दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं, दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं, हम परिंदे कहीं जाते हुए मर जाते हैं, हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस जो ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते हैं। दावत कलाम अनीता श्रीवास्तव तमन्ना जी,
2: बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो आकाशवाणी को उसके 90 वर्ष में प्रवेश के लिए मुबारकबाद देती हूँ और आप स्वामी हजरात को सलाम पेश करती हूँ। मैं मुख्तलिफ किस्म के कुछ अशार पेश कर रही हूँ, समाप्त फरमाइएगा। अर्ज यूँ किया है सबको शिकायत जमाने से फिर भी, है सबको शिकायत जमाने से फिर भी, खुल के मगर कोई कहता नहीं है, है सबको शिकायत जमाने से फिर भी, खुल के मगर कोई कहता नहीं है, खुद को सब अच्छा बताते हैं लेकिन, खुद को सब अच्छा बताते हैं लेकिन, किसी को किसी पे भरोसा नहीं है, किसी को किसी पे भरोसा नहीं है। और यूँ अर्ज किया है कि जायजा अपने अमाल का लेते रहिए, आज बहुत ज़रूरत है, जायजा अपने अमाल का लेते रहिए, कब कहाँ जाने कोई हश्र बपा हो जाए, जायजा अपने अमाल का लेते रहिए, कब कहाँ जाने कोई हश्र बपा हो जाए, और हर बुरे अमल से हम कर लें तमन्ना तौबा, इससे पहले कि खुदा हमसे खफा हो जाए, इससे पहले कि खुदा हमसे खफा हो जाए। और आज बड़ी मजबूरियाँ देखी जाती हैं, तो यूँ कहती हूँ कि मजबूर हर कोई है तो मुख्तार कौन है, मजबूर हर कोई है तो मुख्तार कौन है, हर कोई गमजदा है तो गमख्वार कौन है, मजबूर हर कोई है तो मुख्तार कौन है, हर कोई गमजदा है तो गमख्वार कौन है, हर शख्स है तमन्ना वफा के लिबास में, सब बेकसूर हैं तो गुनहगार कौन है, सब बेकसूर हैं तो गुनहगार कौन है। और अर्ज यूँ किया है कि कहती हूँ जो भी बात हर बात काटता है, कहती हूँ जो भी बात हर बात काटता है, न जाने कैसे वो अपनी रात काटता है, कहती हूँ जो भी बात हर बात काटता है, न जाने कैसे वो अपनी रात काटता है, और समझता है वो खुद को इस कदर जहीन, समझता है वो खुद को इस कदर जहीन, खुद बेवफा है दर से वफा बांटता है, खुद बेवफा है दर से वफा बांटता है। और ये भी देख लीजिए कि किसी भी बात का
3: उस पर असर

0: होता, किसी भी बात का उस पर असर नहीं होता। अजीब शख्स है वो, बाखबर नहीं होता, किसी भी बात का उस पर असर नहीं होता। अजीब शख्स है वो, बाखबर नहीं होता। तमन्ना काश कि उसको खबर ये हो जाए, तमन्ना काश कि उसको खबर ये हो जाए, जो बेशऊर है वो मोतबर नहीं होता, जो बेशऊर है वो मोतबर नहीं होता। और आके इस दुनिया में न पूछिए क्या क्या देखा, आके इस दुनिया में न पूछिए क्या क्या देखा। और जुल्म हंसता हुआ खुशियों को तड़पता देखा, जुल्म हंसता हुआ खुशियों को तड़पता देखा। और जिनके घर में जवां बेटी कोई होती है अगर, जिनके घर में जवां बेटी कोई होती है अगर, मैंने अक्सर उन्हें नींदों को तरसता देखा, मैंने अक्सर उन्हें नींदों को तरसता देखा। और एक गजल के दो चार शेर पेश कर रही हूँ कि रह के हदों में जो कम बोलते हैं,
1: अच्छी गजल है, वाह वाह।
0: रह के हदों में जो कम बोलते हैं, महक से खुद उनके कदम बोलते हैं। रह के हदों में जो कम बोलते हैं, महक से खुद उनके कदम बोलते हैं। और बढ़ के हदों से जो बोलते बहुत हैं, बढ़ के हदों से जो बोलते बहुत हैं, वफाओं का अपनी भरम खोलते हैं, वफाओं का अपनी भरम खोलते हैं। और आदाब उल्फत उन्हें भी सिखाओ, आदाब उल्फत उन्हें भी सिखाओ, जो सबसे मोहब्बत से कम बोलते हैं, जो सबसे मोहब्बत से कम बोलते हैं। और अजब दौर है ये, अजब है जमाना, अजब दौर है ये, अजब है जमाना, अब इंसान से पहले ये गम बोलते हैं, अब इंसान से पहले ये गम बोलते हैं। और जमी आसमां ये सितारे नजारे, जमी आसमां ये सितारे नजारे, उसी रब के हर सू करम बोलते हैं, उसी रब के हर सू करम बोलते हैं। और जिधर भी निगाहें उठाओ तमन्ना, जिधर भी निगाहें उठाओ तमन्ना, मोहब्बत से ज्यादा सितम बोलते हैं, मोहब्बत से ज्यादा सितम बोलते हैं। और एक गजल तरन्नुम से पेश कर रही हूँ, एक मोहब्बत का रंग छेड़ रही हूँ, समाज की तो बातें बहुत हो गई जी। हम तुमसे मोहब्बत है, तुम्हें हमसे मोहब्बत है, हम तुमसे मोहब्बत है, तुम्हें हमसे मोहब्बत है, हम तुमसे मोहब्बत है, तुम्हें हम

जानम एक आग का दरिया है, डूबेगा वही इसमें जिसे इश्क की हसरत है, डूबेगा वही इसमें जिसे इश्क

0: इश्क की लज्जत है। शुक्रिया।
1: अभी आप तो रूबरू थी अनीता श्रीवास्तव तमन्ना जी गजल के मुख्तलिफ रंगों के साथ। अब मैं बड़े आदर सम्मान के साथ एक उभरती हुई कवित्री, एक उभरती हुई

0: शायरा वंदना सोनी विनम्र को मखमूर शहीदी के शेर से उनको दावत कलाम देता हूँ कि मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं, मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर सांस पर गाया नहीं जाता। माइक पर वंदना सोनी।
1: सम्मानित मंच को नमन करती हूँ और एक मुक्तक से शुरुआत।
2: आज किस्सा तमाम हो जाए, आज किस्सा

0: जाए। और देखें एक गजल के कुछ शेर कि दे दिया तुमने दगा तो अब सगा किसको कहें, दे दिया तुमने दगा तो अब सगा किसको कहें, और तू बसा रग रग में मेरी बेवफा किसको कहें। और जिंदगी में दर्द थे तेरी मोहब्बत थी दवा, उस दवा में भी मिलावट अब दवा किसको कहें, कि उस दवा में भी मिलावट अब दवा किसको कहें। और प्यार के पिंजरे से चाहत के परंदे उड़ गए, कि प्यार के पिंजरे से चाहत के परंदे उड़ गए, अश्क से तर आंखों का भी रत जगा किसको कहें। और इश्क में मिलता दगा है था पता फिर भी किया, और ये खता खुद की हमारी तू बता किसको कहें, कि ये खता खुद की हमारी तू बता किसको कहें। और ये तमाशा बंद कर दे, ये तमाशा बंद कर दे, रहने दे तन्हा मुझे, जख्म तुमने दे दिए मरहम लगा किसको कहें, कि जख्म तुमने दे दिए मरहम लगा किसको कहें। और एक गीत है छोटा सा देश के लिए,
1: स्वागत है
0: कि इस

0: दोस्तों, काव्य अंजुमन का जो बहुत सफल संचालन कर रहे हैं, मैं उन्हें दावते सुखन दे रहा हूँ, शहर के बेहतरीन शायर यूनुस अदीब साहब को।
1: शुक्रिया। एक बार पुनः आकाशवाणी के गौरवशाली 90 साल में हम शामिल हो रहे हैं। आप तमाम जो भी यहाँ साहित्यकार बैठे हैं उनकी जानिब से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ इस सफल काव्य अंजुमन के प्रोग्राम की। अर्ज़ किया है कि पनघट भी, खेत भी, ये परिंदे भी, नाव भी। पनघट भी, खेत भी, ये परिंदे भी, नाव भी, रहने लगी उदास ये पीपल की छांव भी। रहने लगी उदास ये पीपल की छांव भी, जब से शहर की आबो हवा इसमें घुल गई, बेरंग हो गया मेरा छोटा सा गांव भी, बेरंग हो गया मेरा छोटा सा गांव भी। अर्ज़ किया है कि जुल्मत की बादशाही को ऐसे मिटा के चल, जुल्मत की बादशाही को ऐसे मिटा के चल, इल्मो अदब का जहन में सूरज उगा के चल, इल्मो अदब का जहन में सूरज उगा के चल, सर को उठा के देख तू महलों को शौक से, ये दर फकीर का है यहाँ सर झुका के चल, ये दर फकीर का है यहाँ सर झुका के चल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतें। ये दर फकीर का है यहाँ सर झुका के चल। अर्ज किया है कि चाहत में छलकने लगे जब यार के आंसू, चाहत में छलकने लगे जब यार के आंसू, अनमोल हो गए हैं मेरे प्यार के आंसू, अनमोल हो गए हैं मेरे प्यार के आंसू, और डालो ना पसो पेश में तुम साफ बता दो, इनकार के आंसू हैं कि करार के आंसू, इनकार के आंसू हैं कि करार के आंसू। अर्ज किया है कि उसका गुरूर शाम के सूरज सा ढल गया, उसका गुरूर शाम के सूरज सा ढल गया, दौलत चली गई है तो लहजा बदल गया, दौलत चली गई है तो लहजा बदल गया, दिल बुझ गया है उसका यही सोचते हुए, दिल बुझ गया है उसका यही सोचते हुए, दिल बुझ गया है उसका यही सोचते हुए, बुझता हुआ चिराग था ये कैसे जल गया, बुझता हुआ चिराग था ये कैसे जल गया, पोशीदा हाथ किसके थे मुझको खबर नहीं, पोशीदा हाथ किसके थे मुझको खबर नहीं, मैं गिर रहा था और अचानक संभल गया, मैं गिर रहा था और अचानक संभल गया, गुमसुम सी एक बेबा के आंसू ने ये कहा, गुमसुम सी एक बेबा के आंसू ने ये कहा, एक आदमी के जाने से सब कुछ बदल गया, एक आदमी के जाने से सब कुछ बदल गया। अर्ज किया है कि आँखों से मेरी दूर वो जा भी नहीं सकता, आँखों से मेरी दूर वो जा भी नहीं सकता, दिल के किसी कोने में समा भी नहीं सकता, दिल के किसी कोने में समा भी नहीं सकता, सब मेरी तबाही का सबब पूछ रहे हैं, सब मेरी तबाही का सबब पूछ रहे हैं, मैं खुल के तेरा नाम बता भी नहीं सकता, मैं खुल के तेरा नाम बता भी नहीं सकता, दुखती रगों पे रखती है ये इस तरह उंगली, दुखती रगों पे रखती है ये इस तरह उंगली, दुनिया से मैं गम अपने छुपा भी नहीं सकता, दुनिया से मैं गम अपने छुपा भी नहीं सकता, दुनिया से मैं गम अपने छुपा भी नहीं सकता, खुशफहमी में जीता है ये मगरूर समंदर, खुशफहमी में जीता है ये मगरूर समंदर, प्यासा है अपनी प्यास बुझा भी नहीं सकता, प्यासा है अपनी प्यास बुझा भी नहीं सकता, और आए मौत तरस खा मेरे बीमार बदन पर, आए मौत तरस खा मेरे बीमार बदन पर, अब बोझ में सांसों का उठा भी नहीं सकता, अब बोझ में सांसों का उठा भी नहीं सकता। हमारी समाज कलमियां चार में से आखिर में कि मतलब की धूप छाँव जो उससे ना मिल सकी, मतलब की धूप छाँव जो उससे ना मिल सकी, बूढ़े शजर को घर से अलग कर दिया गया, बूढ़े शजर को घर से अलग कर दिया गया, नींदें निचोड़ ली मेरी आँखों से और फिर, नींदें निचोड़ ली मेरी आँखों से और फिर, ख्वाबों की रह गुजर से अलग कर दिया गया, ख्वाबों की रह गुजर से अलग कर दिया गया। बहुत शुक्रिया। अब मैं इसके बाद जबलपुर ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में जिन्होंने अपनी शायरी के हवाले से अपनी शनाख्त कायम की और जबलपुर का नाम रोशन किया, उनके मुख्तलिफ किताबें भी मंजरियाम पर आ चुकी हैं, मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ दावत कलाम देता हूँ कि वो आएँ और अपनी बेहतरीन रचनाओं से हम सबको समाप्त करें। माइक पर अंबर प्रियदर्शी।
2: डॉक्टर अंबर प्रियदर्शी का आप सबको प्रणाम। आकाशवाणी का 90 वर्ष में प्रवेश, सन 73 में मैंने पहली काव्य गोष्ठी आकाशवाणी जबलपुर में पढ़ी थी और आकाशवाणी का स्वर्णिम युग मैंने देखा है। यहाँ बहुत सारे अधिकारी बैठे हैं, उनसे मेरा सालों साल संपर्क रहा है और उन्होंने मुझे आकाशवाणी में बुलाया है। मैं आप सबको आकाशवाणी के 90 वर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ। मेरी जिंदगी में शामिल जब से तेरी दुआ है, मेरी जिंदगी में शामिल जब से तेरी दुआ है, सच मानिएगा इसने मेरी रूह को छुआ है, सच मान

अब मुश्किलें भी आकर छूती हैं पाँव मेरे, तेरी दुआ का मुझ पर ऐसा असर हुआ है, तेरी दुआ का मुझ पर ऐसा असर हुआ है, मेरी जिंदगी में शामिल जब से तेरी दुआ है। एक रचना और सुनिएगा तुम।

और एक गीत सुनिएगा, गरल तन्हाइयों का और अब मैं पी नहीं सकती, गरल तन्हाइयों का और अब मैं पी नहीं सकती।

0: हूँ तो खुल के रो नहीं सकती, अगर रोना भी मैं चाहूँ तो खुल के रो नहीं सकती। गरल तन्हाइयों का और अब मैं पी नहीं सकती। और ये अंतिम बंद सुनिएगा,
1: स्वागत
0: जरा

0: नहीं
1: वाह क्या
0: सकती।
1: वाह
0: नमस्कार।
1: बहुत अच्छी दीदी वाह।
2: डॉक्टर अंबर प्रियदर्शी अपनी खूबसूरत कलाम से हम आप सबको नवाज रही थीं। आकाशवाणी का हर एक स्टाफ को हम अपनी जानिब से आपका भारी भक्त करते हैं और यकीन जानिए यहाँ जितने भी लोग आकाशवाणी के तमाम अधिकारीगण यहाँ उपस्थित हैं उनके रग में साहित्य दौड़ता है। अब मैं आपके रूबरू एक ऐसे अदब के आसमान के चमकते हुए सूरज को रूबरू कराना चाहता हूँ जिनकी साहित्यिक किरणें देश दुनिया में बिखरती हुई आप और हम देखते हैं। आकाशवाणी हो, टीवी हो या मल्टीनेशनल बड़े प्लेटफॉर्म हो और तमाम जितने भी हमारे ये मशारे के कवि सम्मेलन के प्लेटफॉर्म हैं पूरी दुनिया में उनके शेर मकबूल हैं। हमारे देश का एक बहुत बड़ा मंच लाल किला, ये हमारे देश का और हम सबका गौरव है कि उन्होंने अपनी मौजूदगी यहाँ दो बार दर्ज कराई है और हम ये आशा करते हैं कि वो फिर से पूरी दुनिया में उनके शेर इसी तरह पहुँचते रहें। भाई सूरज राय सूरज किसी तारुफ के मोहताज नहीं, ये इनका शेर जिनकी शनाख्त कायम हुई ना जाने कितने नेताओं ने ना जाने कितने मोटिवेटरों ने ये शेर पढ़े उन्हीं के शेर से दावत कलाम भाई सूरज राय सूरज को कि गर चाहते हो देखना मेरी उड़ान को तो जाओ पहले ऊंचा करो आसमान को। बड़े अदब और सम्मान के साथ माइक्रोफोन पर सूरज राय सूरज।
3: आकाशवाणी के 90 साल होने पर मैं आकाशवाणी के तमाम नए और पुराने पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देता हूं क्योंकि लगभग 45 साल तो मुझे भी हो गए आकाशवाणी से जुड़े हुए। मुख्तलिफ कैनवास के हालातों के रिश्तों के एहसास के रंग पेश कर रहा हूँ। देखें कि आईने का रुख जो होगा सख्त तो आ जाएगा, आईने का रुख जो होगा सख्त तो आ जाएगा, सुस्त जब होगा रगों में रक्त तो आ जाएगा। और मैं भी इस उम्मीद पे बैठा हूँ हाले दिल लिए, जब उसे खुद से मिलेगा वक्त तो आ जाएगा। लेकिन देखें साहब हालत क्या होती है कि बदन के स्याह तहखाने से ना निकला तो लौट आया, बदन के स्याह तहखाने से ना निकला तो लौट आया, हाँ तारीफों के मैखाने से ना निकला तो लौट आया। और मैं उसका मुंतजर था जिंदगी का आईना लेकर, मैं उसका मुंतजर था जिंदगी का आईना लेकर, वो अपने आईना खाने से ना निकला तो लौट आया। मैं उसका मुंतजर था जिंदगी का आईना लेकर, वो अपने आईना खाने से ना निकला तो लौट आया। एक ये देखें कि नशा वो बादशाहत का है कि मोहताज खुद से हो, नशा वो बादशाहत का है कि मोहताज खुद से हो, भले ही आईने तोड़ो नज़रअंदाज खुद से हो, और हमेशा हमेशा जिद में रहते हो सज़ा औरों को देने की, हमेशा जिद में रहते हो सजा औरों को देने की, मगर सच्चाई तो यह है कि तुम नाराज खुद से हो। हमेशा जिद में रहते हो सजा औरों को देने की, मगर सच्चाई तो यह है कि तुम नाराज खुद से हो। एक रंग ये देखें कि सर किसी पांव पे धरने से बचा सकती है, सर किसी पांव पे धरने से बचा सकती है और दस्तार बिखरने से बचा सकती है, कि सर किसी पांव पे धरने से बचा सकती है और दस्तार बिखरने से बचा सकती है, दांव पे रख दिया है वक्त ने जमीर मेरा, मौत ही अब मुझे मरने से बचा सकती है, कि दांव पे रख दिया है वक्त ने जमीर मेरा, मौत ही अब मुझे मरने से बचा सकती है। एक चित्र देखें साहब समाज का कि दिन परेशान बहुत रात सवाली होगी, दिन परेशान बहुत रात सवाली होगी, लब पे अफसोस जहन पे कोई गाली होगी, दिन परेशान बहुत रात सवाली होगी, लब पे अफसोस जहन पे कोई गाली होगी, और दफन करने से पहले मेरी तलाशी ले लो, कि दफन करने से पहले मेरी तलाशी ले लो वरना कलाब के हाथों में कुदाली होगी। एक चित्र ये भी देखें साहब कि क्या कहूँ और मैं क्या इशारा करूँ, क्या कहूँ और मैं क्या इशारा करूँ, लफ्ज़ क्या संग तक फेंकता ही नहीं, क्या कहूँ और मैं क्या इशारा करूँ, लफ्ज़ क्या संग तक फेंकता ही नहीं, और उससे एक दिन मिला था मैं उसकी तरह, उससे एक दिन मिला था मैं उसकी तरह, तब से मेरी तरफ देखता ही नहीं, उससे एक दिन मिला था मैं उसकी तरह तब से मेरी तरफ देखता ही नहीं। और आज नेकी के कुछ एक पल निकाल के रखना, मशवरा है साहब देखें कि आज नेकी के कुछ एक पल निकाल के रखना, कुछ बुरा करना हो तो कल पे टाल के रखना। आज नेकी के कुछ एक पल निकाल के रखना, कुछ बुरा करना हो तो कल पे टाल के रखना। और खुद नुमाई से हवा को भी बुरा लगता है, तेज रफ्तार में पगड़ी संभाल के रखना। खुद नुमाई से हवा को भी बुरा लगता है, तेज रफ्तार में पगड़ी संभाल के रखना। ना मेरा एक होगा ना तेरा लाख होगा, ना मेरा एक होगा ना तेरा लाख होगा, तारीफ तेरी और ना मेरा मजाक होगा। और इतना गुरूर मत कर शाहे शहर बदन का, मेरा भी खाक होगा तेरा भी खाक होगा। इतना गुरूर मत कर शाहे शहर बदन का, मेरा भी खाक होगा तेरा भी खाक होगा। और देखें साहब, जिंदगी भर अकड़े हुए रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एक मशवरा है मेरा कि मुट्ठियों में हवा जकड़ लेना, कितना सच्चा ऑब्जर्वेशन देखें आपकी, मुट्ठियों में हवा जकड़ लेना, बहुत परछाई भी पकड़ लेना, सारे नाम उनके काम है, हवा जकड़ लेना और परछाई भी पकड़ लेना। जब तलक सांस है तो झुक जाओ, टूट जाए तो फिर अकड़ लेना। जब तलक देखिए, अकड़ने का एक समय मुकर्रर किया है ऊपर वाले ने, तो आप हर समय मत अकड़े रहिए। कि मुट्ठियों में हवा जकड़ लेना और परछाई भी पकड़ लेना, जब तलक सांस है तो झुक जाओ, टूट जाए तो फिर अकड़ लेना। कुछ रिश्तों के जो मेरी पहचान है, रिश्तों के कैनवास पेश करता हूँ मैं आपसे। मेरा एक चार मिसरे पूरी दुनिया में और सैकड़ों लोग अपने खुद के नाम से पढ़ते हैं कि चेहरों पर मुस्कान दिलों में लेकर खाई बैठे हैं, चेहरों पर मुस्कान दिलों में लेकर खाई बैठे हैं, करके सारे लोग हिसाबे पाई पाई बैठे हैं। आज वसीयत करने वाले हैं बाबूजी दौलत की, घर में पहली बार इकट्ठे सारे भाई बैठे हैं। कि आज वसीयत करने वाले हैं बाबूजी दौलत की, घर में पहली बार इकट्ठे सारे भाई बैठे हैं। और एक बहुत ही भयावह चित्र आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि पेट गिद्धों के भरे फिर गए दिन चीलों के, पेट गिद्धों के भरे फिर गए दिन चीलों के, दांत नाखून खून से सन गए दलीलों के। और जिस जमी के लिए भाई को मार डाला था, वो जमी नाम पे अब हो गई वकीलों के। कि जिस जमी के लिए भाई को मार डाला था, वो जमी नाम पे अब हो गई वकीलों के। और ऐसे परिवार के जो माता पिता होते हैं, देखें उनकी अपनी पीड़ा क्या है कि एक सांस उम्मीदों की ले मर मर कर ना मर पाया, एक सांस उम्मीदों की ले मर मर कर ना मर पाया, आंसू से अपनी आंखों की कोर तलक ना भर पाया। और उसने उसने सोचा था बेटे भवसागर पार करा देंगे, वो बूढ़ा इस यकी में अब तक सड़क पार न कर पाया। उसने सोचा था बेटे भवसागर पार करा देंगे, वो बूढ़ा इस यकी में अब तक सड़क पार न कर पाया। और दो चार मुक्त और दे रहा हूँ पारिवारिक, देखें कि एक रोज वो बूढ़ा वो बुजुर्ग अपने बच्चों के साथ खेल रहा होता है, और खेलते खेलते क्या स्थिति आती देखें साहब, कि वो आँख बंद करके लेट जाता है बच्चों के सामने, मुर्दा होने का नाटक करता है। और क्या चित्र पेश होता है देखें साहब, कि जोड़ घटाने में सब माथा फोड़ रहे हैं, जोड़ घटाने में सब माथा फोड़ रहे हैं, लालच ऐसी माँ की चूड़ी तोड़ रहे हैं। कि जोड़ घटाने में सब माथा फोड़ रहे हैं, लालच ऐसी माँ की चूड़ी तोड़ रहे हैं। और अब मुंदने वाली हैं बाबूजी की आंखें, घर के सारे सांप केंचुली छोड़ रहे हैं। कि अब मुंदने वाली है बाबूजी की आंखें, घर के सारे सांप केंचुली छोड़ रहे हैं। और जैसे वो बुजुर्ग जो खेल रहा था आंख बंद करके लेटा हुआ था, उसने एक मिनट के अंदर इतना जो सर्कस देखा, तो क्या हुआ कि घर के दरो दीवार से डरना पड़ा मुझे, घर के दरो दीवार से डरना पड़ा मुझे, नुकसान हर यकीन का भरना पड़ा मुझे, मैंने तो बस मजाक में रोकी थी अपनी सांस, रिश्ते खुले तो शर्म से मरना पड़ा मुझे, रिश्ते खुले तो शर्म से मरना पड़ा मुझे। और आखिरी एक दो मुक्तक माँ के हवाले से देता हूँ। देखें एक चित्र देखें साहब, कि रहना सोना खाना सब उस मंदिर में, रहना सोना खाना सब उस मंदिर में रिश्ते नाते और मजहब उस मंदिर में, और जिस मंदिर से भीख में मांगा था बेटा, भीख मांगती है माँ अब, जिस मंदिर से भीख में मांगा था बेटा, भीख मांगती है माँ अब उस मंदिर में। और एक माँ की एक ऐसी हरकत आपके सामने रख रहा हूँ जो हर बच्चे को बड़े होने पर समझ में आती है कि माँ ऐसा क्यों करती थी, कि आँख के अंदर ही गंगा जल से लोरी धोएगी, सोच के बच्चों के खाली पेट को ही रोएगी, चार रोटी और घर में खाने वाले पांच जन, ये तो तय है कल की तरह माही भूखी सोएगी, ये तो तय है कल की तरह माही भूखी सोएगी। और आखिरी में एक मजाहिया लहजे में एक बात करके जा रहा हूँ कि करो कुछ यूं कि हर मुश्किल की आसानी निकल आए, करो कुछ यूं कि हर मुश्किल की आसानी निकल आए, तुम्हारी बावजह पैदाइश का मानी निकल

आए और किसी को भी रुलाने का तरीका मैं बताता हूँ। हंसाओ यूं कि उसकी आंख से पानी निकल आए, किसी को भी रुलाने का तरीका मैं बताता हूँ, हंसाओ यूं कि उसकी आंख से पानी निकल आए। और बिल्कुल आखिरी चार पंक्तियाँ ये भी ध्यान रखें कि दोस्ती या दुश्मनी

0: न देगा, फिक्रमंद इतना है वो कि खुदकशी करने न देगा। और जानता हूं मैं उसे, वो है बड़ा रिश्ता परस्त, मेरा दुश्मन गैर के हाथों मुझे मरने ना देगा। जानता हूं मैं उसे, वो है बड़ा रिश्ता परस्त, मेरा दुश्मन गैर के हाथों मुझे मरने ना देगा। फिर बात वही आई कि दोस्ती या दुश्मनी जो भी करो सच्ची करो, झूठ मक्कारी कपट में ना मगज बच्ची करो, और प्यार के दो बोल में पल्ले से कुछ लगता नहीं, शक्ल अगर अच्छी नहीं तो बात तो अच्छी करो। और हमारे यहाँ चार नारी शक्ति बैठी हुई हैं, मैं आखिरी मुक्तक दे रहा हूँ, एक चार पंक्ति की किताब कहता हूँ मैं दुनिया में कहीं भी पढ़ता हूँ तो चार पंक्ति की किताब है, और आप खुद महसूस करें कि लार की गर्म सलाखें निकालती है माँ, लार की, रोंगटे खड़े हो जाएंगे साहब आपके, कि लार की गर्म सलाखें निकालती है माँ, बेबसी शर्म के टांके निकालती है माँ, और रोज जब लौट के आती है घर जवां बेटी, जिस्म से सैकड़ों आंखें निकालती है माँ, कि रोज जब लौट के आती है घर जवां बेटी, जिस्म से सैकड़ों आंखें निकालती है माँ। शुक्रिया आकाशवाणी।
1: अभी आपके सामने इंसानी जिंदगी की तल्ख सच्चाइयों को अपने कलाम के माध्यम से आपके रूबरू समात फरमा रहे थे आप सभी भाई सूरज राय सूरज के कलाम के द्वारा। मैं फिर से एक बार जबलपुर के तमाम साहित्यकारों से जो भी हम मौजूद हैं यहाँ पर उनकी जानिब से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ।
2: अभी आप सुन रहे थे काव्य अंजुमन, आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजे हैं, आकाशवाणी दिल्ली से अब रिले करेंगे हिंदी में समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। बैठक में पश्चिम बंगाल के विकास को गति देने, विभिन्न क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता बढ़ाने और केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम स्वनिधि जैसी प्रमुख योजनाओं का व्यापक अभियान चलाया जाएगा ताकि सभी पात्र लाभार्थियों तक इनका लाभ पहुंच सके। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सूले शामिल थीं। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
4: सभी ने 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।
3: उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है।
5: पिछली बार जब सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी वंदन अधिनियम के लिए, तो इनमें से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई थी, ये सब नदारद थे। जब पार्लियामेंट में सत्र के दौरान बैठक बुलाई जाती है ये कोई नहीं आते हैं और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सर्वदलीय बैठक होना चाहिए। जनता ने इनको इनएक्टिव कर दिया है और ये जबरदस्ती एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं।
3: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका

दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में आज हुए एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम संयंत्र में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में रेडियो जॉकी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बैठक की आयोजना की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के लिए जन जागरूकता अभियान को मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुधार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

भैया ऑन एयर ऑन है, टाइम चेक करिएगा, कंसोल की घड़ी में 5:14:40, 41:42 हुए हैं। और अब सुनिएगा डीजे प्रो वाले कंप्यूटर की टेस्टिंग।